क्या तुद पै आख सुनाई है, बुरा भला तू सबके सूझै, जिहा को करे तिहा को पाई है, मेरे साहिब तू अंतर की बिद जाना है। बुरा भला तू सबके सूझै, तुद भावै तवै बुलावै रहाओ, सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई, एक ना सतगुर मेल सुख देवै, एक मन मुख तंद पिटाई, सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख, जेही तू नदर करै तेहा को होवै, बिन नदरी नाही को पेख, तेरी वड्याई तू है जाणै, सब तुदनो नित ते आए, जिसनो तुद पावै तिसनो तू मिलै, जन नानक सो थाए पाए, सुही महला चौथा, जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित्र परम पद पाए, मेरे राम हर जन आरोग पए, गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर, तिनके हम मैं रोग गए रहाओ, ब्रह्मा बिसर महादेव त्रै गुण रोगी, विच हो मैं कार कमाई, जिन किए तिसे न चेतै बपड़े, हर गुरमुख सो जी पाई, हों मैं रोग सब जगत व्यापिया, तिन कहो जन मरण दुख पारी, गुर प्रसादी को विरला छूटै, तिस जन कहो हों बलिहारी, जिन सिष्ट साजी सोई हर जाणै, ताका रूपया पारो, नानक आपे वेख हर बिकसै, गुरमुख ब्रह्म बिचारो, सुही महला चौथा, कीता करना सरबर जाई, किश कीचै जे कर सकी, अपना कीता किशु ना होवै, ज्यों हर भावै त्यों रखियै, मेरे हर जियो सब को तेरै वस, असा जोर नाही जे किश कर हम साकै, ज्यों भावै तिवें बख्स रहाओ, सब जियो पिंड दिया तुदे आपे, तुदे आपे कर लाया, जेहा तू हुक्म करै तेहे को कर्म कमावै, जेहा तू तुर लिख पाया, पंच तत् कर तुद सिरिट सब साजी, कोई सेवा करियो जे किश कीता होवै, एक ना सतगुर मेल तू बुझावै, एक मन मुख करै से रोवै, हर की वड्याई हौ आख ना साका, हौ मूर्ख मुग्ध नीचाण, जन नानक कहो हर बख्श लै, मेरे स्वामी शरणागत पया अजान, राग सूही महला पंजवा, कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, बाजी गर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पासारा, तब एको एक अंकारा, कवन रूप दृष्टियो बिनसायो, कतै गयो ओ काते आयो रहाओ, जल ते उठे अनक तरंगा, कनक भूखन कीने बहुरंगा, बीज बीज देखियो बहु प्रकारा, फल पाके ते एक अंकारा, सहस घटा मैं एक आकाश, घट फूटे ते ओही प्रगास, परम लोभ मोह माया विकार, परम छूटे ते एकंकार, ओह अबनासी बिन सत नाही, ना को आवै ना को जाही, गुर पूरै हौ मैं मल धोई, कहो नानक मेरी परम गत होई, सुही महला पंजवां, कीता लोड़ै

तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला रहाओ। जल थल महियल रहया भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतियार कछु ना पाइया, साच लगै ताह मैं जाइया। जिसनों लाए लय सो लागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै। दुरमत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए। दुइ कर जोड़ करो अरदास, तुद पावै तायाणै आस। कर कृपा अपनी भक्ति लाए, जन नानक प्रभसदा ते आए। सुही महला पंजवां, तन सोहागन जो प्रभु पछानै। मानै हुक्म तजै अभमानै, प्रेसे राती रलिया मानै। सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, मन तन अर्प तजला जलुकानी रहाओ। सखी सहेली कौ समझावै, सोई कमावै जो प्रभ पावै। सा सुहागण अंक समावै, गर्भ घेली महल ना पावै। फिर पछतावै जब रहन विहावै, कर्महीन मनमुख दुख पावै। बिना करीजे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहा भरपूर। जन नानक गावै देखा दूर, सुही महला पंजवा। गृह वस गुर की ना हो कर की नार, दस दासी कर दीनी पतार। सगल समग्री मैं कर की जोड़ी, आस प्यासी पिर कौ लोड़ी। कवन कहां गुण कंत प्यारे, सुगण स्वरूप दयाल मुरारे रहाओ। सत सिंगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम तम बोल मुख खाया। कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे। जा पिर कर आवे, गुण कामण कर कंत।

प्रगटया सूर जोत उजियारा सेज विशाई सरदया पारा नव रंग लाल सेज राम ने आया जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उमक्यो हियो मिलन प्रभताई खोजत चरियो देखो प्रे जाई सुनत संदे सरो प्रे गृह सेज विशाई भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई किन बिद हियरो धीरे निमानो मिल साजन हो तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी तन कंता तन सूती पिर सद जागंता पियो मदरो तन मतवंता तन जागे जे पिर बोलंता पही निरासी बहुत दिन लागे देह दिसंतर मैं सगले चागे खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिलै इस पागे भयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तप्त करै पिर पाया सगल सिंगार हुण मुझै सुहाया कहो नानक गुर परम चुकाया जै देखा तै पिर है भाई खोलियो कपाट ता मन ठहराई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा क्या गुण तेरे।

लाल रंगीले प्रीतम मनमोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै। मेरे ठाकुर अगम अपारे क्या सेवक मावो क्या कहरी जावो बिदगित पावो दरसारे। मित नहीं पाईए अंत न लहिए मंत्र सह चरनारे पावो दान ढीठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे। जन नानक कहो गुर कृपा तारी प्रभात दे निस्तारे सुही महला पंजवा करती जा एको अंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मंगन बहुता महला पावे कहतो पहुता जो प्रेमाने तिन की रीसा कूड़े मूर्ख की हाठी सारहाओ। पेख दिखावे सच ना कमावे कहतो महली निकट ना आवे। अतीत सदाए माया का माता मन ही प्रीत कह मुखराता। कहो नानक प्रभ बिनो सुनी जय कुचल कठोर कामी मुक्त की जय। दर्शन देखे की वडियाई तुम सुखदाते पुरख सुभाई रहाओ दूजा। सूही महला पंजवा बुरे काम को ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया। अवसर अपना बुझै ना एना माया मोह रंग लपटाना रहाओ। लोभ लहर कौ बिकस फूल बैठा साज जना का दर्शन जीठा। कबहू ना समझे अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ। बिखे नाद करन सुन पीना हर जा सुनत आलस मन कीना। दृष्ट नाही रे पेखते अंदे छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ। कहो नानक प्रभ बख्श करी जय कर कृपा मोहे साध संग दीजै। तौ किश पाईए जौ होइए रेना जिसे बुझाए तिस नाम लैना रहाओ। सुही महला पंजवा कर मैं ठाकुर नदर ना आवै गल मैं पाहण लै लटकावै। भरमे पूला संगत फिरता नीर बिरोलै खप खप मरता रहाओ। जिस पाहण का उठाकर कहता ओह पाहण लै उसको डुबता। गुनहगार लूण हरामी पाहण नाव ना पार गिरामी। गुरमिल नानक ठाकर जाता जल थल महियल पूर्ण विधाता। सुही महला पंजवा।

सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोलाया तेरा। सुही महला पंजवा, प्रातः काल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओट सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम। रहाओ प्रभ अविनाशी रैन दिन गाओ, जीवत मरत निहचर पावे थाओ। सो साहो सेव जे टोट ना आवै, खात खर्चत सुख अंध विहावै। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सुही महला पंजवा, गुर पूरे जपै दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा, रहाओ। साध संगत स्यों प्रीत बन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न सके तीने ताप। निमख न बिसरै हर चरण तुम्हारे, नानक मांगे दान प्यारे। सुही महला पंजवा, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे।

जिस कृपा करे बसे तिस नेरा, जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे पज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चहारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परन पोखण संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब से गुर पूरे, मिल पाप तजायण रहाओ। जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पै जप दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, घर का काज ना जानी रूड़ा, झूठे तंदे रचियो मूड़ा।

दर्शन कह लोचे सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई प्रेम विशोहा करत गसाई। निर्दय जंत तिस दया ना पाई, अनक जन्म बीतियन परमाई करवास ना देवै दुत्तर माई। दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष ना दीजै कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवां, घर चौथा एको ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए कित ही कामना तौल हार। जित हर बिसराए रहाओ, अनद गरीबी साध संग जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना माया लपटाए, पीसन पीस ओड कामरी सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कितै काज जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै ओहो सोभा पाए, पाठ पटंबर बिरथिया जेह रच लोबाए। सब किश तुमरै हाथ प्रभ आप करे कराए, सास सास सिमरत रहा नानक दान पाए। सूही महला पंजवां, हर का संत प्राण तानो।

तू दयाल कृपाल कृपा निध मनसा पूर्ण हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम तू भगतन का प्यारा। तू अथाह अपार अति ऊंचा कोई अवर ना तेरी पत, ए अरदास हमारी स्वामी विसर नाही सुखदाते। दिन रहन सास सास गुण गावा जे स्वामी तुद पावा, नाम तेरा सुख नानक मांगे साहिब तुठै पावा।

मेरे राम हौसो थान पालन आया, खोइत खोइत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई। साधक सिद्ध फिर बिल लाते, ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवधूता। तिन पी अंत न पायो तेरा, लाए थके बिपूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया। सफल दर्शन भेटियो गुरु नानक, ता मन तन हर हर त्याया। सुही महला पंजवा, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। संतहो सागर पार उतरियै, जे को बचन कमावै संतन का। सो गुर प्रसादी तरियै रहाओ, कोट तीर्थ मजन इस नाना, इस कल में मैल भरी जै। साध संग जो हर गुण गावै, सो निर्मल कर लीजै। वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त ना होई। एक अखर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद बैस, उपदेश चौं वर्ण को सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं, कड़कट नानक माजा। सूही महला पंजवा, जो किश करै सोई प्रमानै। ओए राम नाम रंग राते, तिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभ के चरण पराते। मेरे राम हर संता जेवड़ ना कोई, भगता बने आई प्रभ अपने स्यों। जल थल मैयल सोई रहाओ, कोट अपराधी संत संग उदरे। जमता कै निर्णय आवै, जन्म जन्म का विछड़िया होवै। तन हर स्यों आन मिलावै, माया मोह परम पौ काटै। संत सरण जो आवै, जिहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते पावै। जन की महिमा केतक बरनौ, जो प्रभु अपने पाणे। कहो नानक जिन सतगुर भेटिया, से सब ते पए निकाणे। सूही महला पंजवा, महायगन ते तुधा दे राखे। पए तेरी सरनाई, तेरा मान तान हृदय अंतर, होर दूजी आस चुकाई। मेरे राम राए तुद चित आया उबरे, तेरी टेक प्रभासा तुमरा। जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ, अंध कूब ते काल लिए तुम। आप है कृपाला, सार समाल सर्व सुख दिए, आप करे प्रतपाला। अपनी नदर करे परमेसर, बंधन काट छड़ाए। अपनी भगत प्रभ आप कराई, आपे सेवा लाए। परम गया पै मोह बिनासे, मिटिया सगल विसूरा। नानक दया करी सुखदाता, पेटिया सदगुर पूरा। सूही महला पंजवा, जब कश ना सीओ तब क्या करता। कवन कर्म कर आया, अपना खेल आप कर देखै। ठाकुर रचन रचाया, मेरे राम राए मुझते कछु न होई। आपे करता आप कराए, सर्ब निरंतर सोई रहाओ। गणती गणी न छूटै कतहूं, काची दे आणी। कृपा करो प्रभ करण हारे, तेरी बख्श निराली। जी जंत सब तेरे कीते, घट घट तुही ते आई है। तेरी गतमित तू है जाने, कुदरत कीम ना पाई है। निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी, कर्म धर्म नहीं जाना। दया करो नानक गुण गावै, मिठा लगे तेरा पाना। सूही महला पंजवा, भाग ठड़े हर संत तुम्हारे। जिन घर तन हर नामा, प्रवान गणी से ही एह आए। सफल तिन्ना के कामा,
ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕਹਿ ਹਾਂ।

ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सूही महला पंजवां, सगल त्याग।

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौ तरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्या इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे।

तिन मुख नाम न उपजै, दूजै व्यापे चोर जियो। मूल न बुझै अपना, से पशुआ से ढोर जियो। नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगै सुख जियो। करता चित न आवई, फिर लगै दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसै, ते तन कैसी भुख जियो। बाकी वाला तलबिया सिर मारे जंदार जियो। लेखा मंगै देवना, पुछै कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरै, बख्शे बख्शनहार जियो। अन को की जय मित्रा, खाक रलै मर जाए जियो। बहु रंग देख पुलाया, पुल पुल आवै जाए जियो। नजर प्रभु ते छुट्टी है, नजरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान में होणिया, गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो। खिंचो तान में गुची है, बुरा भला दोए नाल जियो। बिन शब्द पैर ते आ, सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारिया, सब सहदे आधार जियो। सो क्यों मनो विसारी है, सदा सदा दातार जियो। नानक नाम ना विसरै, निदारा आधार जियो। सुही महला पहला, काफी कर दसवां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद मानस जन्म दुलंब, गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब। जे सतगुर पाया चलै जन्म सवार, वखर सच लै पथ पाए दरबार। सतगुर शब्द पै रहाओ, मन तन सच सलाहे। साचे मन पाया, लाल रत्ता मन मानिया, गुरपूरा पाया। हौ जीवा गुण सारे अंतर तू वसै, तू वसै मन माए सहजे रस रसै। मूर्ख मन समझाए, आखो के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा। नित नित हृदय संभाल, प्रीत में अपना, जे चलै गुण नाल नाही दुख संतापना। मन मुख परम पुलाना, ना तिस रंग है। मरसी होए विडाणा, मन तन भंग है। गुर की कार कमाए, लाहा कर आणिया। गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया। एक नानक की अरदास, जे तुद पावसी मैं दीजै नाम निवास। हर गुण गावसी, सुही महला पहला। ज्यों आरन लोहा पाए, पन कढ़ाई है, त्यों साक्त जोनी पाए, पवै पवाई है। बिन बूझे सब दुख, दुख कमावना, हाँ मैं आवै जाए परम पुलावना। रहाओ तू गुरमुख रखनहार, हर नाम ते आई है, मिले तुझे रजाए शब्द कमाई है। तू कर कर वेखै आप, देह सो पाई है। तू देखै थापो थाप, दर भी नाई है।

गर्भ मुसै कर चोर किस रू आई है। गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है। शब्द निवारी आग जो दी पाई है। लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है। सदा रह निकाम जे गुरमत पाई।

निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु होय दासा जीवित मरिय भौ जल तरिय जे थी वह कर्म लिखिया सा गुर से बीजै अमृत पीजै जिसला वह सहित्यानो नानक शरण पया हरिद्वार हो बलबल सत कुरबानो सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो न माना सद कुरबाना सगलाया मिटाई है ओह तन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पाया विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसकै बलराम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है कर तिसकै बलराम जियो बाबल मेरा वड समर्था करण कारण प्रभारा जे सिमरत दुख कोई ना लागे पौजल पार उतारा आदि जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अंदन मंतन पीवा हरे आपे लय मिलाए क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जियो जिसनो तेरी टेक सो सदा सजी वही बलराम जियो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सृजनहारा जिस ते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया दिन रैन आस तुम्हारी सफल दर्श भेटिया गुरपुरा नानक सद बलिहारी संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अबनासी गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जमिया सत संतोख वजह वाजे अनहदा चुनकारे सुन पै बिनासे सगल नानक प्रपुरख करने हारे उपजया तत ज्ञान साहुरे पेईऐ एक हर बलराम जियो ब्रह्म ब्रह्म मिलिया कोई ना सकै पिन कर बलराम जियो बिस्म पेखै बिस्म सुनिया बिस्माद नदरी आया जल थल महियल पूर्ण स्वामी कट कट रहा समाया जिस ते उपजया तिस माहे समाया कीमत कहन ना जाए जिसके चलत ना जाही लखणे नानक तसै ते आए राग सूही शब्द महला पंजवा कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद गोविंद गुण गावन लागे हर रंग आंदन जागे हर रंग जागे पाप भागे मिले संत प्यारिया गुर चरण लागे परम भागे काल सगल सवारिया सुन सरवण बाणी सहज जानी हर नाम जप वड भागे बिनवंत नानक शरण स्वामी जियो पिंड प्रभ आगे अनहत शब्द सुहावा सच मंगल हर जस गावा गुण गाए हर हर दुख नासे रहस्य उपजय मन कणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुखपणा होए रेण साधु प्रभ आराधु अपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया तारो सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चरण जपत निस्तरिया हर चरण त्याए सफल पाए मिटे आवन जाना पाए भगत सवाए हर जप अपने प्रभ पावा जप एक अलख्या पार पूर्ण तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर परम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूर्ण संत जना के कामा गुर संत पाया प्रभ ते आया सगल इच्छा पुनिया आओ ताप बिनसे सदा सरसे प्रभ मिले चिरी विशुन्या मन सांत आई वजी वधाई मनो कदे ना विसरै बिनवंत नानक सतगुर दृढ़ाया सदा भज जगदीसरै।
ਅਰਾਗ ਸੂਹੀ ਸ਼ੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਠਾਕਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ ਮੈਂ ਜੇਹੀ ਕਣਚੇਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਹਉ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵੜਦਾਣਾ ਕਰ ਮੈਂ ਰਮਤ ਸਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਜੈ ਸਾਮਤ ਦੀਜੈ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੂੰ ਦਿਹਾਈ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇਣ ਹੋ ਵਿਜੈ ਤਾਂ ਗਤ ਜੀਅ ਰੇ ਤੇਰੀ ਸਭੀ ਉਪਰ ਨਾਨਕਾ ਠਾਕਰੋ ਮੈਂ ਜੇਹੀ ਕਣਚੇਰੀ ਰਾਮ ਤੁਮ ਗੌਹਰ ਅਤ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਤੁਮ ਪਿਰਹਮ ਬਹੁਰੀਆ ਰਾਮ ਤੁਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੂਚੇ ਹਉ ਇਤਨੀ ਕਲਹੁਰੀਆ ਰਾਮ ਹਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਏਕੋ ਤੂੰ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪ ਸੁਜਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਮਖ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵਾ ਸਰਬ ਰੰਗ ਰਸਮਾਨਾ ਚਰਣ ਹੈ ਸਰਣੀ ਦਾਸੈ ਦਾਸੀ ਮਨ ਮੌਲੈ ਤਨ ਹਰੀਆ ਨਾਨਕ ਠਾਕਰ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ਆਪਨ ਭਾਵਨ ਕਰੀਆ ਤੁਝ ਉੱਪਰ

ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माणा, नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माणा। हम वारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम, हम बल जाई लख लख लख बरिया जिन परम परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारे ठाकर से मन माना, प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला, कहो नानक कहो निरपा होई सो प्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा, तिस बने अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन भाणा राम, जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा परपूरे, अंतर जामी सोप्रा मेरा सर्व रया परपूरे। ताकि सरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा, सदा सदा प्रभ कौ बलिहार है नानक सतगुर बाणा। ऐसा गुरवट भागी पाईए जित मिले है प्रभ जापै राम, जन्म जन्म के किल विखे उतरे हर संत धूड़ी नित नापै राम। हर धूड़ी नाई है प्रभु ते आई है, बाहुड़ जोड़ ना आई है गुरचरणी लागे परम पौ भागे, मन चंदिया फल पाई है। हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सोग नाही संतापै, नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस परतापै। हर हरे हर गुण निधे हर संतन कै वसियाए राम, संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम। परम पद पाया मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी, सफल जन्म होवा पौ भागा हर भेटिया एक मुरारी। जिसका सा तिन्ही मिल लिया ज्योति ज्योत समाया, नानक नाम निरंजन जपिया मेरे सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो पुनी इच सबाई राम, रंग रते अपने स्वामी सेती मरे नया वै जाई राम। अबनासी पाया नाम ते आया सगल मनोरथ पाए, सांत सहज आनंद कनेरे गुरचरणी मन लाए। पूर रहया कटकट अबनासी थान थनंतर साई, कहो नानक कार्य सगले पूरे गुरचरणी मन लाई। सूही महला पंजवा कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखे दर्श तेरा राम। लाख जेहवा देहो मेरे प्यारे मुख हरिया राधे मेरा राम। हरिया राधे जम पंथ साधे दुख ना व्यापै कोई, जल थन मैयल पूर्ण स्वामी जद देखा तत सोई। परम मोह बेकार नाठे प्रभ नेर हूं ते नेरा, नानक कहो प्रभ कृपा कीजै नेत्र देखै दर्श तेरा। कोट करन दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिए अबनासी राम, सुन सुन एहो मन निर्मल होवै कटिया काल की फासी राम। कटिया जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना, हर हर जप जपिय दिन राती लागे सहि ध्याना। काल मल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी, कहो नानक प्रभु कृपा कीजै हर गुण सुनिए अविनासी। करोड़ हस्त तेरी टहल कमावै चरण चले प्रभ मार्ग राम, पव सागर नाव हर सेवा जो चढ़ै तिस तार ग्राम। पव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे, महा बिकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। मन बाहित फल पाए सगले कुदरत की मया पारग, कहो नानक प्रभ कृपा कीजै मन सदा चलै तेरे मार्ग। एहो वर एहा वडियाई एहो तन होए वडभागा राम। एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम, मन लागा चरणे प्रभ की सरणे करण कारण गोपाला। सब किश कीता तेरा सब किश तेरा तू प्रभ मेरा, मेरे ठाकर दीन दयाला।
मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा। कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा। सूही महला पंजवा हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावै राम सिमर सिमर।

संगना साथी गौन अकेला, दुखिया दर्द बंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रवदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो त्यों कर गत मेरी सूही, जो दिन आवै सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम्पी चलना, दूर गमन सिरी ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तैं जीवन जग सच कर जाना, रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावै, सब कट पीतर हाट चलावै, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा, कह रवदास निदान दिवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने, सूही ऊचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रहन ना होई, एहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी, रहाओ भाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काड़ सवेरा, घर की नार उरै तन लागी, ओ तो पूत पूत कर भागी, कह रवदास सवै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की, तप तप लोहे लोहे हाथ मरो राओ, बावल होई सो सहलो राओ, तैं सह मन में किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोस, तैं साहेब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछा पछतानी, रहाओ काली कोयल तू कितगुन काली, अपने प्रीतम के हम बिरह जाली, पिरै बिहून का तैं सुख पाए, जा हुए कृपाल ता प्रभु मिलाए, विदन खूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली, कर कृपा प्रभ साध संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली, वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बहुत पैणी, उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद राग बिलावल महला।

आई। जैसे सच में रहो रजाई रहाओ, जो किश होवा सब किश तुई ते, तेरी सब असनाई, तेरा अंत ना जाना मेरे साहेब। मैं अंधले क्या चतराई, क्या हूं कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई। जो तुध पावे सोई आखा, तिल तेरी वड्याई, एते कुकरहों बेगाना पौका स्तंताई। भगतहीण नानक जे होएगा, ता खसमै नाओ ना जाई। बिलावल महला पहला, मन मंदर तन वेस कलंदर, कठी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरा

जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुद पासे, जो तुद भावै सोई चंगा। एक नानक की अरदासे, बिलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान। आपे कर कर वेखै तान, तू दाता नाम प्रमाण। ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचक तुम लाखा पेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामण कामण यार। राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार। चख छोड़ी सहसा नहीं कोए, बाप दिसै वे जात ना होए। एके कहो नाही पौ कोए, करता करे करा वैसोए। शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मनसा चै तारिया। अवरना सूजै गुर कौ वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सही ध्याने। हर कै रंग रता मन माने, मनमुख परम भुले बौराने। हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै। खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसरै हमरो दुखाली। सास गिरास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली। अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए। प्रभ आगमा गोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए। हम मैं मेड़ चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास। गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दसन दास। जन नानक हर नाम धन रास। बिलावल महला तीजा, कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया। त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटुंब सहित स्यो। जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवै। अहला जन्म गवाया, दूजा पाव ना दे लिव लागण। जिन हर के चरण विसारे, जग जीवन दाता जन सेवक तेरे। तिनके तै दुख निवारे, रहाओ तू दयाल दया पदाता। क्या है जंत विचारे, मुक्त बंद सब तुते होए। ऐसा आख वखाणे, गुरमुख होवै सो मुक्त कहिए। मनमुख बंद विचारे, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी। सदा रह हर नाले, तिनकी गहन गत कही ना जाई। सच्चा आप सवारे, परम पुलाने से मनमुख कहिए। नारोवार ना पारे, जिसनो नजर करे सोई जन पाए। गुर का शब्द संभाले, हर जन माया माहि निस्तारे। नानक भाग होवे जिस मस्तक, काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा, अतुल क्यों तो लिया जाए। दूजा होए ता सोजी पाए, तिसते दूजा नाही कोए। तिसदी कीमत किकू होए, गुर प्रसाद वसै मन आए। ता को जाने दुबदा जाए, रहाओ आप सराप कसवटी लाए। आपे परखे आप चलाए, आपे

आनंद मूलते आयो पर खोतम आंदन आनंदे धर्मराय की कान चुकाई सब चूके जमके छंदे जप मानो हर हर नाम गोविंदे वडभागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे रहाओ साकत मूड़ माया के बदक विच माया फिरै फिरंदे तृष्णा जलत किरत के बांधे ज्यो तेली बलत पवंदे गुरमुख सेव लगे से उधरे वडभागी सेव करन दे जिन हर जपया तिन फल पाया सब टूटे माया फंदे आपे ठाकुर आपे सेवको सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगतारनो हर भरपुरे रहा जल थले राम नाम नित गाइये हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसार नहारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम करया सा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी सो जन्म लिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो राग बिलावल महला पंजवा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवै तिस्यो मोह क्यों मिलिया प्रभ नासी तोहे कर कृपा मोय मार्ग पावो सात संगत कै अंचल लावो क्यों तरियै बिखिया संसार सतगुर बोहित पावै पार रहाओ पवन चुलारे माया।

माया सर्प भयंगा, हम मैं पचे दीपक देख पतंगा, सगल सिंगार करे नहीं पावै, जा होए कृपाल ता गुरु मिलावै, हाँ फिरो उदासी मैं करतन दसाया, निर्मोल हीरा मिले ना उपाया, हर का मंदिर तिसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख पही निहाल, जिन चाखिया तिस आया साध, जो गूंगा मन में मिसमाद, आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण अक्स माया, बिलावल महला पंजवा, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव, बिगन ना लागे जप अलाख्या पेव, तरत पुनीत पई गुण गाए, दुरत गया हर नाम ते आए रहाओ, सबनी थाई रव्या आप, आद जुगाद जाकावड़ प्रताप, गुर प्रसादना होए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सदगुर तूठे, पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाले, जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रतपाले, बिलावल महला पंजवा, सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे, मोहे अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा हर चरण ते आई, दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ, प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़, हर सेवक नाही जंपीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसे, प्रभ का नाम मंतन आधार, बिसरत नाम हो तन शार, प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर बिसरत सब का मोहताज, चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत, मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै कर सदा आनंद, राग बिलावल महला पंजवा, कर दूजा यानड़िए कै कर गावना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर स्याणपा बिरथिया प्यारे, राखण कौ तुम एक रहाओ, सतगुर पूरा जे मिले प्यारे, सो जन होत निहाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला, सफल मूर्त गुरदेव स्वामी, सर्व कला परपूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे, सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिन अपना प्रभ जाता, हर नाम आराधे नाम वखाणे, हर नाम में ही मन राता, सेवक जन की सेवा मांगे, पूरे कर्म कमावा, नानक की बेनंती स्वामी, तेरे जन देखण पावा, वड भागी से काढ़िए प्यारे, संत संगत जिन्ना वासो, अमृत नाम आराधिए निर्मल, मने होवे परगासो, जन्म मरण दुख काटिए प्यारे, चूके जमकी काणे, तना प्राप दर्शन नानक, जो प्रभ अपने पाणे, ऊंच अपार।

कनेरे पशु प्रेत मुगत कवतारे पाहन पार उतारै नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहार है। बिलावल महला पंजवां बिखै वन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली सुखी ना होवत जियो। मान महातना सकत ही काई सादा दासी थियो नानक से दर सोभावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित प्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संगना चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस भोगण अत रूप रस माते इन संग सुख नाम पाया तन तन हर साह जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वट पागनी सखिए संता संग समाई है तह दुख ना भूख ना रोग व्यापै चरण कमल लिवलाई है। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चर सरणी पाई है प्रेम बिछो न मोह व्यापै नानक हर एक त्याई है। दृष्ट तार मन बेदया प्यारे रतड़े सह सुभाए से सुहावी संग मिल प्रीतम अंध मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच पुजाए नानक अचरज अचरज स्यो मिलिया कहना कछु ना जाए। राग बिलावल महला पंजवां कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक रूप सगलो पा सारा आपे बणजे आप ब्योहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाए जत जत जाइए तत दृष्टाए रहाओ अनक रंग निर्गुण एक रंगा आपे जल पा आप ही तिरंगा आप ही मंदिर आपे सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा आपे जोग आप ही जुगता नानक के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल महला पंजवा आपो पावन आप सुधरना आप करावन दोष ना लेना आपन बचनो आप

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुरचरण प्यारे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुरमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़ संसारा, नानक बहा पकर सतगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तन मन तान अर्पो सब अपना, कमल सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तो पेखत सोभा मेरा अंगन। रहाओ अनक जुगत कर बहुत विचारो, साध संग इस मन उधारो, मत बुद्ध सुरत नाही चितराई, ता मिलिया जा ले मिलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया, रव रहया प्रभ सब मैं आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे। रहाओ तिखा भूख बहुत तप्त व्यापिया, शीतल पय हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मंत्र बताना हर गुण गाया, देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलवे काटे पज गुर के चरना। रहाओ अवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रहाओ अंध कूपते कर गै लीना, जय जय कार जगत प्रगटीना, नीचा ते ऊंच ऊन पूरीना, अमृत नाम महारस लीना, मन तन निर्मल पाप जल खीना, कहो नानक प्रभ भए प्रसीना। बिलावल महला पंजवा।

होवत वटभागी सा संग्राम लिव लागी मत पत तहन सुख सहज आनंदा एक निमख ना विसराओ परमानंदा हर दर्शन की मन प्यास कनेरी पंत नानक शरण प्रभ तेरी बिलावल महला पंजवा मोहे निर्गुण सब गुणे बेहूना दया तारे अपना कर लीना मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया कर कृपा प्रभ घर में आया रहाओ भगत वछल पै कट नहारे संसार सागर अबुतरे पारे पतत पावन प्रभ बिरद वेद लेखिया पार ब्रह्म सो नैनो पेखिया सासंग प्रगटे नारायण नानक दास सब दुख पलायण बिलावल महला पंजवा कवन जाना प्रभ तुमरी सेवा प्रभ अविनाशी लाख्या पेवा गुण बेअंत प्रभ गैर गंभीरे ऊच महल स्वामी प्रभ मेरे तू अपरंपर ठाकुर मेरे रहाओ एक सबे नाही को दूजा तुम ही जानो अपनी पूजा आपो कछु न होवत पाई जिस प्रभ देवै सो नाम पाई कहो नानक जो जन प्रभ पाया गुण निदान प्रभ तिन्ही पाया बिलावल महला पंजवा मात गरमै हाथ दे राखिया हर छोड़ बिख्या फल चाखिया भज गोबिंद सब छोड़ जंजाल जब जम आए संगारे मूड़े तब तन बिन सजाए बेहाल रहाओ तन मन तन अपना कर थापिया करन हर एक निमख ना जापिया महा मोह अंध कूपरिया पार ब्रह्म आया पटल बिसरिया वड्डे भाग प्रभ कीर्तन गाया संत संग नानक प्रभ पाया बिलावल महला पंजवा मात पिता सुत बंधु भाई नानक होवा पार ब्रह्म सहाई सुख सहज आनंद कणे गुरपूरा पूरी जाकी बाणी अनक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ सगल सरंजाम करे प्रभ आपे भय मनोरथ सो प्रभ जापे अर्थ धर्म काम मोह का दाता पूरी पई सिमर सिमर विधाता सासंग नानक रंग माणिया कर आया पूरे गुरियाणिया बिलावल महला पंजवा।

गुण गावो नित राम के, ए अवखद जोग आए बसो कर देश में, एह भले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न भय लह गए बेयोग। बिलावल महला पंजवा, काहू संग न चल ही माया जंजाल, ऊठ सिधारे छत्रपातो संतन कै ख्याल, रहाओ अहम बुद्ध कहो बिनसना ए तुरकी ढाल, बहु जोनी जन्म मरै बिखिया बिकराल, सत बचन साधु कह नित जपै गोपाल, सिमर सिमर नानक तरे हर के रंग लाल। बिलावल महला पंजवा, सह समाद आनंद सुख पूरे गुरदीन, सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन, रहाओ जय जय कार जगत्र मैं लोचै सब जिया, सो प्रसन्न पए सतगुर प्रभु कछ बिघ्न न थिया, जा का अंग दयाल प्रभ ताके सब दास, सदा सदा वड़ियाइया नानक गुरपास। राग बिलावल महला पंजवा, घर पंजवा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मृत मंडल जग साजिया ज्यो बालू घर बार, बिनसत बार ना लाग गई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मनै माहे सत देख बिचार, से सतक गिरि जोगी तज गए कर बार, रहाओ जैसा सुपना रैन का तैसा संसार, दृष्ट मान सब बिनसी क्या लगे गवार, कहां सो भाई मीत है देख नैन पसार, एक चाल सह सब अपनी वार, जिन पूरा सतगुर सेव्या से असर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राग पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा, लोकन किया वड्याइया बैसंतर पागो, जो मिले प्यारा अपना ते बोल करा गो, जो प्रभ जियो दयाल होए तो भगती लागो, लपट रहो मन बासना गुर मिले त्यागो, रहाओ करो बेनती अत कनी यो जियो हमांगो, अर्थ आन सवारिया प्रे निमक सुहागो, पंच संग गुरते छुट्टे दोख हरदा गौर, दै प्रगास प्रगट भया निस्बा सिर जागो, सरण सुहागने आया जिस मस्तक भागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा, लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा, मैला कदे ना हो वई न लागे दागा, प्रभ पाया सुखदाइया मिलिया सुख पाए, सह समाना भीतरे छोड़िया न जाए, रहाओ जरा मरा न व्यापई फिर दुख ना पाया, पी अमृतया गान्या गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला, सफल दर्स तेरा पार ब्रह्म गुण तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी। बिलावल महला पंजवा, राखो अपनी सरन प्रभ मोहे कृपा तारे, सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे, मान करो तुदी उपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद पूलते तुम बख्शन हारे, रहाओ हम अवगन करे असंख नीत तुम निर्गुण दा तारे, दासी संगत प्रभु त्याग ए कर्म हमारे, तुम देवो सबके दया तार हम अकृत कनारे, लाग परे तेरे दान स्यो नैचित खसमारे, तुय ते बाहर किश नहीं पव काट नहारे, कहो नानक सरण दयाल गुर लेहो मुगदे उधारे। बिलावल महला पंजवा, दोष ना काहू दीजिए प्रभ अपना त्याई है, जित सेवे सुख होए घना मन सोई गई है, कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी।

जो तुम करो सोई भला, मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरी आ, सब तेरी जुगता, चरण पखारो कर सेवा, जे ठाकर पावै, हो कृपाल दयाल प्रभ, नानक गुण गावै। बिलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे, पशुआ नहीं बूझै, बाद साध हंकार में, मरना नहीं सूझै, सतगुर सेवो अपना, काहे फिर अपागे, देह कुसुम्बा रंगला, काहे फूल लागे, रहाओ कर कर पाप दर्पण की, कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन कहताई, माटी स्यो माटी रली, नांगा उठ जाई, जा कह किया श्रम कर, ते बैर विरोधी, अंत काल पा जाहेंगे, काहे जलो क्रोधी, दास रेण सोई होवा, जिस मस्त कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे, सतगुर की सरना। बिलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे, खल चतर बकीता अंदर।

भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड की है जान लिए मानी। सत बचन नानक कहे प्रगट सब माहे प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिन को पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा बंधन काट सो प्रभु जा कह कल हाथ अवर कर्म नहीं छूटी है राखो हरनाथ। तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखे गोपाल राव। आसा परम विकार मोह इन मैं लोभाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना। परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी तुम्हारे ज्यो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपारे। करण कारण समर्थ प्रभ देह अपना नाओ नानक तरिय साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल महला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत महामोहनी मोहया नरक की रीत। मन खुट हर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा खरका पैखर तव छुटे जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संजम तुम खंडे जम के दुख डांड सिबरे नाही जोन दुख निर्लजे पांड। हर संग सहाई महामीत तेस्यों तेरा भेद बीदा पंच बटवारी उपजो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना तन तन सर्बसे अपना प्रभ जन कौ दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुखसार जप जप नाम गोबिंद का पूर्ण विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा पार ब्रह्म आराध ते मुख अमृत पीवा। रहाओ जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच। तन सो थान बसंत तन जह जपिए नाम कथा कीर्तन हर अत घना सुख सहज विश्राम। मन ते कदे न विसरे अनाथ को नाथ नानक प्रभ शरणागति जा कै सब किश हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़िया फुर सुख मैं पाया सदा सिमर चरणार बिंद शीतल होताया। जीवित या अथवा मोया किश काम न आवै जिन एहो रचन रचाया को ते स्यो रंग लावै रहाओ। अरे प्राणी उसन सीत करता करै काम ते काढ़ै कीरी ते अस्ति करै टूटा ले गंढै। अंडज जेरज सेतज उत्पुजा प्रभ की यह किरत किरत कमावन सर्वफल रविय हर निरत। हम ते कशु ना होवना शरण प्रभ साद मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड। बिलावल महला पंजवा खोजत खोजत मैं फेरा खोजो बनथान अशाल्या पे अशाल्या शेदा भेद प्रभ ऐसे भगवान। कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागन ते सुपना पला बसिए प्रभ संग रहाओ। वर्ण आश्रम शास्त्र सुनाओ दर्शन की प्यास रूप ना रेखना पंच तत् ठाकर अबनास। ओहो स्वरूप संतन कह विरले जोगीसर कर कृपा जाको मिले तन तन ते ईसर। सो अंतर सो बाहरे बिरसे तह परमा नानक तिस प्रपेटिया जाके पूर्ण कर्मा। बिलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न पए देख प्रभ प्रताप कर जो तारिया सतगुरु कर हर आप। खात खर्चत निबहत रहे गुरसब दया खूट पूर्ण पई समग्री कबहू नहीं टूट रहाओ। साध संग आराधना हर निद्या पार धर्म अर्थ हर काम मोख देते नहीं बार।
ਭਗਤ ਆਰਾਧਿਆ ਏਕ ਰੰਗ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਨ ਸੰਚਿਆ, ਜਾਂ ਕਾ ਨਹੀਂ ਸੁਮਾਰ। ਸਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਈ ਐ ਬੇਅੰਤ ਗੁਸਾਈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਾਰਜ ਪਏ ਰਾਸ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਸ।

प्रवयग में अपार, बस्त कमावत सब सुखी किश उन्ना दिसै, संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै, जय जयकार सबै करै सच थान सुहाया, जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवां, हर हर हर यारा दिया होई है आरोग, रामचंद की लष्ट का जिन मारिया रोग, रहाओ गुरपुरा हर जापिया नित कीचै भोग, साध संगत कह वारण मिलया संयोग, जिस सिमरत सुख पाई है बिन सह बेहोग, नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवा, दो पदे कर पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आवरियो पाप सब त्यागया, दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग, शीतल मन पया गुरपुरा आराध्या, सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी करमया, रहाओ बहा पकड़ प्रभ का डेया की ना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया। बिलावल महला पंजवा, कर धर मस्तक थापया नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित वै साध जान सो लेता मान, रहाओ शरण परे चरणार बिंद, जन प्रभ के प्राण सह सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा, चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणांगत जन परे ताका सत प्रताप, राखन हारिया पार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज रामदास पुर कीने गुरुदेव, रहाओ सदा सदा हर त्याई है किश बिघन ना लागे, नानक नाम सलाही है पै दुश्मन भागे। बिलावल महला पंजवा, मन तन प्रभ आराधी है मिल साध समागे, उचरद गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे, राम नाम जो जन जपै आंदन सज जागे, तंत मंत न जो है तित ताख न लागे, रहाओ काम क्रोध मदमान मोह बिन से अनरागे, आनंद मगन रस राम रंग नानक शरणागे। बिलावल महला पंजवा, जी जूत वस प्रभु कै जो कह सो करना, पय प्रसन्न गोपाल राय पौ किश नहीं करना,

साथ रहाओ जीवन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद। रहाओ सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जय कार जगत में सफल जा की सेव। ऊच अपार गणत हर सब जी जिस हाथ, नानक प्रभ शरणागति जत कत मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा।

गावत प्रभ नाम सहज सुख्या आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल पय राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा कावड़ परताप। बिलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण पय काम पौ नाठा प्रभ मिट गया रव्या नित राम। सात जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट भय संसार मैं फिरते पहनाम, नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ उपजया सुख सात, वट प्रताप अचरज रूप हर की नीदात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई, हम तिसकी शरणागति जोसदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बिलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवया अंदन रंगराता। सांत सहज आनंद घना पूर्ण पई आस, सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम्हें अंतर जामी, थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई। बिलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखिया नो पार ब्रह्म गुरुदेव, सुख सात सहज आनंद पय पूर्ण पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जी वालिया नो जा कावड़ प्रताप। दोख हमारे बख्शिया नो अपनी कल तारी, मन बाइत फल दित्या नो नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवा चौप दे दुप दे कर शेवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोहन श्रवण यह ना सुनाए, साकत गीत नाद तुन गावत, बोलत बोलिया जाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवाओ सदा करो किरताए, अपैदान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख पंजन। मोहे चरण हृदय वसाए, सब हूं तले तले सब ऊपर, एह दृष्ट दृष्टाए अभमान खोए खोए खोए खोई हूं। मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए, अतुल अतुल अतुल नह तुलिए भगत वच्छल कृपाए। जो जो शरण पर्यो गुर नानक अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवा प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाओ बार है रहाओ। उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितार है, सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरा परिवार है। जो तुम करहो सोई पल हमरे, पेख नानक सुख चरणार है। बिलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगले उदाहरण, मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मने विसारन रहाओ। संच बिख्याले ग्रह जकीनी अमृत मनते डारन, काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बेदारन। इनते काट लेहो मेरे स्वामी हार परे तुम सारन, नानक की बेनंती प्रप है साध संक रंक तारन। बिलावल महला पंजवा संतन कै सुनियत प्रभ की बात,
कथा कीर्तन आनंद मंगल तोन पूर रही दिन से रात रहाओ। कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवा। राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिरस गए सब शोक संताप। रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसायण आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुखदाते गुर कै बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम पै बिनसे कहो नानक ठाकर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। ताप लाहया गुर सृजनहार सतगुर अपने कौ बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार। रहाओ कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगह परवान। राग बिलावल महला पंजमा चौपदे दोपदे कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा। रहाओ बिस्मन बिस्म पए जौ पेखियो कहन न जाए वड़ियाई। मगन पए ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा। ऊचन ऊंचा बीचना खींचा हों तेरा तू मोरा। एक अंकार एक पासारा एक है प्रयापारा। एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा। निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा। अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानकी ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा। बिन हर काम ना आवत है जा स्यो राच माय तुम लागे ओ मोनी मोहावत है। रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिन मैं जावत है। उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो बिखै ठगौरी खावत है। तृण को मंदिर साज सवारियो पावक तलै जरावत है। ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है। दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मदमावत है। जाल पसार चोग विस्थारी पंखी जोफा हावत है। कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपारिया मोली प्राण प्यारो मन आधारो चीत चितवो जैसे पांत बोली। रहाओ सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली। प्रेम मुख लागो जौ वट पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली। कहो नानक प्रेरवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा। गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते पेटे सा दयारा तब ते दुर्मत दूर पही। रहाओ पूर्ण पूर रहो संपूर्ण शीतल सां दयाल दई। काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते हो मंत लई। कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साके एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा। बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किश कथन न जाई। जह जह देखा तह रया समाई। रहाओ जय महा भयान दुख जम सुनिए त
तह मेरे प्रभ तुह सहाई, शरण परयो हर चरण गए प्रभ, गुरु नानक बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा, आगम रूप अविनाशी करता, पतत पवित एक निमख जपाई है, अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले, संत चरण चरण मन लाई है, कित विधि है कित संयम पाई है, कौ सुरजन के जुगति त्याई है। रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा, ओ तिसकी लई लई फुन जाई है, नानक सरन सरन सुख सागर, मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा, संत सरन संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारो, अवर काज ते छूट परी रहाओ, सुख सहज अर करो आनंदा, गुरते पायो नाम हरी, ऐसो हरस बरना सा कहो, गुरपुर है मेरी उल्ट धरी, पेख्यो मोहन सब कै संगे, ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहो कृपा निध, कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा, मन क्या कहता हौ क्या कहता, जान प्रभीन ठाकुर प्रभ मेरे, किसे आज्ञा क्या कहता रहाओ। अन बोले कहो तुही पछाने, जो जियन मैं होता, अरे मन काय कहां लौ डहके, जो पेहती संग सुनता, ऐसो जान पहे मन आनंद, आन न बियो करता, कहो नानक गुर पहे दयारा, हर रंग न कभू लहता। बिलावल महला पंजवा, निंदक ऐसे ही चर परी है, एह निशानी सुनो तुम पाई, जो कालर पीत गिरी है। रहाओ जो देखे शिदर तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परी है, आठ पहर चितवे नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरी है, निंदक प्रभु पुलाया, काल नेरा आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानका रखाया प्रभ स्वामी, क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा, ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, पेखत सुनत सदा संघरे। रहाओ काज बिहाजन कंचन छाडन, बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा, बिखिया मैं लपटाए जरे, अंधकूप मैं परे उपरानी, परम गुबार मोहे बंद परे, कहो नानक प्रभ हो दयारा, गुर पेटे काडे भा फरे। बिलावल महला पंजवा, मंतन रसना हर चीना, पय आनंदा मिट आंदे से, सर्व सुख मोको गुरदीना। रहाओ एआनप ते सब पई सियानप, प्रभ मेरा दाना बीना, हाथ दे रख अपने कहो, काहू ना करते कशकीना, बल जावो दर्शन साधु कै, जे प्रसाद हर नाम लीना, कहो नानक ठाकुर पारोसै, कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा, गुरपुरै मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दीनो, जन्म जन्म की मैल गई। रहाओ

प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण पर्यो नानक दास, जाते उपर को नाही। बिलावल महला पंजवा, सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कहीं दुख न व्यापै, अगै दरगै पूर्ण काम। रहाओ आप त्याग परिय नित सरणी, गुर ते पाइए हो निदान, जन मरण की कटिए फांसी, साची दरगै का निशान। जो तुम करहो सोई पल मानो, मन ते छूटे सगल गुमान, कहो नानक ता की शरणाई, जाका किया सगल जहान। बिलावल महला पंजवा, मन तन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर उपकार नित, तिस रसना का मूल किश नाही। रहाओ कुल समूह उदरेखन पीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, आनंद सेती बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए, पव सागर पार पराही, संत सेवक भगत हर ताके, नानक मन लागा है ताही। बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा, तुही स्वामी अंतर जामी, तुही वसै साध कै संगा। रहाओ खिन मैं थाप निवाजे ठाकर, नीच कीट ते करह रजंगा, कबहू ना बिसरे ही ये मोरे ते, नानक दास ही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचित पूजा जो गोपाल, मन तन अर्प रखो हर आगै, सर्ब जिया का है प्रतपाल। रहाओ शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राख अपने को, तिसनो लगे न ताती बाल। दामोदर दयाल स्वामी, सर्बस संत जना तलमाल, नानक जाचक दर्स प्रमांग, संत जना की मिलै रवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन पए, साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन कौ त्रास अहे। रहाओ जेते पुनः चरण से कीने, मंतन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाठा, जन्म जन्म के किल विख दहे। निरपौ होए पजो जगदीश, एहो पदार्थ वड पाग लहे, कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही होए मुआ ना पाक। रहाओ काढ़ कुठार खसम सिर काटिया, खिन मैं होए गया है खाक, मंदा चितवत चितवत पचिया, जिन रचिया तिन दीना ताक। पुत्र मीत तन किछु ना रहयो, सो छोड़ गया सब पाई साक, कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी, जिन जन का कीनो पूर्ण वाक। बिलावल महला पंजवा, पूरे गुर की पूरी सेव, आपे आवर्त स्वामी, कार्ज रास किया गुरुदेव। रहाओ आद मद प्रभ अंत स्वामी।

तन तन कलातो सब देख अभमाना, बिन नामै किछ संग ना जाना रहाओ, कीचै रस भोग खुशियां मन केरी, तन लोका तन पसमै टेरी, खाकू खाक रलै सब फैल, बिन शब्द नहीं उतरै मैल, गीत राग कंताल से कूरे, त्रिगुण उपजे बिन से दूरे, दूजी दुरमत दर्द ना जाए, छूटै गुरमुख दारू गुण गाए, तोती उजल तिलक गल वाला, अंतर क्रोध पड़े नाटशाला, नाम विसार माया मद पिया, बिन गुर भगत नाही सुख थिया, सूकर स्वान गर्दप मंजारा, पशु मलेश नीचंडाला, गुर ते मोह फेरे तन जोन पवाईऐ, बंधन बांध्या जाइऐ, गुर सेवा ते लह पदार्थ, हृदय नाम सदा कृतार्थ, साची दरगह पूछना होए, माने हुक्म सीजै दरस होए, सतगुर मिलै तां तिसको जाणै, रहर जाई हुक्म पछाणै, हुक्म पछाण सच्चै दरवास, काल बिकाल शब्द पै नास, रह अतीत जाणै सब तिसका, तन मन अर्पै है ओ जिसका, ना ओ आवै ना ओ जाए, नानक साचे साच समाए, बिलावल महला तीजा, अष्टपदी कर दसवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जग कौआ, मुख चुंच ज्ञान, अंतर लोभ झूठे मान, बिन नामै पाज रह निदान, सतगुर सेव नाम वसै मन चीत, गुर भेटे हर नाम चितावै, बिन नामै होर झूठ प्रीत रहाओ, गुर कहे आसा कार कमावो, शब्द चीन सहज कर आवो, साचै नाय वडाई पावो, आप न बूझै लोक बुझावै, मन का अंधा अंध कमावै, दर घर महल ठौर कैसे पावै, हर जियो सेवियै अंतर जामी, घट घट अंतर जिसकी जोत समानी, तिस नाल क्या चलै पहनामी, साचा नाम साचा शब्द जानै, आपै आप मिलै चुकै अभमानै, गुरमुख नाम सदा सदा वखानै, सतगुर सेवै दूजी दुरमत जाई, औगुण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति जो समाई, सतगुर मिलै वड्डी वड्याई, दो काटे हृदय नाम वसाई, नाम रते सदा सुख पाई, गुरमत मानिया करनी सार, गुरमत मान्या मोख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार साधार। बिलावल महला चौथा, अष्टपदियां घर ग्यारवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आपै आप खाए हो मेटै, आन दिन हर रस गीत गवैया, गुरमुख परचै कंचन काया, निरपव ज्योति ज्योत मिलैया, मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह न सको बिन नावै, गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ, एक गिरो दस द्वार हैं जाके, अहनसो तस्कर पंच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जावै, मनमुख अंदले खबर ना पैया, कंचन कोट बहुमानक भरिया, जागे ज्ञान तत् लिव लैया, तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोए था, खेवट शब्द गुरपार लंगैया, जम जागाती नेण ना आवै, ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावै सदा दिन राती, मैं हर जस कहते अंत न लहिया, गुरमुख मनुआ इकत घर आवै, मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्श मंत्र बतै, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म देव है पीने, रस रस राम गोपाल रवैया, त्रै गुण माया मोहे वे आपे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया, एक दृष्ट सब सम कर जान है, नदरी आवै सब ब्रह्म पसरैया, राम नाम है ज्योत सबाई,
ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਅਲਖ ਲਖਈਆ, ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਏ ਹੈ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਈਆ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੀਤਲ ਜਲ ਧਿਆਵੋ, ਹਰ ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧ ਗੰਦਈਆ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਿਰਡ ਪਲਾਸ ਸੰਗ ਹਰ ਬੁਹੀਆ। ਜਪ ਜਗਨਨਾਥ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਈਆ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੇ ਜਨ ਉਬਰੇ, ਜਿਉ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਉਧਾਰ ਸਮਈਆ। ਰਹਾਓ ਪਾਰ ਅਠਾਰੈ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਉਤਮ, ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ। ਸਾਕਤ ਕੂੜੇ ਊਬ ਸੁੱਕ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਅਭਮਾਨ ਵਿਛੜ ਦੂਰ ਗਈਆ। ਹਰ ਗਤਮਿਤ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਸਭਿਦ ਹਰ ਹਰ ਆਪ ਬਨਈਆ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਕੰਚਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਮਿਟੈ ਨਾ ਮਿਟਈਆ। ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ, ਸਾਗਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਖੁੱਲਈਆ। ਗੁਰਚਰਨੀ ਇੱਕ ਸਰਦਾ ਉਪਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਪਹੀਆ। ਪਰਮ ਬੈਰਾਗ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿਤੇ ਪਾਵਨੀ ਕਹੀਆ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਖਿਨ ਖਿਨ ਪਲ ਕਹੀਏ, ਹਰ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਰੈ ਪਰਈਆ। ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰੈ, ਧਰਮ ਕਰੋ ਖਟ ਕਰਮ ਦਰੜਈਆ। ਮਨਮੁਖ ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਵਿਗੂਤੇ, ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨਾਵ ਪਾਰ ਬੁਡਈਆ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮੇ ਗਤ ਪਾਵੋ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤਰ ਨਾਮ ਦਰੜ।

सब बाद सिंगार फोगट फोगटैया, कियो सिंगार मिलन कै पाई, प्रभ लियो सुहागन थूक मुख पैया। हम चेरी तू अगम गुसाई, क्या हम करे तेरे वस पैया, दयाधीन करो रख ले वो, नानक हर गुर सरण समैया। बिलावल महला चौथा। मैं मंतन प्रेम अगम ठाकर का, खिन खिन सरदा मन बहुत उठैया, गुर देखे सरदा मन पूरी, जो चातरक प्रयो प्रयो बूंद मुख पैया। मिल मिल सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले, मैं तिसे आगे सिर कट कट पैया, रहाओ रोम रोम मंतन एक बेदन, मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया। वैदिक नाटक देख भुलाने, मैं हृदय मंतन प्रेम पीर लगैया। हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम, ज्यो बिन अमल अमली मर गैया। जिनको प्यास होए प्रभ केरी, तिने अवर ना पावे, बिन हर को दुइया, कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे। हौ तिस विटो बल बल घूम गैया, अनेक जन्म के विछड़े जन मेले, जा सत सत सतगुर शरण पवैया। सेज एक एको प्रभ ठाकर, महल ना पावे मन मुख भरमैया। गुर गुर कर तो शरण जे आवे, प्रभ आए मिलैखिन ढील ना पैया। कर कर क्रिया चार वधाए, मन पाखंड कर्म कपट लोबैया। बेसुवै का बेसुआ कै घर बेटा जन्मया, पिता ताहे क्या नाम सदैया। पूर्व जन्म भगत कर आए, गुर हर हर हर हर भगत जमैया। भगत भगत करते हर पाया, जा हर हर हर हर नाम समैया। प्रभ आन आन मेहंदी पीसाई, आपे कोल कोल अंग लैया। जिनको ठाकर कृपा तारी, बहा पकर नानक कढ़ लैया। राग बिलावल महला पंजवा, अष्टपदी घर बारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उपमा जात ना कही मेरे प्रभ की, उपमा जात ना कही, तज आन शरण गही रहाओ। प्रभ चरण कमल आधार, हौ जाऊ सत बलिहार। मन प्रीत लागी ताहे, तज आन कतै ना जाहे। हर नाम रसना कहन, मल पाप कल मल दहन। चढ़ नाव संत उधार, पैतरे सागर पार। मन डोर प्रेम प्रीत, ए संत निर्मल रीत। तज गए पाप बेकार, हर मिले प्रभ निरंकार। प्रभ पेखी है बिस्माद, चख अंद पूर्ण साद। नह डोलिए इतियूत, प्रभ बसे हर हर चीत। ते नाहे नरक निवास, नित सिमर प्रभ गुणतास। ते जमना पेखे नैन, सुन मोहे अनहत बैन। हर शरण सूर गोपाल, प्रभ भगत।

ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिया आप करता आप पहुता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया बिलावल महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस आओ सखी असी फिरका मंगल गावे तजमान सखी माते अपने प्रीतम पावे तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजन हो लग चरण सरण दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी ताजो दासी बहुड़ विधि ना तावा नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा अमृत प्रे का नाम मैं अंधले टोहनी ओह जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महाबचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए टीठ मीठी मने लागे नाम लैण ना आवे गृह बने तीरे बर्त पूजा बाट काटे जोहनी नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंदरे टोहनी मोह नाथ प्रे नाथ ज्यो जानो त्यों रखो चतराई मोह नाए रिझावो कै मुखो नह चतर सुगर सुजान बेती मोह निर्गुण गुण नहीं नह

संगति बह पाओ कर सदा हर के गुण गाए। नानक से जन सोहणे जे गुरमुख मेल मिलाए पौड़ी सबना जिया विच हरे आप सो भगतां का मित हर सब कोई हर कै वस भगतां कै आनंद कर हर भगतां का मेली सरबत सो निसल जन टंग तार हर सब ना का है खसम सो भक्त जन चित कर तुद अपड़ कोय ना सकै सब चख चख पवै चाड़। श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदै ते ब्राह्मणा जे चलै सतगुर पाए जिन कै हृदय हर वसै हम मै रोग गवाए। गुण रवै गुण संग्रह ज्योति ज्योत मिलाए इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदै चित लाए। नानक जिन को नजर करे हर सच्चा से नाम रहे लिवलाए। महला तीजा। सतगुर की सेवना कीतिया शब्द ना लगो पाओ हम मैं रोक मावना अदीर्घ बहु सुआओ। मन हठ कर्म कमाव दे फिर जोनी पाए गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे लय मिलाए। नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्लै पाए पौड़ी। सब वड्याइया हर नाम विच हर गुरमुख त्याई है जे वस्त मंगी है साई पाई है जे नाम चित लाई है। गोज गल जी की कीचै सतगुरु पास ता सर्व सुख पाई है गुर पूरा हर उपदेश दे सब भुख लै जाई है जिस पूर्व होवै लिखिया सो हर गुण गाई है। श्लोक महला तीजा। सतगुर ते खाली को नहीं मेरा प्रभ मेल मिलाए सतगुर का दर्शन सफल है जिहा को इच्छे तिहा फल पाए। गुर का शब्द अमृत है सब तृष्णा भुख गवाए हर रस पी संतोख होवा सच वस्या मन आए। सच ते आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए सचो दै दस पसरिया गुर कैसे सुवाए। नानक जिन अंदर सच है से जन छपै ना किसै देश पाए। महला तीजा। गुर सेवा ते हर पाई है जा को नदर करे मानस ते देवते पए सच्ची भगत जिस दे हाँ मैं मार मिलायन गुर कै शब्द सोचे नानक सह जे मिल रहे नाम वड्याई दे पौड़ी। गुर सतगुर विच नाम है की वड्डी वड्याई हर करतै आप वधाई सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओना अंदर हिरदै पाई। निंदक दुष्ट वड्याई वेख ना सकन ओना प्राया भला ना सुखाई। क्या होवै किसी ही दी क्या होवै किसी ही की चख मारी जा सच्चे स्यों बने आई। जे गल करते पावै सा नित नित चढ़ै सवाई सब चख चख मरै लोकाई। श्लोक महला तीजा। त्रिग एह आसा दूजे भाव की जो मोहे माया चित लाए हर सुख पल्लर त्यागया ना विसार दुख पाए। मनमुख अज्ञानी अंधले जन्म मरै फिरे आवै जाए कार्य सिद्ध न होवनी अंत गया पछताए। जिस कर्म होवै तिस सतगुर मिलै सो हर हर नाम ते आए नाम रते जन सदा सुख पाए। न जन नानक तन बल जाए। महला तीजा। आसा मनसा जग मोहनी जिन मोया संसार सब को जम के चीरे विच है जेता सब आकार हुक्मी ही जम लगदा सोबरै जिस बख्शै करतार। नानक गुर प्रसाद दी हो मंतांतर है जा छोड़ै हंकार आसा मनसा मारे निराश होए गुर शब्दी विचार पौड़ी। जिथे जाइए जगत मैं तिथे हर साई अगै सब आपे वरतदा हर सच्चा न्याई। कूड़ यारा के मोह फिटकी है सच भगत वड्याई सच साहेब सच्चा न्याओ है सिर निंदक शाई।

कोई वाहे को लुणे को पाए खलहान, नानके अपना जापई कोई खाए निदान। महला पहला जिस मन वसया तरिया सोए, नानक जो पावे सो होए। पौड़ी पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुर मेहरवान परम पौ मारिया। काम क्रोध विकराल दूत सब हारिया, अमृत नाम निदान कंठे उर तारिया। नानक साधु संग जन मरण सवारिया, सलोक महला तीजा जिन्नी नाम विसारिया। कूड़े कहन कहन पंच चोर तिन्ना घर मोहन, हो मैं अंदर सन सागत मुठे दुरमति हर रस ना जानन। जिन्नी अमृत परम लुटाया बिकसो रचै रचन, दुष्टा सेती परहड़ी जन से वाद करन। नानक सागत नरक मैं जंबदे दुख सहन, पया किरत कमाम दे जब राखै तवै रहन। महला तीजा जिन्नी सतगुर सेवया तान निताने तिस, सास ग्रास सदा मन वसै जम जोहे न सकै तिस। हिरदय हर हर नाम रस कवला सेवक तिस, हर दासा का दास होए परम पदार्थ तिस। नानक मंतन जिस प्रभ वसै हौ सतगुर बाणै तिस, जिनको पूर्व लिखिया रस संत जना स्यों तिस। पौड़ी जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेसर सुनिया, सोई वर्तिया जगत मैं कटकट मुख पणिया। बहुत वडियाइया साहेब नै जाही गणिया, सच सहज आनंद सतगुरु पास सच्ची गुरमणिया। नानक संत सवारे पार ब्रह्म सच्चे ज्यो बणिया। सलोक महला तीजा अपना आप ना पछाणई हर प्रभ जाता दूर, गुर की सेवा विसरी क्यों मन रह हजूर। मन मुख जन्म गवाया झूठे लाल चकूर, नानक बख्श मिलाया न सच्चे शब्द हदूर। महला तीजा हर प्रभ सच्चा सोहेला गुरमुख नाम गोविंद, अंद नाम सलाहना हर जपया मन आनंद। वडभागी हर पाया पूर्ण परमानंद, जन नानक नाम सलाहया बहु नमन तन पंग। पौड़ी कोई निंदक होवे

ना भावै सुध। बिलावल बाणी भगतां की, कबीर जीओ की। एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुरप्रसाद। ऐसो संसार।

कहे कबीर में ना मेरा मन मानिया राम प्रीत कियो लै देव। बिलावल बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सफल जन्म मोको गुर कीना दुख विसार सुख अंतर लीना। ज्ञान अंजन मोको गुर दीना राम नाम बिन जीवन मन हीना रहाओ। नाम दे सिवरन कर जाना जग जीवन स्यो जियो समाना। बिलावल बाणी रविदास भगत की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दार्द देख सबको हसै ऐसी दशा हमारी। अष्ट दशा सिद्ध कर तलै सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं किश नहीं पव खंडन राम। सगल जी शरणागति प्रपूर्ण काम रहाओ। जो तेरी शरणागता तिन्ना ही पार। ऊच नीच तुम ते तरे आलज संसार।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौपदे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर दिस की आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रहा समाई। मेरे मानो आसा कर जगदीश गुसाई। जो बिन हर आस अवर कहूं की जय साने फल आस सब वृथी जाई रहाओ। जो दिस माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया कश ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की। जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कित कम आई। यह आस पर मित्री भाव दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की। जो तेरा कहलिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी। जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेविय नित्याई है जो खिन मैं किले विखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव है सब भूखला हसा। मेरे मन हर उपर की जय परवासा। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी हर अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ता आगे अपनी बिरथा बह बहुत कटासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए। अवरा पह कहे मन लाज मरासा। जो संसार है के कुटंब मित्र भाई दिसे मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। जे दिन उनका

ओट, नाम जपत मिटै पाप कोट, रास दी हरे को नाम, मन का इष्ट गुर संग ध्यान रहाओ।

सिमरत शास्त्र वेद पुराण पार ब्रह्म का करै वख्याण। जोगी जति वैष्णो रामदास मित नाही ब्रह्म अविनाश करण पलाह करै शिवदेव तिल नहीं बूझै अलख्या पहेव प्रेम भगत जिस आपे दे जग में विरले के ही के मोहे निर्गुण गुण किशु नाहे सर्वनिधान तेरी दृष्टि माहे नानक दीन जाचे तेरी सेव कर कृपा दीजे गुरुदेव। गोंड

पतन होए, जिस कौ राखै सिरजनहार, चख मारो सगल संसार, प्रभ अपने का पया विसास, जियो पिंड सब तिस की रास, नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सद जीत। गोंड महला पंजवा। नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सिमरत।

ना जाहे, नारायण सेव सगल फल पाहे। नारायण मन माहे आधार, नारायण बोध संसार। नारायण कहे तो जम भाग पलायण, नारायण दंत पाने डायण। नारायण सद सद बख्शेंद, नारायण कीने सुख आनंद। नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप। नारायण साध संग नारायण, बारंबार नारायण गायण। बस्त अगोचर गुर मिल लही, नारायण ओट नानक दास गही। गुण महला पंजवा, जा कौ राखै राखनहार, तिसका अंकर निरंकार। रहाओ मात गर्व में अगन ना जो है, काम क्रोध लोमो ना पो है। साध संग जपै निरंकार, निंद कै मोय लागे शार। राम कवच दास का सना हो, दूत दुष्ट तिस पोहत नाहे। जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो शरण पया हर राए, सो दास रखिया अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार, ओ खिन मैं रुलता खाकू नाल। हैपी साचा हो बनहार, उस दास दा जाई बलिहार। अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्र प्राण आधार। गोंड महला पंजवा, अचरज कथा महान रूप। प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप रहाओ। ना हो बूढ़ा ना हो बाला, ना इस दुख नहीं जमजाला। ना हो बिनसे ना हो जाए, आज गादी रहा सुमाए। ना इस पुसन नहीं है सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत। ना इस अर्ख नहीं है सोग, सब किश इसका एहो करने जोग। ना इस बाप नहीं है समाया, एहो परम्पर होता आया। पाप उनका इसलिए अपना लागे, कट कट अंतर सद ही जागे। तीन गुणा एक सकतो पाया, महा माया तां की है छाया। अशाला शेदा पे दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल। ता की गतमित कशु ना पाए, नानक ता कै बल बल जाए। गोंड महला पंजवा, संतन कै बलहार है जाओ। संतन कै संग राम गुन गाओ। संत प्रसाद किलवख सब गए, संत शरण वड़ पागी पए। राम जपत कश विघ ना लागै, राम जपत कश विघ ना व्यापै। गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै रहाओ। पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करै लवाल। काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसै मन आए। सफल जन्म ताका प्रवाण, पार ब्रह्म निकट कर जान। पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे। चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार। दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तुहूर।

केस जले जैसे कास का पूला, कहो कबीर तभी नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे, गोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौदस गगन रहाए ले, आनंद मूल सदा पुरखोत्तम, कट बिनसै गगन न जाए ले, मोहे बैराग पयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ, पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे, कर्म बद तुम जियो कहता हो, कर्म है किन जियो दीन रे, हर मैं तन है तन मैं हर है सर्ब निरंतर सोए रे, कह कबीर रा राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे, राग गोंड।

हरे महावत तुझ दारो काट, इसे तुरावो कालो साट। हस्त ना तोरै तरै त्यान, वा कर दे बसै भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार, बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया पर लीना, मन कठोर अजू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद मैं जन की जिंद। गोंड नायो मानस नायो देओ, नायो जति कहा वैसे ओ। ना हो जोगी ना अवधूता, ना समाय ना काहू पूता। या मंदिर मैं कौन बसाई, ताका यंतना को उपाई रहाओ। ना हो गृही ना हो दासी, ना हो राजना पीख मगासी। ना इस पिंड

देख इस मरते को जे को रोवे जो रोवे सोई पत खोवे। गुर प्रसाद मैं डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश जस कागत पर मिटे ना मंस गोंड। टूटे तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल या मुंडिया सरचट बोकाल। एहो मुंडिया सगलो दरब खोई आवत जात नाग।

पे जाहे। एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साक्षर उनको खाट। मूंड पलोस कमर बद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बुढ़द की टेक। सुन अंदली लोई बेपीर, इन मुंडिया न पज सरन कबीर। गोंड खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा और होवे। रखवारे का हुए विनाश, आगे नरक यहां भोग बिलास। एक सुहागन जगत प्यारी, सगले जी जंत की नारी। रहाओ सोहागन गल सो है हार, संत कौ बेख बिकसै संसार। कर सिंगार बह पखियारी, संत की ठिठकी फिर बिचारी। संत भाग हो पाछै पर, गुर प्रसादी मारो डरै। सागत की हो पिंड परायण, हम कौ दृष्ट पर त्रखडायण। हम तिसका बहु जान्या पेओ, जब हुए कृपाल मिले गुरुदेओ। कहो कबीर अब बाहर परी, संसार कै अंचल लरी। गोंड गृह सोभा जा कैरे नाहे, आवत पैया खुदे जाहे। वाकै अंतर नहीं संतोख, बिन सोहागन लागै दोख। तन सोहागन महापवीत, तपित पिसर डोलै चीत। रहाओ सोहागन कृपन की पूती, सेवक ताज जगत स्यों सूती। साधु कै ठांडी दरबार, शरण तेरी मोको निस्तार। सोहागन है अत सुंदरी, पग नेवर शनक शन हरी। जव लग प्राण तऊ लग संगे, नाहे ता चली बेग उठ नंगे। सोहागन पवन त्रैलिया, दस अठ पुराण।

पांच नारद कै संग बिद्वार, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड। जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरै, ना बिना कैसे पार उतरै, कुंभ बिना जल ना टीकावै, साधु बिन ऐसे अवगत जावै, रहा जा रो तिसै जो राम ना चेतै, तन मन रमत रह मैं खेतै रहाओ। जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोई है, सूत बिना कैसे मणि परोई है, कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाई है, साधु बिन तैसे अवगत जाई है। जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई, कोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार। जैसे बाजे बिन नहीं लीजे फेरी, खसम दुहागन ताज ओहेरी, कह कबीर एक कह कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना गोंड। कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कसवटी लावे, सो कूटन मुक्त बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के माहे विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन स्यो नाचै, झूठ ना पतिए पर चै साचै, इस मन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारै सोदै, पांच पलीतै कहो प्रबोदै, नौ नाए की पंक्त पिछानै, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए

अश्वमेध जग ने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सिवा सख्त संवादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं भज नामा तरस पव सिंदं गोंड नाद प्रमे जैसे मृगाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेराओ राम छोड़ चित अंत ना फेराओ रहाओ। ज्यो मीना हेरै पशुआरा सोना गढ़ते हरै सोनारा ज्यो बिखई हेरै परनारी कौडा डार तेहरै जुआरी जय जय देखो तै तै रामा हर के चरण नित त्यावै नामा गोंड।

सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जिनकिया जी दान काली कौदिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जबद पै अपदा तरी गोंड पैरो पूत सीतला तावै खर बाहन ओ शारो डावै हौ तौ एक रमैया लै हो आन देव बदला वंदै हो रहाओ शिव शिव करते जो नर त्यावै बर्द चढ़े डौरू टमकावै महामाई की पूजा करै नरसै नर होए अवतरै तू कहत ही अद भवानी मूत की बरिया कहां छपानी गुरमत राम नाम गहो मीता प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो पी आवत देखा था। रावण सेती सरबर होई कर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहां ते ज्ञानी सियाणा। हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या जय देहोरा नाम सीत। रागोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता।

मस्तक निशानं सेव मुकंद करे बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी एक मुकंद करे उपकार हमरा कहां करे संसार।

अस अब तृष्णा चुकी जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड जे हो 68 तीर्थ नावे जे हो द्वादश शिला पूजावै जे हो कूप तटा देवावै करै निंद सब बिरथा जावै साध का निंदक कै

जे हो अनक प्रसाद करावै भूमदान शोभा मंडप पावै अपना बिगार बिराना सांडै करै निंद बोजो नी हांडै निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया जोड़ राम कली।

काल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद, कोई पढ़ता सहसा करता कोई कड़े पड़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली लागे तसै त्याना। अब ही कभी किशु ना जाना, तेरा एको नाम पछाना।

जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कह, आशा पीतर रह निराशा तव नानक एक मिले। इन विद सागर तरिय जीवत आयो मरिय, रहाओ दूजा राम कली महला पहला। सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी, बाजे लोक सुने पत झोली मंगण कै ताई, पीखिया नाम पड़े बाबा गोरख जागे। गोरख सोजन गोए उठाली, करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे, चंद सूरज मुख दिए, मरण जीवन कौ धरती दीनी, एते गुण विसरे। सिद्ध साधक यार योगी जंगम, पीर पुरश बहु तेरे, जेतन मिला ता कीर्त आखां, ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे, पानी कमल रह, ऐसे भगत मिले जन नानक, तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला। सुन माशिंद्रा नानक बोले, वसगत पंच करे नहीं डोले, ऐसी जुगत जो कौ पाले, आप तरह सगले कुल तारे। सो अवधूत ऐसी मत पावे, अहनिस सुन समाज समावे रहाओ। भिखिया पाए भगत पै चले, होवे सो तृप्त संतोख अमुले। ध्यान रूप होए आसन पावे, सच नाम ताड़ी चितलावे। नानक बोले अमृत बाणी, सुन माशिंद्रा औदू निशानी। आसा महे निरास वलाए, निहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए, गुर चेले की संद मिलाए। दीखिया दारू भोजन खाए, छे दर्शन की सोजी पाए। राम कली महला पहला। हम डोलत बेड़ी पाप भरी है, पवन लगे मत जाई। सनमुख सिद्ध पेटन कौ आए, निहचो देवड़े आई। गुर तार तार नहारिया, देह भगत पूर्ण अविनाशी, हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम, एक सिद्ध जिनी त्याया। परसत पैर सिजते स्वामी, अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना, नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेसर नानक पेटे ओ, साचा शब्द नवेरा। राम कली महला पहला, सुरती सुरत्र लाइए एत, तन कर तुल्हा लंगे जेत। अंतर पाहे

पाए जिन किश किया सो किश करै अपनी कीमत आपे तरै गुरमुख प्रगट होवा हर राए ना को आवै ना को जाए लोक तिकार कहै मंगत जन।

रामकली महला पहला, सागर मैं बूंद, बूंद मैं सागर, कवन बुझै बिद जाना, उत्पो चलते आप कर चीना, आपे तत् पछाण, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परम गत होई रहाओ। दिन मैं रहण रहण मैं दिनियर, उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित अवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई। पुरख मैं नार, नार मैं पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन मैं ध्यान, ध्यान मैं जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन मैं जोत, जोत मैं मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई। राम कली

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे यो नृत्यकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक।

कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बांछे पिस्त, कोई सुरगिंदू, कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं पवन।

अगली किश खबर ना पाई, रोवनहार पे उठ सिधाई, पर मोह के बांधे बंद, सुपन भया पखलाए अंद। एहो तौ रचन रचिया करतार, आवत जावत हुक्म अपार, नह को मुआ ना मरना जोग, नह बिन सैब नासी होग। जो एहो जानो सो एहो नाए, जानन हारे कौ बल जाओ। कहो नानक गुर भरम चुकाया, ना कोई मरे ना आवै जाया। राम कली महला पंजवां, जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीवै, फिर ना खाई महाकाल रहाओ। कोट जन्म प्रम प्रम प्रम आयो, बड़े भाग साध संग पायो। बिन गुर पूरे नाही उदार, बाबा नानक आखै हो बीचार। राग राम कली महला पंजवां, कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। चार पुकारै ना तू मानै, खट पी एका बात वखानै। दस अष्टी मिले को कहया, तापी जोगी भेद ना लया। किंकरी अनूप वाजै, जोगी अमतवार रे रहाओ। प्रथमे वसिया सत का खेड़ा, तृतीय मैं किश भया दुतेड़ा। द्वितीया अर्धो अर्ध समाया, एक रया ता एक दिखाया। एक ऐ सूत परोए मणिए, गाठी पिन पिन पिन पिन तणिए। फिरती माला बहविद पाए, खिंचा सूत आई थाए। चाहो मैं एक ऐ मट है किया, तह बिखड़े थान अनक खिड़किया। खोजत खोजत द्वारे आया, ता नानक जोगी महल कर पाया। इउं किंकरी अनूप वाजै, सुन जोगी कै मन मीठी लागै। रहाओ दूजा राम कली महला पंजवां।

जप नाथ दिन रह नाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगे टूका तृप्त ना आवै नाथ छोड़ जाचे लाज ना आवै। चल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा। गुर गोरख की तै बूझ ना पाई फिर जोगी आवै जाई। जिसनो होवा नाथ कृपाला रै रास हमारी गुर गोपाला। ना मैं खिंथा ना मैं बस्तर जन नानक जोगी होवा अस्तर। इउ जपया नाथ दिन रह नाई हुण पाया गुर गोसाई रहाओ। दूजा राम कली महला पंजवा करण करावन सोई आना दिसै कोई। ठाकुर मेरा सुड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना। ऐसो रे हर रस मीठा गुरमुख किने विरलै डीठा रहाओ। निर्मल जोत अमृत हर नाम पीवत अमर भय नेकाम। तन मन शीतल अगन निवारी आनंद रूप प्रगटे संसारी। क्या देवो जा सब किश तेरा सत बलिहार जाऊ लख बेरा। तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया। खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया। कहो नानक सब पढ़।

जा कै अंतर हर हर स्वाद कहन न जाई नानक बिस्माद राम कली महला पंजवा भेटत संग पार ब्रह्म चित आया संगत करत संतोख मन पाया संतै चरण माथा मेरो पौत अनक बार संतै डंडौत एहो मन।

हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सुरत मत

काल इष्ट मीत जान सब चलै, हर हर नाम संग तेरे चलै। राम नाम गुण गाए ले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहै। हर सिमरत जम कछ ना कहै रहाओ, बिन हर सगल निरार्थ काम। सोना रूपा माटी दाम, गुर का शब्द जाप मन सुखा। इहा उहा तेरो उजल मुखा, कर कर थाके वडे वडेरे। किन्ही ना किए काज माया पूरे, हर हर नाम जपै जन कोए। ताकि आसा पूर्ण होए, हर भगतन को नाम आधार। संती जीता जन्म अपार, हर संत करे सोई प्रमाण। नानक दासता कै कुर्बान, राम कली महला पंजवा। सिंचै दर्ब देह दुख लोग, तेरे काज न अवरा जोग। कर अहंकार होए वरतै अंध, जम की जेवड़ी तू आगे बंद। छाड़ विडाणी तात मूड़े, इहां बसना रात मूड़े। माए माया कै माते तैं उठ चलना, राच रहे तू संग सुपना रहाओ। बाल व्यवस्था बार के अंध, पर जोबन लागा दुर्गंध। तृतीय व्यवस्था सिंचे माए, बिरध भया छोड़ चल।

ताप कपट खुलाने भ्रम नाठे दूरे नानक कौ गुर पेटे पूरे। राम कली महला पंजवां कोट जापता विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रसै गुरमुख नाम निमख हृदय वसै हर के नाम की वड़ियाई कीमत कहन न जाई रहाओ। सूर बीर तीरज मत पूरा सहे समा तुन गहर गंभीरा सदा मुक्त ताके पूरे काम जा कर दे वसै हर नाम। सगल सुख या नंद या रोग समदर्शी पू

हर की कथा सुनत पवित जेवा भगत पाई गत मत सो प्रवान जिस हृदय वसाई नानक ते जानी उत्तम पाई राम कली महला पंजवा गहो कर पकरी ना आई हाथ प्रीत करी चाली नहीं साथ।

रहाओ जब उसको कोई देवे मान तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे तब यो सेवक सेवा करे मुख बेरावे अंत ठगावे एक ठौर ओ कई ना सुमावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड राम जनी की नी खंड खंड जो मांगे सो भूखा रह इस संग राचै सो कछु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक हो तरह। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व मैं पेख पूर्ण पूर रहा प्रभ एक। रत्न मोल हृदय मैं जान अपनी वस्तु पछान पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाइए बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस वेद सुने कह डोरा कोट प्रकाश ना दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचे जिसनी बुझावे सो कित बिद बुझे। जानन हार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित हर तन रास निरास ए बित। काटी बंद हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गावे हर जानू अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ आए बने

सदा आनंद न होवी सोग, कबु न व्यापै हमै रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म भय बिस्मादा। परमगत पावै हर सिमर प्राणी रहाओ। गान मिन देखो सगल विचार, नाम बिना को

मिट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मन ते कबो न विसर गोपाल तेरे दास की हो मातूर नानक की प्रभ सरदा पूर राम कली महला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुझ में दूजा नाही कोय तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याय पूरा जिस कर्म तरण तारण प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा तुझ बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ जप जप जीवा तेरा नाओ आगे दरगह पावो ठाओ दुख अंधेरा मन ते जाए दुरमत बिनसै रचै हर नाए चरण कमल स्यो लागी प्रीत गुरपुरे की निर्मल रीत पहो भागा निरपव मन बसै अमृत नाम रसना नित जपै कोट जन्म के काटे फाहे पाया लाभ सच्चा तन लाहे तोट न आवै अखुट भंडार नानक भगत सोहै हर द्वार राम कली महला पंजवा रतन जिवे हर नाम सत संतोख ज्ञान सुख सहज दया का पोता हर भगता हवाले होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कष्ट उठ न आवै अंत नहीं हर पारावार रहाओ कीर्तन निर्मोलक हीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी सुन समाध गुफा तय आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन भगत भगत संग प्रभ गोष्ट करत तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप देवाया साध संग तिन हर तन पाया दयाल पुरख नानक अरदास हर मेरी वर

अवतार न जानै अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत। अपनी गाते आप जानै, सुन सुन अवर वखानै रहाओ। संकरा नहीं जानै भेव, खोज तहारे देव। देविया नहीं जानै मर्म, सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म। अपना रंग करता केल, आप बिछोरै आपे मेल। एक परमे एक भक्ति लाए, अपना किया आप जनाए। संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेख आखी। नहीं लेप तिस पुन्ना पाप, नानक का प्रभ आपे आप। राम कली महला पंजवा, किशु काजना कियो जान। सुरत मत नाही किश ज्ञान, जाप ताप सील नहीं धर्म। किशु ना जानो कैसा कर्म, ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे। तुझ बिन दूजा और ना कोई, भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ। रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास, बिखे ब्याद के गाव में बास। करण हार मेरे प्रभ एक, नाम तेरे की मन में टेक। सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम, पाप खंडन प्रभ तेरो नाम। तू अगंत जी का दाता, जिसे जनाम है तिन तू जाता। जो उपायो तिस तेरी आस, सगला राधा है प्रभ गुणपास। नानक दास तेरे कुर्बान, बेअंत साहिब मेरा मेहरबान। राम कली महला पंजवा, रखन हर दयाल। कोट पव खंडे निमख ख्याल, सगल अराधै जंत। मिलिया प्रभ गुर मिलमंत, जियन को दाता मेरा प्रभ। पूर्ण परमेश्वर स्वामी।

तारण तरण हर शरण जीवन रूप हर चरण संतन के प्राण आधार ऊंचे ते ऊंचे अपार सुमत सार।

बूढ़त लोहो साध संगत रह नानक सह प्राप्त कर। रामकली महला पंजवा मन माहे जा भगवंत गुरपुर एहो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किश कहण ना जाई साचे साचा लाखा पेवा रहाओ करण करामने।

ठाकुर भेटे गुणतास, एको नाम ध्याए मन मेरे, कार्य तेरा होवे पूरा, हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ, तुम ही कारण करण, चरण कमल हर शरण, मन तन हर ओही ते आया, आनंद हर रूप दिखाया, तिस ही की ओर सदीव, जाके कीने है जीव, सिमरत हर करत निदान, रखन हार निदान, सर्व

नमो भगवंत गोसाई खालक रव रया सरबठाई रहाओ जगनाथ जगजीवन माधो पौ पंजन रिद माया राधो रिखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद।

गोपाल को जस गाओ प्राणी, अकथ कथा साची प्रपूर्ण, ज्योति जो समानी रहाओ। तृष्णा पूख सब नासी, संत प्रसाद जपया बनासी। रहन दिनस प्रभ सेवक मानी, हर मिलने किए निशानी। मिटे जंजाल होए प्रभ दयाल, गुर का दर्शन देख निहाल। परा पूर्बला कर्म बन आया, हर के गुण नितरस ना गाया। हर के संत सदा प्रवान, संत जना मस्तक निशान। दास की रेण पाए जे कोए, नानक तिसकी परम गत होए। राम कली महला पंजवा, दर्शन कहो जाइए कुर्बान। चरण कमल हृदय तर ध्यान, तूर संतन की मस्तक लाए। जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए, जिस भेड़त मिटे अभमान। पार ब्रह्म सब नदरी आवे, कर कृपा पूर्ण भगवान रहाओ। गुर की कीर्त जपिए हर नाओ, गुर की भगत सदा गुण गाओ। गुर की सुरत निकट कर जान, गुर का शब्द सत कर मान। गुर बचनी समसर सुख दुख, कदे ना व्यापै तृष्णा भूख। मन संतोख शब्द गुर राजे, जब गोबिंद पढ़दे सब काजे। गुर परमेश्वर गुर गोविंद, गुरदाता दयाल बख्शिंद। गुर चरणी जा का मन लागा, नानक दास तिस पूर्ण भागा। राम कली महला पंजवा, किस पर वासै बिचरै भवन। मूड़ मुगद तेरा संगी कवन, राम संगी तिस गत नी जानै। पंच बटवारे से मीत कर मानै, सो कर सेव जित उदरै मीत। गुण गोविंद रविये दिन राती, साध संग कर मन की प्रीत रहाओ। जन्म बिहानो अहंकार अरवाद, तृप्त ना आवै बिखिया साध। परमत परमत महा

चक्र पेलो हर चरण कमलो सरनाए मना राम नाम जब संग सहाई गुरमुख पावे साई तना रहाओ उन्ने काजन होवत पूरे काम क्रोध मसद ही चूरे करै बेकार जिया रे कह ताई गाफल संग न तसुआ जाई धरत तोह अनक छल जानै कौडी कौडी कौ खाक सिर शानै जिन दिया तसेरा चेतै मूल मिथ्या लोभना उतरै सूल पार ब्रह्म जब पहे दयाल इह मन होवा सादरवाल हस्त कमल लड़ लीनो लाए नानक साचै साज समाए राम कली महला पंजवा राजा राम की सरनाए निरपो पय गोविंद गुण गावत सा संग दुख जाए रहाओ जा कै राम बसै मन माही सो जन दुत्तर पेखत नाही सगले का सवारे अपने हर हर नाम रसन नित जपने जिसके मस्तक हाथ गुर धरै सो दासा देसा काहे करै जन्म मरण की चूकी कान पूरे गुरु उपर कुर्बान गुर परमेसर भेट निहाल सो दर्शन पाए जिस होए दयाल पार ब्रह्म जिस कृपा करै साध संग सो पवजल तरै अमृत पीवाओ साध प्यारे मुखी उजर साचै दरबारे अंध करो तज सगल बेकार नानक हर जप उतरो पार राम कली महला पंजवा ईंदन ते बै संतर भागै माटी कौ जल दै दिस त्यागै ऊपर चरण तलै आकाश कटमै सिंध की ओ प्रगास ऐसा समर्थ हर जियो आप निमखना बिसरै जी भगतन कै आठ

देही गुप्त बदेही दिसै, सगले साज करत जगदीसै, ठगन हार अनठग दा ठगै, बिन मखर फिर उठ लागै। संत सभा मिल करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक तां की परम गत होए। रामकली महला पंजवा, जो तिस पावै सो थिया, सदा सदा हर की शरण आई, प्रभिन नाही आन बिया। रहाओ पुत्र कलत्र लक्ष्मी दिसै, इनमें किछु ना संग लिया, बिखैठ गौरी खाए भुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगुता, गर्भ जोन में किरत पया, पुरभ कमाने छोड़ै नाही, जम दूत करा स्यो महा पया। बोले झूठ कमावे अवरा, त्रिसना बुझे बहुत हया, असाध रोग उपजया संत दुखन, देह बिनासी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन्हीं साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। रामकली महला पंजवा, ऐसा पूरा गुरदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई। रहाओ दर्शन पेखत होए निहाल, जाकी तूर काट जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्य सवारे सगले तन के, जाके मस्तक रखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतो धारण कृपा निधान, सदा सदा जाइए कुर्बान। निर्मल मंत दे जिस दान, तजै विकार बिनसे अभमान, एक तिहाइए साध कै संग, पाप बिनासे नाम कै रंग। गुर परमेसर सगल निवास, घट घट रव रया गुणतास, दर्श देहे तारो प्रभ्यास, नित नानक चितवै सच अरदास। राग राम कली महला पंजवा, घर दूजा दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाइए, आवा गौण मिटै मेरे मीत। रहाओ गुण गावत होवत प्रगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत मैं होए उधार, नानक पाव जल उतरस पार। राम कली महला पंजवा, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जब सदा सुहेले, सगल बिना से रोग कूरा। रहाओ एक अरादो साचा सोए, जाकी शरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन सह सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई, गुरपूरै सब चिंत मिटाई, आठ पहर प्रभ का जप जाप, नानक राखा होवा आप। राग राम कली महला पंजवा, पड़ताल करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। नर नर है नमस्कारं, जलन थलन बस गगन।

जे को सत करे सो छीजै तब कर तप न होई, जे को नौ ले बदनामी कल के लखन एई, जिस सिकदारी तिसे खुवारी चाकर के हे डरना, जा सिकदार पवे जंजीरी ता चाकर हथो मरना, आख गुणा कलियाई है तेह जो केरा रहा तो पावस, जे गुण देह ता पाई है रहाओ, कल कल वाली सरा निबेड़ी काजी कृष्णा होवा, बाणी ब्रह्मा बेदा थरबन करनी कीर्त लहया, पातविण पूजा सतविण संजम जतविण काहे जनेऊ, नावो तोहवो तिलक चढ़ावो सोचविण सोच ना होई, कल प्रमाण कतेब कुरान पोथी पंडित रहे पुराण, नानक नाओ पया रहमान कर करता तू एको जान, नानक नाम मिले वड्याई एदू उपर कर्म नहीं, जेकर होंदै मंगन जाइए फिर ओ लामा मिले तही, राम कली महला पहला जग पर बोधै मड़ी बधावै, आसन त्याग कहे सच पावै, ममता मोह कामन हितकारी ना उदूती ना संसारी, जोगी बैस रहो दुबदा दुख भागै, कर कर मांगत लाज ना आगै रहाओ, गावै गीत ना चीनै आप क्यों लागी निवरै प्रताप, गुर कै शब्द रचै मन पाए भिख्या सहज विचारी खाए, भस्म चढ़ाए करै पाखंड माया मोहे सहजम दंड, फूटै खापर पीख ना पाए बंधन बांध्या आवै जाए, बिंदना राखै जती कहावै माई मांग तो त्रै लोबावै, निर्दया नहीं जो तो जाला बूढ़त बूढ़े सर्ब जंजाला, पेख करै खिंथा बहु थटुआ झूठो खेल खेलै बहु नटुआ, अंतर अगन चिंता बहु जारे विणकर्मा कैसे उतर सपारे, मुंद्रा फटक बनाई कान मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जेहवा इंद्री साध लोबाना पशु पय नहीं मिटै निशाना, तिरबद लोगा तिरबद जोगा शब्द विचारै चूक सोगा, उज्जल साच सो शब्द होए जोगी जुगत विचारे सोए, तुझ पह नौ निद तू करना जोग थापो थापे करे सोहोग, जत सत संजम सच सोचीत नानक जोगी तिर पवन मीत, राम कली महला पहला खट मट देही मन बैरागी, सुरत शब्द तोने अंतर जागी, वाजे अनहद मेरा मन लीना गुरबचनी सचनाम पतीना, प्राणी राम पग सुख पाई है गुरमुख हर हर मीठा लागे, हर हर नाम समाई है रहाओ, माया मोह विवर्ज समाए सदगुर पेटै मिल मिलाए, नाम रतन निर्मोल कही रा तितराता मेरा मन तीरा, हम मैं ममता रोग न लागे राम पग जम का पौ भागे, जम जम दार न लागे मोहे निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार पय निरंकारी गुरमत जागे दुरमत परहारी, अंदर जाग रहे लिव लाई जीवन मुक्त गति अंतर पाई, अलिप्त गुफा में रहे निरारे तस्कर पंचो सब संगारे, पर कर जाए न मन डोलाए सहज निरंतर रहो समाए, गुरमुख जाग रहे अवधूता सतवै रोगी तत् परोता, जग सूता मरिया वह जाए बिन गुर शब्द ना सोजी पाए, अनहद शब्द वजै दिन राती अवगत की गत गुरमुख जाती, तौ जानी जा शब्द पछानी एको रव रहा निर्वानी, सुन समाज सुन समाद सहज मन राता तजहो लोबा एको जाता, गुर चेले अपना मन मानिया नानक दूजा मेट समानिया, राम कली महला पहला, साहा गणे ना करे बीचार साहे उपर एकंकार, जिस गुर मिले सोई बिद जाने गुरमत होए ता हुक्म पछाणे, झूठ ना बोल पांडे सच कहिए हम मैं जाए शब्द कर लही है रहाओ,
गण गण जोत कुकंडी कीनी, पढ़ै सुनावै तत न चीनी, सब सह उपर गुर शब्द विचार, होर कथनी बदौ न सगली शार, नावै तोवै पूजै सैला, बिन हर रातो मैलो मैला, गर्भ निवार मिलै प्रभ सार्थ, मुक्त प्राण जप हर किरतार्थ, वाचै वादना वेद विचार है, अब डुबै क्यों पितरा तारै, घट घट ब्रह्म चीनै जन को, ए सतगुर मिलै ता सो जी होए, गणत गणीयै सहसा दुख जीयै, गुर की शरण पवै सुखती है, कार्य अपराध शरण हम आया, गुर हर बेटे पुरब कमाया, गुर शरण ना आईयै ब्रह्म ना पाईयै, परम भुलाईयै जन मरियाईयै, जम दरबा दो मरै बेकार, नारदै नाम ना शब्दाचार, एक पांदे पंडित मिस्र कहावै, दुबदा राते महल ना पावै, जिस गुर प्रसादी नाम आधार, कोट मदे को जन अपार, एक बुरा भला सच एक बूझ ज्ञानी सतगुर की टेक, गुरमुख विरली एको जानिया, आवन जाना मेट समाणिया, जिनकै हृदय एक अंकार, सर्वगुणी साचा विचार, गुर कै पाणे कर्म कमावै, नानक साचे साच समावै। आराम कली महला पहला, हठ निग्रह कर काया छीजै, वर्द तपन कर मन नहीं पीजै, राम नाम सर अवरना पूजै, गुर सेव मना हर जन संग कीजै, जम जनदार जोहे नहीं सकै, सरपन डस ना सकै, हर कारस पीजै, रहाओ वाद पड़ै रागी जग पीजै, त्रैगुण बिखिया जन्म मरीजै, राम नाम बिन दुख सहीजै, चारस पवन सिंहासन पीजै, न्योली कर्म खट कर्म करीजै, राम नाम बिन बिरथा सास लीजै, अंतर पंच अगन क्यों तीर जतीजै, अंतर चोर क्यों साध रही जै, गुरमुख होए काया गढ़ लीजै, अंतर मैल तीर्थ परमीजै, मन नहीं सूचा क्या सोच करीजै, किरत पया दोष का कौ दीजै, आना खाहे देही दुख दीजै, बिन गुर ज्ञान तृप्त नहीं थीजै, मनमुख जन्म जन्म मरीजै, सदगुर पूछ संगत जन की।

खंडी हुक्म बुझे सो योगी कहिए एक स्यों चित लाए सहसा टूटे निर्मल होवे जोग जुगत इव पाए नदरी आमदा सब किश बिनसै हर से तीच तलाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागे ता एह सो जी पाए एहो जोग ना होवे जोगी जे कुटंब छोड़ पर पवन करै ग्रह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेख करै जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवे सोई बूझे जो जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नजर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेख है विचों परम चुकाए विण वजाई किंगरी वाजै जोगी सा किंगरी वजाए कह नानक मुक्त होवै जोगी साचे रह समाए राम कली महला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संतो गुरमुख दे वड़ियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजै काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई जिसते उपजै तिसते बिनसै अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर न देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवै कट अंतर सच्चे स्यों लिव लाई सत्संगत में नाम निर्मोलक वड्डे पाग पाया जाई परम ना चुकाओ सतगुर सेवाओ मन रखो इकठाई बिन नामे सब पूली फिरदी बिरथा जन्म गवाई जोगी जुत गवाई हंडै पाखंड जोग ना पाई शिव नगरी में आसन बैसै गुर शब्दी जोग पाई तातर बाजी शब्द निवारे नाम वसै मन आई एहो शरीर सरवर है संतो इशनान करे लिव लाई नाम इशनान करै से जन निर्मल शब्दे मैल गवाई त्रै गुण अचेत नाम चेतै नाही बिन नामै बिन सजाई ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूर्त त्रै गुण परम पुलाई गुर प्रसादी त्रिगुटी छूटै चौथे पद लिवलाई पंडित पढ़ै पढ़वाद वखाणै तिन्ना बूझ ना पाई बिखिया माते परम पुलाए उपदेश कहै किस पाई भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई

मनसा मार मन सह समाणा बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मिलाई, हाँ गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक है बेनंती नाम गत पत पाई, राम कली महला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाई। संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ, हर बिन सब किश मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई। हर साचे पावे सा पूजा होवे पाणा मन वसाई, पूजा करे सब लोग संतो मन मुक्थाए ना पाई। शब्द मरे मन निर्मल संतो एह पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिव लाई, बिन नामे होर पूज ना होवी परम भुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिव लाई, आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करे पर विद नहीं जाने दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाई। पहाने ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सखाई, अपना आपना पछाणे संतो कूड़ करे वड़ियाई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े लै जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत मित तिन ही पाई। एहो मनुआ सुन समाद लगावे ज्योति ज्योत मिलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे सतसंगत मिलाई। गुरमुख गावे आप गवावे दर साचे शोभा पाई, साची बाणी सच वखाणे सच नाम लिवलाई। पह भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सिखाई, सब किछ आपे आप वरतै नानक नाम वड़ियाई। राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी, मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी। सच्चा नाम वस्या कट अंतर करता आप सवारी रहाओ, पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी। एक भेख करे फिर अभिमानी तिन जुए बाजी हारी, एक आंदन भगत करे दिन राती राम नाम उर तारी। आंदन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी, पै बिन भगत ना होई कभी पै पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत् बिचारी, आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी। तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द विचारी। हर जियो जपी हर जियो सा लाही विचों आप निवारी, नाम पदार्थ गुरते पाया खुट सचे पंडारी। अपने भगतां नूं आपे तुठा अपनी किरपा कर कल तारी। तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी। जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिखम विचारी, शब्द लगे से जन निस्तरे पौजल पार उतारी। बिन हर साचे को पार ना पावे बूझे को विचारी, जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी। काया कंचन शब्दे राती साचे नाए प्यारी, काया अमृत रही पर पूरे पाइये शब्द विचारी। जो प्रभ खोजे से ही पावे होर फूट मोए हंकारी, बादी बिन सह सेवक सेवै गुर कै हित प्यारी। सो जोगी तत् ज्ञान विचारे हम मैं तृष्णा मारी, सतगुर दा

काहू बिहावै सेवा जरूरत, काहू बिहावै सोधत जीवत, संत बिहावै हर रस पीवत, जित को लाया तित ही लगाना, ना को मूड नहीं को स्याना, कर कृपा जिस देवै नाओ, नानक तां कै बल बल जाओ। राम कली महला पंजवा, दावा अग्न रहे हर बूट, मात गर्भ संकट ते छूट, जा का नाम सिमरत पौ जाए, तैसे संत जना राखे हर राए, ऐसे राखन हार दयाल, जत का देखो तुम प्रतपाल रहाओ। जल पीवत ज्यो तिखा मिटंत, तन बिकसै गृह आवत कंत, लोभी का तन प्राण आधार, त्यों हर जन हर हर नाम प्यार, किरसानी ज्यो राखै रखवाला, मात पिता दया ज्यो बाला, प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, त्यों हर जन राखै कंठ लाए, ज्यो अंदले पे

राम कली महला पंजवा जी जंत सब पेखिए प्रभ सगल तुम्हारी धारणा एहो मन हर के।

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवे सुखे सुख गुदारना। भगत शरण जो आवे प्राणी तिस इहा उहा ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्ये वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको ओंकार सतगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुखलाई। पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई। कारण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरणाई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई। नाम रसायन एहो मन राता अमृत पी तृपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन आन ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सुच है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महाबिखिया मैं गुरसाच लाए तराई। अपने जीतें आप संभाले आप लिए लड़ लाई। साई धर्म का बेड़ा बांधया पवजल पार पवाई। बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। अकाल मूर्त अजूनी संपो काले अंधकार दीपाई। अंतर जामी जियन का दाता देख तृप्त त्यागाई। एक अंकार निरंजन निरपो सब जल थल रया समाई। भगत दान भगता को दीना हर नानक जाचै माई। राम कली महला तीजा राम कली महला पंजवा सलोक। सिखो शब्द प्यारे ओ जन्म मरण की टेक। मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। मंत्रण राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बन आई संतो। सतगुर खेप निबाही संतो हर नाम लहा दास कौ दिया सगली तृष्ण उलाही संतो। रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत कहन ना जाई संतो। चरण कमल स्यों लागो ध्याना साचे दर्श समाई संतो। गुण गावत गावत पय निहाला हर सिमरत तृप्त आगाई संतो। आत्म राम रविया सब अंतर कत आवै कत जाई संतो। आद जुगादी हैपी होसी सब जिया का सुखदाई संतो। आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रया सब ठाई संतो। मीत साजन माल जो बन सोत हर नानक बाप मेरी माई संतो। राम कली महला पंजवा मान बच कर्म राम नाम चितारी। कुमन केर महात बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी। रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन पए दुष्टारी। जिसते लागे इतने निवारे प्रभ जीव अपनी कृपा तारी। उधरे संत परे हर सरणी पच बिन से महा अहंकारी। साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम आधारी। ना कोई सूर ना कोई हीणा सब प्रगति जो तुम्हारी। तुम समराथ्या काथा गोचर रव्या एक मुरारी। कीमत कौन

दुख सब विसारना, अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही कर।

राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वछलते होलोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोए जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमरिया टालिया तोल ठाकर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रपाह जियो सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज रखो हर जना केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चलदिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबाह जियो मेरे सिख सुनो पुत पाई हो मेरा हर पाणा आओ मैं पास जियो हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मेलावे तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखो कर निर्जाह जियो तुर लिखिया प्रवाणा फिरै नाही गुर जाए हर प्रपाह जियो सतगुर पाणे अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिकसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पैनावे सतगुरु प्रतख होंदै बहराज आप टिकाया सब सिख बंदप पुत पाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंड सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आण निवाया हर गुरह पाणा दी वड्याई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कहे सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो रामकली महला पंजवां शंत एको अंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोए अड़ा मेरा साजनड़ा जानी अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोए अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोया कटकट सोया अत अमृत प्रे गूड़ा नाल होवंदा लहना सकंदा स्वाव न जाने मूड़ा माया मदमाता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा कहो नानक गुरबिन नहीं सूजै हर साजन सब कै निकट खड़ा गोबिंदा मेरे गोबिंदा प्राण आधारा मेरे गोबिंदा कृपाला मेरे कृपाला दान दा तारा मेरे कृपाला दान दा तारा प्रापारा कट कट अंतर सोहनिया एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोहनिया जिसनो राखै सो सच पाखै गुर का शब्द बिचारा कहो

महागर्भ मुठिया जलबाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया। कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानके ओट तेरी राख पूर्ण काम जियो। सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सह सुभाए। कर गै लीनी सजने जन्म जन्म के मीत चरने दासी कर लई नानक प्रभित चीत। शंत रुत बरस सुहेलिया सावन पादवे आनंद जियो कण उन्म बुठे जल थल पूरिया मकरंद जियो। प्रभ पूर रहया सर्ब ठाई हर नाम नवनित गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे। प्रेरंग जागे ने शिदर लागे किरपाल सद बख्शेंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो। सलोक आस प्यासी मैं फिराऊं कब पेखां गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मिलनहार। बिन मिल बे सांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। शंत रुत सरद अडंबरो असू कतके हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणताह जियो। बिनकंत प्यारे ने सूख सारे हार कंगण त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना। ईत ओत दह दिस्या लोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिलो प्रभ गुणताह जियो। सलोक जलन बुझी शीतल पए मन तन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले दुतिया बिनसी प्रांत। साध पठाए आप हार हम तुम ते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर। शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जियो जलन बुझी दर्श पाया बिनसे माया त्रोह जियो। सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर सिंगार सब रस गुण गाओ लाखा पेवया। पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बिश हो जियो। सलोक हर तन पाया सोहागणी डोलत नाही चीत संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत। नाद बिनोद आनंद कोड प्रे प्रीतम संग बने मन बाइथ फल पाया हर नानक नाम पने।

चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए, चेता एक तही सोए चित वसै राचे हर नाए, मुक्त भया पत स्यो कर जाए। छीजै देह खुले एक गंड, छे अन देखो जगहंड, धूप छाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने। छाया छूछी जगत पुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना, छीजै जोबन जरुआ सिरकाल, काया छीजै पई सिवाल। जापै आप प्रभु तेह लोए, जुग जुग दाता अवर न कोए। ज्यो पावै त्यों राखै राख, जस जाचौ देवै पत साख। जागत जागरा हां तुद पावा, जा तू मेलै तां तुजै समावा। जय जय कार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीसा कीस। चख बोलन क्या जग स्यो वाद, चूर मरै देखै प्रमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पहे आस निरासा। चोर चोर चख माटी रल जाए, काल न चांपै हर गुण गाए। पाई नवनिध हर कै नाए, आपे देवै सहे सुभाए। ज्ञानो बोलै आपे बूझै, आपे समझै आपे सूझै। गुर का कहया अंक समावै, निर्मल सूचे साचो पावै। गुर सागर रतनी नहीं तोट, लाल पदार्थ साचा खोट। गुर कहया साकार कमावो, गुर की करनी काहे तावो। नानक गुरमत साच समावो। टूटै ने हो के बोलै सही, टूटै बांध हूं दिस गही। टूट प्रीत गई बरबोल, दुरमत पर हर छाडी टोल। टूटै गंठ पड़ै विचार, गुर सबदी कर कार्ज सार। लाहा साच ना आवै तोटा, त्रिपवन ठाकर प्रीत मोटा। ठाको मनुआ रखो ठाए, ठहक मुई अवगन पछताए। ठाकर एक सबाई नार, बहुते वेस करे कूड़ियार। पार कर जाती ठाक रहाई, महल बुलाई ठाक ना पाई। शब्द सवारी साच प्यारी, साई सुहागण ठाकर तारी। डोलत डोलत हे सखी, फाटे चीर सिंगार। डाहपन तन सुख नहीं, बिन डर बिंठी डार। डरप मुई कर अपने, डीठी कंत सुजान। डर राख्या गुरे अपने, निरपो नाम वखान। डूंगर वास तिखा कणी, जब देखा नहीं दूर। तिखा निवारी शब्द मन, अमृत पिया भरपूर। देह देह आखे सब कोई, जय पावै तें दे। गुरु द्वारे देवसी, तिखा निवारे सोए। टंडोल टंडोलत टूंडत हां फिरी, टह टह पमन करार। पारे टहते टह पै, हौले निकसे पार। अमरा जाची हर मिले, तिनके हों बल जाओ। तिनकी तूड़िया कुलिया, संगत मेल मिलाओ। मन दिया गुरे अपने, पाया निर्मल नाओ। जिन नाम दिया तिस सेवसा, तिस बलिहार जाओ। जो उसारे सो ढासी, तिस बिन अवर ना कोए। गुर प्रसादी तिस समला, तां तन दुख ना होए। हणा को मेरा

कित बिद पुरखा जन्म वटाया, काहे कहो तुझ एहो मन लाया। कित बिद आसा मनसा खाई, कित बिद जोत निरंतर पाई, बिन दंता क्यों खाइए सार, नानक साचा करो विचार। सतगुर कै जन्मे गमन मिटाया, अनहर अनहत राते हो मन लाया, मनसा आसा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। त्रै गुण मेटे खाइए सार, नानक तारे तारनहार, आदि को कवन विचार कथिए ले, सुन कहां कर वासो। ज्ञान की मुद्रा कवन कथिए ले, कट कट कवन निवासो। काल का ठींगा क्यों जलाई अले, क्यों निरपो कर जाई है, सह संतो का आसन जाने, क्यों शेदे बैराई है। गुर कै शब्द हमें बिख मारे, तानिज कर हो वै वासो। जिन रच रचिया ते शब्द पछाणे, नानक ता का दासो। कहां ते आवे कहां इहो जावे, कहां इहो रह समाई, ए शब्द को जो अर्थ आवे, तिस गुर तिल ना तुमाई। क्यों तत्ते अवगत पावे, गुरमुख लगे प्यारो, आपे सुरता आपे करता, कहो नानक बिचारो। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, हुक्मे रह समाई, पूरे गुरते साच कमावे, गत में तो शब्दे पाई। आद कौ बिस्माद विचार कथिया ले, सुन निरंतर वास लिया। अकलपत मुंद्रा गुर ज्ञान विचारिया ले, कट कट साचा सर्व जिया। गुर बचनी अवगत समाई है, तत् निरंजन सहज लह, नानक दूजी कार न करनी, सेवै सिखसो खोज लह। हुक्म बिस्माद हुक्म पछाण, जी जुगत सच जाने सोई। आप मेट निराल महोवे, अंतर साच जोगी कहिए सोई। अवगतो निर्मायल उपजे, निर्गुण ते सरगुण थिया, सतगुर परचय परम पद पाइए, साचे शब्द समाए लिया। एक कहो सच एका जाने, हम मैं दूजा दूर किया, सो जोगी गुर शब्द पछाण, अंतर कमल प्रगास थिया। जीवत मरे ता सबके सूजे, अंतर जाने सर्वदया, नानक ता को मिले वडाई, आप पछाण सर्व जिया। साचो उपजे

तंदा तावत दिन गया रैन गवाई सोए कूड़ बोल बिख खाया मन मुख चलिया रोए सिरै उपर जमडंड है दूजे पाए पत खोए हर नाम कदे ना चेत्यो फिर आवन जाना होए गुरप्रसादी हर मन मसै जमडंड ना लागे कोए नानक से जे मिल रहे कर्म प्राप्त होए पौड़ी एक अपनी सिफती लाया नो दे सतगुर मती एक नानो नाओ बख्शियो नो अस्त्र हर सती पौन पानी बै संतरो हुक्म कर है भगती ए नानो पव अगला पूरी बनत बनती सब एको हुक्म वरतदा मन्या सुख पाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक कबीर कसौटी राम की झूठा टकै ना कोए राम कसौटी सो सह जो मर्जी वा होए महला तीजा क्यों कर एहो मन मारी है क्यों कर मृतक होए कहया शब्द ना मान नहीं हम मैं छड़े ना कोए गुरप्रसादी हम मैं छुट्टे जीवन मुक्त सो होए नानक जिसनो बक्से तिस मिले तिस बिघन ना लागे कोए महला तीजा जीवत मरना सब को कह जीवन मुक्त क्यों होए पै का संजम जे करे दारू पाओ लाए आन दिन गुण गावे सुख सहजे बिख पव जल नाम तरे नानक गुरमुख पाई है जा को नदर करे पौड़ी दूजा पाओ रचाए उन त्रै गुण वरतारा ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय अन हुक्म कमावन कारा पंडित पढ़ दे जोत की ना बूझे बिचारा सब किस तेरा खेल है सच सृजनहारा जिस पावै तिस बख्श लहै सच शब्द समाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा मन का झूठा झूठ कमावै माया नो फिरै तपा सदावै परमे पूला सब तीर्थ गहै ओह तपा कैसे परम गत लहै गुरप्रसादी को सच कमावै नानक सो तपा मोख अंतर पावै महला तीजा सो तपा जे हो तप काले सतगुर नो मिले शब्द समाले सतगुर की सेवा एहो तप परवान नानक सो तपा दरगह पावै मान पौड़ी रात दिन स उपायन संसार की वर्तन गुरमति कट चानना अनेर बिनासन हुक्मे ही सब साजियन रविया सब वाण त्रिण सब किश आपे आप है गुरमुख सदा हर पाण सब दे ही सोजी पई सच्चे आप बुझाई।

अभ्यागत है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उदर कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

रैन आयर मह सब किश है, करमी पल्ले पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चले तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म बिनास, रसना हरस ना चखियो, कमला होयो परगास। बिख खादी मन मुख मुआ, माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम विण, त्रिग जीवन त्रिगवास। जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा, ता होवै दासन दास। ताय अंदन सेवा करे सतगुरु की, कबै न छोड़ै पास। ज्यों जल मैं कमल अलिप तो वरतै, त्यों विचे ग्रह उदास। जन नानक करे कराया सबको, ज्यों पावै तिव हर गुणतास। पौड़ी छत्ती जोग वारसा, आपे गणत कीनी, आपे सिरट सब साजिया नो, आप मत दीनी। सिमरत शास्त्र साजियान, पापुन गणत गणिनी, जिस बुझाए सो बुझसी, सच्चे शब्द पतिनी। सब आपे आप वरतदा, आपे बख्स मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, एहो तन सबो रत है, रत बिन तन ना होए, जो सहरत अपने, तिन तन लोभ रत ना होए। पै पै तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए, ज्यों बै संतर तात सुध होए। त्यों हर का पौ दुरमत मैल गवाए, नानक तेजन सोहणे, जो रते हर रंग लाए। महला तीजा, आराम कली राम मन वसिया, ता बनिया सिंगार, गुर कै शब्द कमल बिकसिया, ता सौंपिया भगत भंडार। परम गया ता जागया, चूका अग्ञान आधार, तिसनो रूपया त्यगला, जिस हर नाल प्यार। सदा रवै पिर अपना, सोभावंती नार। मन मुख सिंगार न जाननी, जासन जन्म सभार। बिन हर भगती सिंगार करै, नित जमै होए खुआर। संसार विच सोभ ना पाईनी, अगै जे करे सो जाने करतार। नानक सच्चा एक है, दोह विच है संसार, चंगै मंदै आप लायन, सो करन जे आप कराए करतार। महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सांत ना आवई, दूजी नाही जाए। जे बहु तेरा लोची है, बिन कर्मा पाया ना जाए। अंतर लोभ विकार है, दूजे पाए खुवाए, तन जम्मण मरण न चुकई, हमै विच दुख पाए। जिन्नी सतगुर स्यों चितलाया, सो खाली कोई ना है, तन जम की तलब ना हो वई, ना होए दुख सहाए। नानक गुरमुखी उबरे, सच्चे शब्द समाहे। पौड़ी आप अलिप्त सदा रह, होर तंदै सब तावै, आप निह चलिया चल है, होर आवै जावै। सदा सदा हर त्याई, गुरमुख सुख पावै, निज कर वासा पाई, सच सिफत समावै। सच्चा गहर गंभीर है, गुर शब्द बुझाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक

नाम जपे नामो वारा दे तिस जन कौ करो सब नमस्कार। मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम होआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुद जेवड़ दाता ना है किस आख सुनाई है। गुर प्रसादी पाए जिथों हम मैं जाई है। रस कस साधा बाहरा सच्ची वड़ियाई है। जिसनों बख्शे तिस दे आप लै मिलाई है। घट अंतर अमृत रखियोन गुरमुख सह प्याई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा बाबाणिया कहानिया पुत सपुत करेन। जे सतगुर पावै सो मन लैन सेई कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद। बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच सामालेन। नानके आए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिन्ना का अंदला सिख भी अंधे कर्म करेन। ओए पाणे चलन अपने नित झूठो झूठ बोलेन। कूड़ कुसत कमाव दे पर निंदा सदा करेन। ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डोबेन। नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिहट सब कीती। एक कूड़ को सत लायन मनमुख वे गुती। गुरमुख सदा तिहाई है अंदर हर प्रीति। जिनको पोतै पुन है तिन वात स्पीति। नानक नाम तिहाई है सच सिफत सुनाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाहे। गुर दीख्या कर देवन जाहे। स्त्री पुरखे खटे पाओ पावे आवो पावे जाओ। शास्त्र वेदना माने कोए आपो आपे पूजा होए। काजी होए कै बह न्याए फेरे तस्बी करे खुदाए। वड्डी लैके हक गवाए जे को पुछे ता पढ़ सुनाए। तुरक मंत्र कन हृदय समाहे लोक मुहावे चाड़ी खाहे।

है। पुन दान का करे शरीर, सो गृही गंगा का नीर। बोले ईश्वर सत स्वरूप, परम तंत में रेख न रूप। महला पहला, सो अवदूती जो तू पै आप। पिखिया पोजन करे संताप, औहठ पटन में पिखिया करे। सो अवदूती शिवपुर चढ़ बोले गोरख सत स्वरूप, परम तंत में रेख न रूप। महला पहला, सो उदासी जे पाले उदास। अर्ध उर्ध करे निरंजन वास, चंद सूरज की

थम अहन से अंतर रहते आन ते बैरागी सत समान बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप महला पहला क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रह आओ धूप छाप जे सम

निरंकार जो रहे समाए, काहे पीखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देहे गुर बचनी पाया, सब आत्म राम पछाता। बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता, मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई, वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवे सो सुने, मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लखण है, क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओहो जे मुग्द है अहंकारे मरना, एतक माने सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवे खूहे क्यों संयम करना, गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै

जप तप सब किश मन्ने अवर कारा सब बाद नानक मन्या मनिया बुझिए गुर प्रसाद पौड़ी काया हंस तुर मेल करतै लिख पाया सब मैं गुप्त वरतदा गुरमुख प्रगटाया गुण गावै गुण उच्चरै गुण महे समाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया सब किश आप

रामकली की वार महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवा जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवा एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपुरै देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साद जन नानक है प्रभुजिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत पर प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवा सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हाँ तिस सेवी हाँ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन जिन सद ही वरतै नाल। महला पंजवा मेरा अंतर लोचा मिलन की क्यों पावा प्रभ तो है कोई ऐसा सज्जन लोड लहो जो मिले प्रीतम मोहे। गुरपुरै मिलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए। पौड़ी देवन हार दा तार कित मुख सालाही है जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है। कोय न किस ही वस सब ना एक तार पाले बालक वांग देके आप कर करदा अनंद बिनोद किशु ना जानी है। सर्वतार समरथ हाँ तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस पोगया। सलोक महला पंजवा भीड़ो मोकलाई की तियान सब रखे कुटुंबै नाल कार्ज आप सवारयान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नजर निहाल। महला पंजवा विण तुद होर जे मंगना।

जन नानक पाया अगम रूप अंत ना काहूं जाए महला पंजवा तन सो वेला कड़ी तन तन मूरत पल सार तन सो दिन सो संजोगड़ा जित ठा गुरदरसार मन किया इच्छा पूरियां हर पाया अगमा पार हमें टुटा मोहड़ा एक सच नाम आधार जन नानक लगा सेवहार उदरिया सगल संसार पौड़ी सिफत सलाहन भगत विरले दितियां न सौपे जिस भंडार फिर पुछना लीतिया न जिसनो लगा रंग सो रंग रत्या ओना एको नाम आधार इका उन पत्या ओना पिछे जग पुंचे पो गई ओना प्यारा रब ओना हा जो गई जिस मिलिया गुरे आए तिन प्रभ जानिया हम बलिहारी तेन जे खसमै पाणिया सलोक महला पंजवा हर एक सह नाल मैं दोस्ती हर एक सह नाल मैं रंग हर एक को मेरा सज्जनो हर एक सह नाल मैं संग हर एक सह नाल मैं गोष्टे मुह मैला करे ना भंग जाने बिरथा जी की कदे ना मुड़े रंग हर एको मेरा मसलती पन्नन कन्न समरथ हर एको मेरा दातार है सिर दातिया जग हथ हर एक सह दी मैं टेक है जो सिर सबना समरथ सतगुर संत मिलाया मस्तक तर कै हथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरियां पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही भोगे भोग महला पंजवां।

व्यापया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी विच दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सुनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई जिसनो तेरी नदर हो मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरपौ सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सोथियई जिसनो तेरी मया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुरते मत लई श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा

माधाना पर्वत कर नेत्र बासर माधाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द रिड़क्योन चौदह रतन निकालियोन कर आवा गौण चिलक्योन कुदरत है वे खालियान जिन एवड पिंड ठिनक्योन लहने तरयोन छत्र सिर असमान के आड़ा शिक्योन ज्योत समाणी ज्योत माहे आप पैसे ती मिक्योन सिखा पुत्रां कोख कै सब उम्मत वेखो जेक्योन जांस दोस्तां लहना टिक्योन फेर वसाया फेर आन सतगुर खाडूर जप तप संजम नाल तुद होर मुच गुरूर लब विना है मानसा ज्यो पानी बूर वरे अदर गए गुरु की कुदरती नूर जित सुहाथ ना लबई तू ओ ठरूर नौ निध नाम निधान है तुद विच भरपूर निंदा तेरी जो करे सो मन्ये चूर नेड़े दिसे मात लोक तो सुजे दूर फेर वसाया फेर आन सतगुर खा डूर सो टिका सो बहना सोई दीवान पिउ दादे जिवेहा पोता प्रमाण जिन बासक नेत्रै कतिया कर नेही तान जिन समुंद विरोलिया कर मेर मदान

आठ तीर्थ गुरु दिखाए कठी पितर नाओगो, पंच सहाई जन की शोभा, पलो पलो ना कहावोगो, नामा कह चित हर स्यों राता, सुन समाध समाओगो। माए ना होती बाप ना होता, कर्म ना होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कमन कहां ते आया।

पानी पवन मिलाया, शास्त्र ना होता वेद ना होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया, नामा प्रणवै परम तत् है, सतगुरु होए लिखाया। आराम कली कर दूजा, बनारसी तप करै, उल्ट तीर्थ मरै, अगन दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय, सोना गर्भदान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी, मन कपट ना की जय। हर का नाम नित नित ली जय रहाओ। गंगा जौ गोदावर जाइय, कुंभ जौ केदार नाइय, गोमती सहस गौ दान की जय। कोट जौ तीर्थ करै, तन जौ हिवाले गारै, राम नाम सर तऊ न पूजै। अस दान गज दान, सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ।

निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै, जथ रथ राय नंद, राजा मेरा रामचंद, प्रणव नामा तत रस अमृत पीजै, राम कली बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्शै,

काम क्रोध माया मद मत्सर इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुनी सूर हम दाते एह बुद्ध कबै ना नासी। कहो रविदास समय सबै नहीं समझस भूल परे जैसे बौरे मोहे आधार नाम नारायण जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की एको अंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगला और सुख मना तीन बसाए कठाई बेणी संगम तह पिराग मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहा निरंजन राम है गुरगम चीने बिरला कोए तहा निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थान क्या निशानी तह बाजे शब्दा नाहद बाणी तह चांदना सूरज पौन ना पानी साखी जागी गुरमुख जानी। उपजै ज्ञान दुरमत शीजै अमृत रस गगन अंतर पीजै एस कला जो जाने पे ओ पेटै तास परम गुरदेओ। दसम द्वारा अगमया पारा परम पुरख की घाटी ऊपर हाट हाट पर आला आले पीतर थाती। जागत रहे सो कवो ना सोवै तीन तलोक समाध पलोवै बीज मंत्र लै हृदय रहे मनुआ उल्ट सुन महंग है। जागत रहे ना अलिया पख है पांचो इंद्री बस कर रख है। गुर की साखी राखे चीत मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत कर पल्लव साखा बिचारे अपना जन्म ना जुए हारे। असर नदी का बंदे मूल पच्छम फेर चढ़ावे सूर अजर जरै सो निजर चरै जगंग नास्यो गोष्ट करै चौ मुख दीवा जो द्वार पलू अंत मूल बिचकार। सर्व कलाले आपे रहै मन मान करत नामे गुहै मस्तक पद्म द्वाले मणि माहे निरंजन त्रिपवन धनी। पंचे शब्द निर्मायल बाजे टुलके चवर संख कान गाजे। दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान बेणी जाचे तेरा नाम। राग नट नारायण।

अवगन आरे पाथर भारे हर तारे संग जनखे जिनको तुम्हार राखो स्वामी सब तिनके पाप क्रेखे जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी तुम दुष्ट तारे हरणखे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो जन पग लगे रहाओ जन्म जन्म के भूल चूक हम अब आए प्रभ शरण गे तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी हम राखो वड पाप गे तुमरी संगत हर को ना उधरे ओ प्रभ किए पतत पवगे गुण गावत शिपा दुष्टारे ओ प्रभ राखी पैज जनगे जो तुमरे गुण गावे स्वामी हाँ बल बल बल तिनगे पवन पवन पवित्र सब किए जह तूर परी जन पगे तुमरे गुण प्रभ कह ना सके हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवै तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुर सुने किल बिख नाम किल बिख पाप नाम हर काटे जब खेत किरसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यो जल कुंचर तंदुए बंदो हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभ वडने नट महला चौथा मेरे मानो कल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रभ तारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम गोचर स्वामी सब त्यावै हर रुणने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने एहो पर पंच किया प्रभ स्वामी सब जग जीवन जुगने ज्यो सलल सरल उठे बो लहरी मिल सरल सरल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जाना हम न जाही हर गहने हम बारक कौर दुस्त धारो हम करे प्रभु सिमरणे तुम जल निधार मान सरोवर जो सेवै सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांछ हर देवो कर कृपणे नट नारायण महला चौथा पड़ताल एको अंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सेव सफल हर काल ले गुर पगरे नरवाल सब दाल दपाई दुख दाल हर हो नदर निहाल रहाओ हर का गृहो रैप सवार्यो हर रंग रंग महल बेअंत लाल लाल हर लाल हरे अपनी कृपा करी आप गृह आयो हम हर की गुर की है बसीठी हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल निहाल हरे आवते की खबर गुर पाई मन तनो आनंदो आनंद पहे हरे आवते सुने मेरे लाल हर लाल जन नानक हर हर मिले पहे गलतान हाल निहाल निहाल नट महला चौथा मन मेर संत संगत सुभवंती सुनै कथ कथा सुखवंती सब किलबिख पाप लहंती हर हो लिखत लिखंती रहाओ हर कीर्त कलयुग विच यूतम मत गुरमत कथा भजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हौ कुरबानंती हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सा पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन त्रिपते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई यान सुनावे हर की हर गाल तिसको हौ बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो
होम।

हर का मार्ग गुरसंत बतायो, गुर चाल दिखाई हर चाल, अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो, नेह कपट कमावो हर की हर काल, निहाल निहाल निहाल, ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए, जिन्ना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल, जन नानक कहो मत हर प्रभ दीनी, हर देख निकट है दूर, निहाल निहाल निहाल निहाल। राग नट नारायण महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम हो क्या जाना क्या भावै, मन प्यास बहुत दर्शावै, रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा, जिस उपर रुच आवै, कृपा करो जिस पुरख विधाते, सो सदा सदा तू त्यावै, कवन योग कवन ज्ञान ध्याना, कवन गुनी री जावै, सोई जन सोई निज भगता, जिस उपर रंग लावै, साई मत साई बुद्ध स्याणप, जित निमख ना प्रभ बिसरावै, संत संग लगे हो सुख पायो, हर गुण सद ही गावै, देखियो अचरज महामंगल रूप, किश अन नहीं दिष्टावै, कहो नानक मोरचा गुर लाहे, तैं गर्भ जोन कह आवै, नट नारायण।

बाता तब कुशल खेम सब थियो सा संग नानक परगासियो आना ही रेबियो नट महला पंजवा जा को पई तुम्हारी धीर जमकी त्रास मिटी सुख पाया निकसी हो मैं पीर रहाओ तप्त बुझानी अमृत बानी त्रिपते जो बारक खीर मात पिता साजन संत मेरा है संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर बिस्म पए नानक जस गावत ठाकर गुनी गहीर नट महला पंजवा अपना जन आपे आप उधारियो आठ पहरो जन कै संग बसियो मनते नहीं बिसारियो रहाओ बर्ण चेहन नाही किछ पेखियो दास का कुल ना बिचारियो कर कृपा नाम हर दियो सह सुभाए सुवारियो महाबिखम अगन का सागर तिस्ते पार उतारियो पेख पेख नानक बिकसानो पुनः पुनः बलिहारियो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहयो कोट पराध मिटै खिन भीतर ताका दुख ना रहयो रहाओ खोजत खोजत भयो बैरागी साधु संग लहयो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गहयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक अंध भयो नट महला पंजवा चरण कमल संग लागी डोरी सुख सागर कर परम गत मोरी रहाओ अंचला गहायो जन अपने को मन भी दो प्रेम की खोरी जस गावत भगत रस उपजियो माया की जाली तोरी पूर्ण पूर रहे कृपा निधो आना पेखो होरी नानक मेल लियो दास अपना प्रीतना कभू थोरी नट महला पंजवा मेरे मन जप जप हर नारायण कभू ना बिसरो मन मेरे ते आठ पहर गुण गायण रहाओ साधु तूर करो नित मजन सब किल विख पाप गवायण पूर्ण पूर्ण रहे कृपा निध घट घट दिष्ट समायण जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुल ना लायण दोए कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दासन दा दसायण नट महला पंजवा मेरा सर्वस नाम निधान कर कृपा साधु संग मिलियो सतगुर दीनो दान रहाओ सुखदाता दुख पंजन हारा गाओ कीर्तन पूर्ण ज्ञान काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने बिनस्यो मूड अभमान क्या गुण तेरे आख वखाना प्रभयंत्र जामी जान चरण कमल सरन सुख सागर नानक सद कुर्बान नट महला पंजवा हाँ वार वार जाऊं गुर गोपाल रहाओ मोहे निर्गुण तुम पूर्ण दाते दीना ना दयाल उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण तन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरा नानक दर्शन हाल नट पड़ताल महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद को है मेरो साजन मीत हर नाम सुनावे नीत बिनसै दुख विपरीत सब अर्पो मंतन जीत रहाओ कोई विरला अपन कीत संग चरण कमल मन सीत कर कृपा हर जस दीत हर पाज जन्म पदार्थ जीत कोट पतत होहे पुनीत नानक दास बल बल कीत नट अष्टपदिया महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद राम मेरे मंतन नाम आधारे खिन पल रह न सको बिन सेवा मैं गुरमत नाम सुमारे रहाओ हर हर हर हर हर मन त्यावो मैं हर हर नाम प्यारे दीन दयाल पहे प्रभ ठाकर गुर के शब्द सवारे मधसूदन जग जीवन माधो मेरे ठाकर अगम अपारे एक बिनो बेनती करो गुर आगै मैं साधु चरण पखारे सहस नेत्र नेत्र है प्रभ कहो प्रभ एको पुरख निरारे सहस मूर्त एको प्रभ ठाकर प्रभ एको गुरमत तारे गुरमत नाम दमोदर पाया
हर हर नाम उरतारे, हर हर कथा बनियत मीठी, ज्यों गूंगा गटक समारे। रसना साध चखे पाए दूजे, अत फीके लोभ बेकारे, जो गुरमुख साध चखे राम नामा, सब अनरस साध बिसारे। गुरमत राम नाम तन पाया, सुन कहत्या पाप निवारे। धर्म राय जम नेड़ ना आवे, मेरे ठाकुर के जन प्यारे। सास सास सास है जेते, मैं गुरमत नाम समारे। सास सास जाए ना मैं बिन, सो बिरथा सास बेकारे। किरपा किरपा कर दीन प्रभ सरणी, मोको हरजन मिल प्यारे। नानक दासन दास कहत है, हम दासन के पनिहारे। नट महला चौथा, राम हम पाथर निर्गुणियारे। किरपा किरपा कर गुरु मिलाए, हम पहन शब्द गुर तारे। रहाओ सतगुर नाम दृढ़ा यत मीठा, मैला गर्म लगारे। नामै सुरत वजी है दय दसो, हर मुस्की मुसक गंधारे। तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी, गुरनी के बचन समारे। गावत गावत हर गुण गाए, गुण गावत गुर निस्तारे। बबेक गुरु गुरु समदर्शी, तिस मिलिय संको तारे। सतगुर मिलिया परम पद पाया, हो सतगुर कै बलिहारे। पाखंड पाखंड कर कर भरमे, लोभ पाखंड जग बुरियारे। हलत पलत दुखदाई होवै, जमकाल खड़ा सिर मारे। उगवै दिन सियाल जल संभालै, बिख माया के बिस्थारे। आई रहन पया सुपनंतर, बिख सुपने पी दुख सारे। कलर खेत लै कूड़ जमाया, सब कूड़ै के खलवारे। साग तनार सब पुख पुखाने, दर ठांडे जम जंदारे। मनमुख कर्ज चढ़िया बिख पारी, उतरे शब्द विचारे। जितने कर्ज कर्ज के मंगिए, कर सेवक पग लगवारे। जगन्नाथ सब जंतर यो पाए, नक खीनी सब नथ हारे। नानक प्रभ खिंचै तिव चलिए, ज्यो भावै राम प्यारे। नट महला चौथा, राम हर अमृत सर नावारे। सतगुर ज्ञान मज्जन है नीको, मिल कर मल पाप उतारे। रहाओ संगत का गुण बहुत अधकाई, पढ़ सुवा गन को धारे। परसन परस पय कुबजा कहो, लै बैकुंठ सिधारे। अजामल प्रीत पुत्र प्रतकीनी, कर नारायण बोलारे। मेरे ठाकर कै मन पाए पावनी, जम कंकर मार बेदारे। मानुख कथै कथ लोक सुनावै, जो बोलै सो ना बिचारे। सत संगत मिलै ता दृढ़ता आवै, हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड है साबत, तब लग किछ ना सुमारे। जब कर मंदिर आग लगानी, कड कूप कड्डै पनिहारे। सागर स्योमन मेल ना करियो, जिन हर हर नाम बिसारे। साकत बचन बिशुवा, ज्यों डसी तज साकत परे परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई, लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने, मेरे ठाकर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए, हर हर हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद अमृत रस पाया, रस गावे रस विचारे। हर हर रूप रंग सब तेरे, मेरे लालन लाल गुलारे। जैसा रंग देह सो होवे, क्या नानक जंत विचारे। नट महला चौथा, राम गुर सरन प्रभु रखवारे। ज्यों कुंचर तंदुए पकड़ चलायो, करी ऊपर कड निस्तारे। रहाओ प्रभ के सेवक बहुत अत नीके, मन सरदा कर हर तारे। मेरे प्रभ सरदा भगत मन भावै, जन की पै सवारे। हर हर सेवक सेवा लागै, सब देखै ब्रह्म पसारे। एक पुरख एक नदरी आवै, सब एका नदर निहारे। हर प्रभ ठाकर रव्या सब ठाई, सब चेरी जगत सुमारे। आप दयाल दया दान देवै, विच पाथर कीरे कारे। अंतरवास बहुत मुस्काई, प्रम्पूला मिर्ग सिंघारे।
ਬਨ ਬਨ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡ ਫਿਰ ਥਾਕੀ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਰ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਭ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਪਸਰਿਆ, ਮਨ ਬੀਜਿਆ ਖਾਵਾਰੇ। ਜਿਉ ਜਨ ਚੰਦਰ ਹਾਂਸ ਦੁਖਿਆ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ, ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੁਕੀ ਜਾ ਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਜਨ ਅੰਤਰ ਰਿਦ ਲੋਚੈ, ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਕੇ ਸਾਸ ਨਿਹਾਰੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਭਗਤ ਦਰੜਾਏ, ਜਨ ਪੀਛੇ ਜਗ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕਰ, ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਵਾਰੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ।

नारी पुरख पुरख सब नारी सब एको पुरख मुरारे संत जना की रेन मन पाई मिल हर जन हर निस्तारे ग्राम ग्राम नगर सब फिरया हृदय अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुर गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करया सतगुर शब्द विचारे निज कर जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तौ गुण ईस वर्ण नहीं सको तुम मंदर हम निक कीरे नानक कृपा कर।

नट महला चौथा। मेरे मन भज ठाकर अगम अपारे, हम पापी बहु निर्गुण यारे, कर कृपा गुर निस्तारे रहाओ। साधु पुरख साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम तन पूंजी देवो, सब तिशना भूख निवारे। पचै पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन, एक इंद्री पगर संघारे, पंचभूत सबल है देही, गुर सदगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे, राम नाम पढ़ो गत पावो, सतसंगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे, मेर सुमेर मोर बहु नाचे, जब उन वै कहन कन हारे। साकत गौ अमृत भौ सिंचौ, सब डाल फूल बिस्कारे। ज्यो ज्यो निवै साकत नर सेती, शेड़ शेड़ कड्डै बिख खारे। संतन संत साध मिल रही है, गुण बोलै पर उपकारे। संत संत मिलै मन बिकसै, ज्यो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान हल्क है, हल्क्यो सब बिगारे। मेरे ठाकर कह दीबान खबर होई, गुर ज्ञान खड़ग लै मारे। राख राख राख प्र मेरे, मैं राखो कृपा तारे। नानक मैं तारे अवर ना काई, मैं सतगुर गुर निस्तारे। शक्का एक

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रबराया रहाओ काम क्रोध लो मोह निर्चगर ते चगराया हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छलन आया प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख लियो तराया हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया पौ जन मरण निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया हर हार हर उर तारियो जन नानक नाम समाया माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता सतसंगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पिछाता रहाओ वडभागी गुर दर्शन पाया गुर मिले हर प्रभ जाता दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता तन तन साध जिनी हर प्रभ पाया तिन पूछो हर की बाता पाए लगो नित करो जुदरिया हर मेलो कर्म विधाता ललाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मंत्र राता हर प्रभ आए मिले सुख पाया सब के लिख पाप गवाता राम रसायन।

थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहवा पार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा इही हमारा सफल काज अपने दास तो लेहो निवाज रहाओ चरण संतै माथ मोर नैन दर्स पेखो निस्पोर हस्त हमरे संत टहलो प्राण मन तन संत बहलो संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसै मेरा चीत संत आग्या मन है मीठ मेरा कमल बिकसै संत डीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की मोह बहुत प्यास संत बचन मेरे मन है मंत संत प्रसाद मेरे बिखै हंत मुकत जुगत एहा निधान प्रभ दयाल मोह देवो दान नानक कहो प्रभ दया तार चरण संतन के मेरे हृदय मजार माली गौड़ा महला पंजवा सब कै संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाओ सुनत जियो जास नाम दुख बिन से सोकियो विश्राम सगल निदो हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जा कै घर सगले समाहे जिसते बिरथा कोई नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो किरपाल सदा धर्म जा कै दीबाण बेमोहताज नहीं किश काण सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू ता को जाप साध संगत को हौ बलिहार जास मिल होवै उधार नाम संग मन तन है रात नानक कहो प्रभ करी दात माली गौड़ा महला पंजवा दो पदे एको अंकार सतगुर प्रसाद हर समर्थ की सरना जियो पिंड तन रास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाईए जीवन का मूल रव रहया सरबत ठाई सूख मो अस्थूल आल जाल बेकार तज सब हर गुणा नित गाओ कर जोड़ नानक दान मांगे देहो अपना नाओ माली गौड़ा महला पंजवा प्रभ समरथ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किशंत नाही पार रहाओ एक खिनह था प्यो थापदा कड़ पन करने हार जेत कीने पार जना प्रभ दान दे दातार हर सरन आयो दास तेरा प्रभ ऊच अगम मुरार कड़ लेहो पौ जल बिखमते जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच्छल सदा सदा किरपाल रहाओ आदि अंत मद तू है प्रभ बिना नाही कोए पूर रहया सगल मंडल एक स्वामी सोए करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ बलिहार जाए सदा नानक देहो अपना नाओ माली गौड़ा बाणी भगत नामदेव जी की एको अंकार सतगुर प्रसाद तन तन ओ राम बेन बाजै मदर मदर

कमलापति तन तन बन खंड बिंद्रा बना जय खेलै श्री नारायणा बिन बजावै गोदन चरै नामे का स्वामी आनंद करै मेरो बाप माधो तू तन केसो सांवलियो बीठ लाए रहाओ कर तरे चक्कर बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रुपती अंबर ले त्यो बारी अले गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अदम अजात नाम देओ तो शरणागत आई अले सबै घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रहाओ एकल माटी कुंजर चीटी भांजन है बहु नाना रे अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे एकल चिंता राखे अनंता और तजो सब आसा रे प्रणवै नामा पहने कामा को ठाकर को दासा रे राग मारू महला पहला कर पहला चौप दे एको अंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह पंगुर प्रसाद सलोक साजन तेरे चरण की होए रहा संतूर नानक शरण तुहारिया पेखो सदा हजूर शबद पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले खेमे छत्र सराए चे दिसन रथ पीड़े जिन्नी तेरा नाम ते आया तिन को सद मिले बाबा मैं कर्महीन कूड़ियार नाम ना पाया तेरा अंधा परम भूला मन मेरा रहाओ साध कीते दुख पर फोड़े पूर्व लिखे माए

गया सो जो बनो तन पछताणी, तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पणत नानक अंदेसा यही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाउ सपागा, गुर की बचनी हट बेकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतराई, साहिब का हुक्म ना करना जाई रहाओ। मां लाली प्यो लाला मेरा, हाँ लाले का जाया, लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया, पिए ता पानी आनी मीरा, खाहे ता पीसन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाओ। लून हरामी नानक लाला, बख्शै तुद वड्याई, आज जुगा दया पदाता, तुद बिन मुक्त ना पाई,

रहाओ। ब्रह्मा विष्णु ऋखी मुनि शंकर इंद तप पेखारी मान हुक्म सोहै दरसाच आकी मरया फारी। जंगम जोत जति सन्यासी गुरपुरे विचारी बिन सेवा फल कवो ना पावस सेवा करनी सारी। ने तनिया तान निगुरिया गुर निमाणिया तू मान अंदले माणक गुर पकड़िया नितानिया तू तान। होम जपा नहीं जानिया गुरमती साच पछाण ना बिना नाही दर टोई झूठा आवन जान। साचा नाम सलाही है साचे ते तृप्त होए ज्ञान रतन मन मांझी है बौन न मैला होए। जब लग साहेब मन वसै तब लग बिगना होए नानक सिर दे छुट्टी है मन तन साचा सोए। मारू महला पहला जोगी जुगत नाम निरमायल ता कै मैल न राती प्रीतम नाथ सदा सच संगे जन्म मरण गत बीती। गुसाई तेरा कहा नाम कैसे जाती जात पीतर महल बुलावै पूछो बात निरंती रहाओ। ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान इशनानी हर गुण पूजे पाती एको नाम एक नारायण त्रिपवन एका ज्योति। जेहवा डंडी एहो कट शाबा तोलो नाम या जाची एको हाट साहो सबना सिर वन जारे एक पाती। दो वै सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूजै जिस एक लिव लागी जियो रह निप्राती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती। ऊपर गगन गगन पर गोरख ता का अगम गुरु पुनवासी गुरबचनी बाहर करे को नानक पया उदासी। राग मारू महला पहला कर पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद। अहन सजागै नींद ना सोवै सो जाने जिस वेदन होवै। प्रेम के कान लगे तन पीतर वैद के जाने कारी जियो। जिसनो साचा सिफती लाए गुरमुख विरले किसै बुझाए। अमृत की सार सोई जाने जे अमृत का वापारी जियो। रहाओ पिर सेती तन प्रेम रचाए गुर कै शब्द तथा चित लाए। सहज सेती तन खरी सुखेली तृष्णा तिखा निवारी जियो। सहसा तोड़े परम चुकाए सहजे सिफती तनख चढ़ाए। गुर कै शब्द मरे मन मारे सुंदर जोगा तारी जियो। हाँ मैं जलिया मनो विसारे जंपर वजै खड़ग करारे।

हेत के बंधन तोड़ ना साके ता जम करे खुआरी जियो। ना हो करता ना मैं किया अमृत नाम सतगुर दिया। जिस तू देह तसै क्या चारा नानक शरण तुम्हारी जियो। मारू महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जह बैसालै तै बैसा स्वामी जय भेजै तै जावा। सब नगरी मैं एको राजा सबे पवित है थावा। बाबा देह वसा सच गावा जाते सहजे सही समावा रहाओ। बुरा भला किश आपस ते जानिया ए ही सगल विकारा। एहो फरमाया खसम का होवा वरतै ओ संसारा। इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किस्ते होई। आपे खेल करे सब करता ऐसा बुझै कोई। गुरप्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे बिनासी। ज्योतिष पाणा सो सतकर्मा नया काटी जमकी फासी। पणत नानक लेखा मांगै कवना जा चूका मन अभमाना। तास तास धर्म राय जपत है पै सच्चे की सरना।

संगत में लाभ करो, हर नाम मिले पतसाख, हर हर नाम तन पाया जन नानक गुरमत पाख, मारू महला चौथा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर भगत भरे भंडारा, गुरमुख राम करे निस्तारा, जिसनों कृपा करे।

पुत्र कलत्र गृह देख पसारा इसी मैं उर जाए। माया मद चाख पय उदमाते हर हर कबो न गाए। एह बिद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए। तुम दा तार वड्डे प्रभ समर्थ मांगन कौ दान आए। त्याग्यो सगला मान महत्ता दास रेण शरण आए। कहो नानक।

कवन चेहना सुनि ऊपर शोहयो मुखते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन कहां ते आयो, एती ना जानो केती एक मुद्दत चलते खबर ना पायो। रहाओ सहनशील पवन यार पानी बसदा खिमाने प्राते, पंच तत् मिल पयो संजोगा इनमें कमन दुराते। जिन रच रचिया पुरख विधाता नाले हम मैं पाई, जन्म मरण उस ही कौ है रे ओहा आवै जाई। वर्ण चिहन नाही किछ रचना मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजारा तब एक है एक अंकारा। मारू महला पंजवां मान मोहवर लोभ विकारा, बियो चीतना कालेओ नाम रतन गुणा हर वणजे, वा लाद वखर लै चालेओ। सेवक की ओड़क निभी प्रीत, जीवत साहेब सेवयो अपना चलते राख्यो चीत। रहाओ जैसी आज्ञा कीनी ठाकरो तिस्ते मुख नहीं मोरयो, सहजा नंद रखियो गृह पीतर उठ वाहू कौ दौरयो। आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा, सो घर खनी जान्यो जो जो हुक्म पयो साहिब का, सो माथा ले मान्यो। पयो कृपाल ठाकुर सेवक कौ सवरे हल्त पलाता, तन सेवक सफल ओह आया जिन नानक खसम पछाता। मारू महला पंजवां खुलिया कर्म कृपा पई ठाकर, कीर्तन हर हर गाई श्रम था का पाए बिश्रामा, मिट गई सगली ताई। अब मोहे जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विधाता संतन की शरणाई। रहाओ काम क्रोध लोभ निवारे निवरे सगल बैर आई, सद हजूर हाजर है नाजर कतै ना पयो दूराई। सुख शीतल सरदा सा पूरी होए संत सहाई, पावन पतत किए खन पीतर मैं मां कथन ना जाई। निरपौ पय सगल पै खोए गोबिंद चरण उटाई, नानक जस गावे ठाकर का रहन दिन सिलिवलाई। मारू महला पंजवां जो समरथ सर्व गुण नायक, तिसको कबो न गाव सिरे छोड़ जाए खन पीतर ता कौ, ओआ कौ फिर ताव सिरे। अपने प्रभ कौ क्यों ना समार सिरे, बैरी संग रंग रस रचिया तिस्यो जियरा जार सिरे। रहाओ जा कै नाम सुनिए जम छोड़ै ता की सर न पाव सिरे, काड़ दे स्याल बपरे कौ ता की ओ टिकाव सिरे। जिसका जास सुनत पवतरी है ता स्यो रंग ना लाव सिरे, थोरी बात अल्प सुपने की बहुर बहुर अटकाव सिरे। पयो प्रसाद कृपा निध ठाकर संत संग पत पाई, कहो नानक त्रै गुण प्रम छूटा जव प्र पय सहाई। मारू महला पंजवां अंतरजामी सब जानै तिस्ते कहां दुलारियो, हस्त पाव चरे खिन पीतर अग्न संग लै जा रियो। मूड़े तै मंते राम बिसारियो, लून खाए करे हराम खोरी पेखत नैन बिदारियो। रहाओ असाध रोग उपजियो तन पीतर, टरत ना काहू टारियो, प्रभ बिसरत महा दुख पायो एहो नानक तत् बिचारियो। मारू महला पंजवां चरण कमल प्रभ राखे चीत, हर गुण गावे नीता नीत। तिस बिन दूजा अवर ना को वाद मद अंत है सो, संतन की ओट आपे आप रहाओ। जा कै वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार, नानक गयो साचा सोए सुख पाया फिर दुख ना होए। मारू महला पंजवां कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद
प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसार्यो अज्ञानथ। होछा मद चाख होए तुम बावर दुलभ जन्म आकारथ। हरे नर ऐसी करै अयानथ तज सारंग धर भ्रम तू भूला। मोहे लपट्यो दासी संगसानथ रहाओ। धरणी धर त्याग नीच कुल सेवै हाँ हाँ करत बिहावथ। फोकट कर्म करै अज्ञानी मनमुख अंध कहावत। सत होता असत कर मानिया जो बिनसत सो निचर जानथ। पर की कहो अपनी कर पकरी ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वैस सब एक नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है जो सुने सो पार परानथ। मारू महला पंजवा गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। बिसार हर जियो बिखै भोगै तबत थम गल लाए। रे नर काए पर ग्रह जाए कुचल कठोर काम गर्दप। तुम नहीं सुनियो धर्म राय रहाओ। बेकार पाथर गले बांधे निंद पोट सिराए। महासागर समुद्र लंघना पार ना परना जाए। काम क्रोध लो

गुरमंत्र अवखद नाम दीना, जन नानक संकट जोन ना पाए। हरे नर इन बिद पार पराए, त्याय हर जी होए मृतक, त्याग दूजा पाओ। रहाओ दूजा मारू महला पंजवा, बाहर टूंडन ते छूट परे, गुर कर ही माए दिखाया था। अनपव अचरज रूप प्रपेखिया, मेरा मन छोड़ना कथों जाया था। मानक पायो रे पायो, हर पूरा पाया था। मोलिया मोल ना पाया जाई, कर कृपा गुरु देवाया था। रहाओ आदिष्टा गोचर पार ब्रह्म, मेरा साधु कथ कथाया था। अनहद शब्द दसम द्वार वजयो, तह अमृत नाम चुआया था। तोट नाही मंत्रशना बूझी, अखुट भंडार समाया था। चरण चरण चरण गुरसेवे, अगड़ घड़ियो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा, सहजे मन खेलाया था। कहो नानक परम गुर खोया, ता हर महली महल पाया था। मारू महला पंजवा, जिसे साज निवाजया, तिसे स्यो रुचना है। आन रुति आन बोई है, फल ना फूलैता है। हरे मन वत्र बीजन नाओ, बोए खेती लाए मनुआ, पलो समो सुआओ। रहाओ खोए खेड़ा परम मन का, सदगुर सरनी जाए। कर्म जिसको तुरो लिखिया, सोई कार कमाए। पाओ लागा गोबिंद स्यों, काल पाई थाए। खेत मेरे जमया, निखुट न कबहू जाए। पाया अमोल पदार्थो, छोड़ न कतहू जाए। कहो नानक सुख पाया, तृप्त रहे आ गाए। मारू महला पंजवा।

पूर्ण अत्र त्याग आए सहज समाध सुभाए हर भंडार हाथ आया नानक गुरते पाया। मारू महला पंजवा कर छेवां दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सयाण पा मिलसा त्याग मान अवर सब किश मिथिया रसना राम राम वखान। मेरे मन करन सुन हर नाम मिट है अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम। रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै मिले सुख विश्राम। गुर प्रसाद नानक बखाना हर भजन तत् ज्ञान। मारू महला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खेहे पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ए नेहे। मेरे मन नाम नित नित लेहे जलत नाही अग्न सागर सूख मन तन देहे। रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में है हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरा काम आवत एह। मारू महला पंजवा पुरख पूर्ण सुख है दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिनसै व्यापत उसन ना सीत। मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना एह निर्मल रीत। रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै ते सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक ते संग बीद। मारू महला पंजवा चलत बैस्त सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन पज संग साधु भव सागर उतरै पार। मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों अवर सगल विसार। रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबो ना हार। मारू महला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेण साधु थियो तिसे प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस दियो। मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होचे अमर जुग जुग जियो। रहाओ नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो। मारू महला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखै लगन देत ना सेक सोई स्वामी इहां राखै बूध बूझ बुद्ध बबेक। मेरे मन नाम की कर टेक तिसे बूझ जंतु किया प्रभ करण कारण एक। रहाओ चेत मन में तज सियाणप छोड़ सगले पेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक। मारू महला पंजवा पतत पावन।

ना जाने है, साच कहे ते शो है, पाठ पढ़े मुख झूठो बोले, निगुरे की मत यो है, नाम ना जपई क्यों सुख पावे, बिन नावे क्यों सो है, मूंड मुडाए जटा सिख बांधी, मोन रहे अभमाना, मनवा डोले दे दस्तावे, बिन रात आत्म ज्ञाना, अमृत छोड़ महाबिख पीवे, माया का देवाना, कीर्तना मिटई हुक्म न बूझे, पशुआ माहे समाना, हाथ कमंडल कापड़िया, मंत्र सना उपजी पारी, स्त्री तज कर काम व्यापिया, चित लाया पर नारी, सिख करे कर शब्द ना चीने, लंपट है बाजारी, अंतर बिख बाहर ने प्राती, ताजम करे खुवारी, सो सन्यासी जो सतगुर सेवै, विचों आप गवाए, शादन भोजन की आस न करे, अचिंत मिलै सो पाए, बकै न बोलै, खिमा तन संग्रह, तामस नाम जलाए, तन गिरही सन्यासी जोगी, जे हर चरणी चित लाए, आस निरास रह सन्यासी, एक सो लिव लाए, हर रस पीवै, ता सांत आवै, नि कर ताड़ी लाए, मनुआ ना डोलै, गुरमुख बूझै, तावत वर्ज रहाए, गृह शरीर गुरमति खोजे, नाम पदार्थ पाए, ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ, नावरते विचारी, खानी बाणी गगन पताली, जनता जोत तुम्हारी, सब सुख मुक्त नाम तुन बाणी, सच नाम उरतारी, नाम बिना ने छूट स्नानक, साची तर तू तारी, मारू महला पहला, मात पिता संजोग उपाए, रखत बिंद मिल पिंड करे, अंतर गर्भ उर्द लिव लागी, सो प्रभ सारे दात करे, संसार भवजल क्यों तरै, गुरमुख नाम निरंजन पाई है, अफरियो पार अफार टरै रहाओ, ते गुण विसर गए अपराधी, मैं बौरा क्या करो हरे, तू दाता दयाल सवै सिर, अहनिस दात समार करे, चार पदार्थ लै जग जन्मया, शिव शक्ति करवास धरे, लागी भूख माया मग जो है, मुक्त पदार्थ मोहे खरे, करन पलाव करे नहीं पावे, इत्ते उत ढूंढत थाक परे, काम क्रोध अहंकार व्यापे, कूड़ कुटंब स्यो प्रीत करे, खावे भोगे सुन सुन देखे, पहर दिखावे काल करे, बिन गुर शब्द ना आप पछाणे, बिन हर नाम ना काल टरे, जेता मोह हमें कर भूले, मेरी मेरी करते शीन खरे, तन तन बिन सहसा सहसा, फिर पछतावे मुख तूर परे, बिरद भया जोबन तन खिसिया, कफ कंठ बिरुदो नैनो नीर टरे, चरण रहे कर कंपन लागे, सागत राम नरदय हरे, सुरत गई काली हूं तौले, किसे ना पावे रखियो करे, बिसरत नाम ऐसे दोख लागे, जब मारस मारे नरक खरे, पूर्व जन्म को लेख ना मिटई, जन्म मरे का को दोष धरे, बिन गुर बाद जीवन होर मरना, बिन गुर शब्द जन्म जरे, खुशी खुआर पय रस भोगण, फोकट कर्म विकार करे, नाम विसार लोभ मूल खोयो, सिर धर्म राय का दंड परे, गुरमुख राम नाम गुण गावे, जाको हर प्रभ नजर करे, ते निर्मल पुरख परंपर पूरे, ते जग में गुरु गोविंद हरे, हर सिमरो गुर बचन समारो, संगत हर जन भाव करे, हर जन गुर प्रधान दुआरे, नानक तिन जन की रेण हरे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मारू काफी महला पहला, कर दूजा आवो वन्यो डुमनी, किती मित्र करे ओ, सातन टोई नाल है, वाडी क्यों तीरे ओ, मेंडा मन रता अपने पिर नाल, हां कोल कुमार।

ना जाना सियाना सदा साहेब कै रंगे राता अंधन नाम वखाणा। बाबा मूर्ख हां नावें बल जाओ तू करता तू दाना बीना तेरा नाम तराओ रहाओ।

मांगना मांग निका हर जस गुर ते मांगना, जागना जग निका हर कीर्तन मैं जागना, लागना लग निका गुरचरणी मन लगना, एह बिद तिसै प्राप्ते जा कै मस्तक भागना, कहो नानक तिस सब किश निका जो प्रभ की सरनागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारा, हर जस सरवन सुनावना रहाओ, तुदे आवत मेरा मंतन हरियाओ, हर जस तुम संगावना, संत कृपा ते हृदय वासै दूजा पाओ मिटावना, भगत दया ते बुद्ध परगासै दुरमत दुखत जावना, दर्शन भेटत होत पुनीता पुनरप गर्भ ना पावना, नौ निध रिद सिद्ध पाई जो तुमरै मन भावना, संत बिना मैं थाओ ना कोई अवर न सूझै जावना, मोहे निर्गुण कहो कोय ना राखै संता संग समावना, कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मध्ये हर हर रावना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन हर जप जप सद जीवना रहाओ, पीवना जित मन आगावै नाम अमृत रस पीवना, खावना जित भूख न लागै संतोख सदा तृप्तिवना, पहनना रख पत परमेश्वर फिरना गे नहीं थीवना, भोगना मन मध्ये हर रस संत संगत मैं लीवना, बिन तागे बिन सुई आनी मन हर भगती संग सीवना, मात्या हर रस मैं राते तिस बहुड़ ना कबहू औखीवना, मिलो ते सर्वनिधाना प्रभ कृपाल जिस दीवना, सुख नानक संतन की सेवा चरण संत तोए पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजलिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसै ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरै परमंता, दुहू व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सोहेला पालिया, ग्रह राज मैं नरको दास करोदा बहुविध बेद पाठ सब सोदा, देही मैं जो रह अलिपता तिस जन की पूर्ण कहलिया, जागत सूता परम विगुता बिन गुर मुक्त न होइए मीता, साध संग टुटै हो बंधन एको एक निहाली है, कर्म करै ता बंदा नह करै ता निंदा, मोह मगन मन व्यापिया चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख सम जाणै घट घट राम हियाली है, संसारै मैं सहसा व्यापै अकथ कथा गोचर नहीं जापै, जिसै बुझाए सोई बूझै ओह बालक वांगी पालिया, छोड़ बह तौ छूटै नाही जौ सिंचै तौ पौ मन माही, इस ही मह जिसकी पत राखै तिस साधु चौर ढाली है, जो सूरा तिस ही होए मरना जो भागै तिस जोनी फिरना, जो वरताए सोई भल मानै बुझ हुक्मै दुरमत जाली है, जित जित लावै ते तित लगना कर कर वेखै अपने जचना, नानके पूर्ण सुखदा ते तू देहता नाम समाली है। मारू महला पंजवा, बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त्या दोत भया उठ चले ज्यो ज्यो औध विहानिया, पाप करेंदड़ सर पर मुठे अजरा ईल फड़े फड़ कुठे, दोजग पाए सृजनहार लेखा मंगै बाणिया, संग न कोई भैया बेबा माल जोबन धन छोड़ वंजेसा, करण करीमना जातो करता तिल पीड़े जो कहानिया, खुश खुश लैंदा वस्त पराई वेखै सुनै तेरे नाल खुदाई, दुनिया लब पया खात अंदर अगली गल न जानिया, जम जम मरै मरै फिर जमै बहुत सजाए।

आपे पौन पानी बेसंतर आपे मेल मिलाई है, आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जो है नासा कै साचे सुन लिवलाई है, आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी, आपे पिड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है, आपे पवर फुल फल तारवर आपे जल थल सागर सरवर, आपे मछकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है, आपे दिन सो आपे ही रहनी आप तीजे गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदनो कट कट शब्द रजाई है, आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बख्से आपे दे लै पाई है, आपे तन खो आपे सरबाणा आपे सुगड़ स्वरूप सियाणा, कहता बगता सुनता सोई आपे बंत बनाई है, पौन गुरु पानी पित जाता उधर संजोगी धरती माता, रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है, आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला, सर्ब जिया जग जो तुम्हारी जैसी प्रभ फरमाई है, आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी, आपे वे बाणी निरंकारी निरपव ताड़ी लाई है, खानी बाणी तुझे समाणी जो दिसै सब आवन जानी, सही सह सचे व्यापारी सदगुर बूझ बुझाई है, शब्द बुझाए सदगुर पूरा सर्व कला साचे परपूरा, अफरियो वे प्रवाहो सदा तू ना तिस दिल ना तुमाई है, काल बिकाल पए देवाने शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त त्रिप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है, आप निरालम गुरगम ज्ञाना जो दिसै तुझ महे समाना, नानक नीच।

जो जन्मे ते सर पर मरना किरत पया सिर साहा हे। संजोग वियोग मेरे प्रभ की है, सृष्टि उपाए दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पय निराले, गुरमुख शीर्ष नहा हे। नीके साचे के वापारी, ससव दाले गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पल्ले, सब सच्चे ओ महा हे। काची समी टोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रस सलामत, चूका जमका फाहा हे। सब को बोले अपन भाणे, मनमुख दूजे बोल न जाने। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता है। दुख में जन्मे

बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित शरीरा, बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावे मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावे, जिन गुरमुख एको जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सोल है तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना, आपे गुप्त वरतै सब यंत्र, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा, जो तुद पावै सोई करसै, सच्चे स्यो मन राता है, आपे हीरा रतन आपे हीरा रतन अमोलो, आपे नगरी तोले तोलो, जी जंत सब शरण तुम्हारी, कर कृपा आप पछाता है, जिसनो नदर होवे तुर तेरी, मरे न जमे चूके फेरी, साचे गुण गावे दिन राती, जुजगु एको जाता है, माया मोहे सब जगतो पाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है, पाप पुन वर्त संसारा, हरख सोग सब दुख है पारा, गुरमुख होवे सो सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पछाता है, कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मुख द्वारा, पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोहे हर स्यो चेतना लागे, दूजे पाए घना दुख आगे, मन मुख परम पुले पेख तारी, अंतकाल पछताता है, हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किलव काटे दुख सबाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर सेती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निध पाए, हम मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण का

मनमुख पूला ठौर ना पाए, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए। बिख्या राते बिख्या खोजै, मर जन्मै दुख ताहा हे। आपे आप सा लाहे, तेरे गुण प्रभ तुझी माहे। तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे लखा थाहा हे। बिन गुरदाते कोई ना पाए, लख कोटी जे कर्म कमाए। गुर कृपा ते कट अंतर वसिया, सबदे सच सलाहा हे। से जन मिले तुर आप मिलाए, साची बाणी शब्द सुहाए। नानक जन गुण गावै नित साचे, गुण गावै गुणी समाहा हे। मारू महला तीजा, निश्चल एक सदा सच सोई। पूरे गुर ते सोजी होई, हर रस पीने सदा ते आयन। गुरमत सील सन्नाहा हे, अंदर रंग सदा सचियारा। गुर कै शब्द हर नाम प्यारा, नौनिद नाम वसिया कट अंतर। छोड़िया माया का लाहा हे, रैयत राजे दुरमत दोई। बिन सतगुर सेवे एक न होई, एक ते आए न सदा सुख पाए न। निश्चल राज तनाहा हे, आवन जाना रखे ना कोई। जमन मरण तिसै ते होई, गुरमुख साचा सदा ते आवो। गत मुक्त तिसै ते पाहा हे, सच संयम सतगुरु द्वारै। हम मैं क्रोध शब्द निवारै, सतगुर सेव सदा सुख पाईऐ। सीर संतोख सब ताहा हे, हम मैं मोह उपजै संसारा। सब जग बिनसै नाम विसारा, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाईऐ। नाम सच्चा जग लाहा हे, सच्चा अमर शब्द सुहाया। पंच शब्द मिलवा जावाया, सदा कार्ज सच नाम सुहेला। बिन शब्द कार्ज कहा हे, खिन मैं हसै खिन मैं रोवै। दूजी दुरमत कार्ज ना होवै, संयोग वियोग करतै लिख पाए। कीर्तना चलै चलाहा हे, जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए। हर स्यों सदी रह समाए, गुर कृपा ते मिलै वडियाई। हम मैं रोग ना ताहा हे, रस कस खाए पिंड वधाए। पेख करै गुर शब्द ना कमाए, अंतर रोग महा दुख पारी। बिष्टा महे समाहा हे, वेद पढ़ै पढ़वाद बखाणै। घट मैं ब्रह्म ते शब्द ना पछाणै। गुरमुख होवै सो तत् बिलोवै, रसना हर रस्ता हे। घर वथ छोड़ै बाहर तावै, मन मुखी अंधे साधना पावै। अन रस राती रसना फीकी, बोले हर रस मूल ना ताहा हे। मन मुख देही भरम पतारो, दुरमत मरै नित होए खुवारो। काम क्रोध मन दूजै लाया, सुपने सुख ना ताहा हे। कंचन देही शब्द पतारो, अंदन भोग भोगे हर स्यों प्यारो। महला अंदर गैर महल पाए, पाणा बुझ समाहा हे। आपे देवै देवन हारा, तिस आगै नहीं किसै का चारा। आपे बक्से शब्द मिलाए, तिसदा शब्दया थाहा हे। जियो पिंड सब है तिस केरा, सच्चा साहिब ठाकर मेरा। नानक गुरबाणी हर पाया, हर जप जाप समाहा हे। मारू महला तीजा, गुरमुख नाद वेद विचार। गुरमुख ज्ञान ध्यान अपार, गुरमुख कार करे प्रभ पावै। गुरमुख पूरा पाएंदा, गुरमुख मनुआ उल्ट परावै। गुरमुख बाणी नाद बजावै, गुरमुख सच रते बैरागी। निज कर वासा पाएंदा, गुर की साखी अमृत पाखी। सच्चे शब्दे सच सुपाखी, सदा सच रंग राता मन मेरा। सच्चे सच समाएंदा, गुरमुख मन निर्मल सत सरण आवै। मैल न लागै सच समावै, सचो सच कमावै सदही। सच्ची भगत दृढ़ाएंदा, गुरमुख सच बैणी। गुरमुख सच नैणी, गुरमुख सच कमावै करणी। सदही सच कह दिन राती, अवरा सच कहाएंदा। गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी, गुरमुख सचो सच वखाणी।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਦ ਸੇਵੈ ਸੱਚੋ ਸੱਚਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸੋਝੀ ਪਾਏ, ਹਮੈ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਗਵਾਏ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਉਤਮੀ ਉੱਚੀ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਕਰਨੀ ਸਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਪਾਏ ਭਗਤ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਮਨ ਖੋਜ ਸੁਣਾਏ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਸਦਾ ਲਿਵਲਾਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਹੀ ਕਰਸੀ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਮਨ ਪਾਏਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਆਪਣੇ ਪਾਣੇ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਪਾਣੇ ਮਨ ਵਸਾਏਂਦਾ। ਮਨ ਹਠ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸੋ ਚੀਜੈ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਸ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪੀਜੈ। ਵਿਖਿਆਰਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਕਮਾਵੈ, ਦੁੱਖੇ ਦੁੱਖ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸੁਖ ਕਮਾਏ, ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ। ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਜੋ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਰੈ ਸੋ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਮਰੈ ਨਾ ਜੰਮੈ ਨਾ ਦੁਖ ਪਾਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨੈ ਸਮਾਏਂਦਾ।

आपे न्याओ करे सब साचा, साचे साच में लाएंदा। काया कोट है आकारा, माया मोह पसरिया पासारा, बिन शब्द पसमें की टेरी, खेहू खेहर लाएंदा। काया कंचन कोट अपारा, जिस विच रविया शब्द अपारा, गुरमुख गावे सदा गुण साचे, मिल प्रीतम सुख पाएंदा। काया हर मंदर हर आप सवारे, तिस विच हर जियो वसै मुरारे, गुर कै शब्द वणजन वापारी, नदरी आप में लाएंदा। सो सूचा जे क्रोध निवारे, शब्दे बूझै आप सवारे, आपे करे कराए करता, आपे मन वसाएंदा। निर्मल भगत है निराली, मन तन धोवै शब्द विचारी, अंदन सदा रह रंगराता, कर कृपा भगत कराएंदा। इस मन मंदिर मैं मनुआ तावै, सुख पल्लर त्याग महा दुख पावै, बिन सतगुर भेटे ठौर ना पावै, आपे खेल कराएंदा। आप अपरंपर आप विचारी, आपे मेले करनी सारी, क्या को कार करे विचारा, आपे बख्श मिलाएंदा। आपे सतगुर मेले पूरा, सच्चा शब्द महाबल सूरा, आपे मेले देवड़े आई, सच्चे सोच तलाएंदा। कर ही अंदर साचा सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई, नाम निधान वसिया कट अंतर, रसना नाम ते आएंदा। दिसंतर पवै अंतर नहीं पाले, माया मोहे बद्दा जमकाले, जमकी फासी कबहू ना टूटै, दूजे पाए परमाएंदा। जप तप संजम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कमाही, गुर कै शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाएंदा। काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावै सब दुख का पसारा, सतगुर सेवै से सुख पावै, सच्चा शब्द मिलाएंदा। पौन पानी है बैसंतर, माया मोह वरत है सब अंतर, जिन कीते जत सह पछाण, माया मोह चुकाएंदा। एक माया मोहे गर्भ व्यापे, हमें होए रहे है आपे, जमका लैकी खबर ना पाई, अंत गया पछताएंदा। जिन उपाय सोबित जाने, गुरमुख देवै शब्द पछाण, नानक दास कह बेनंती, सच नाम चित लाएंदा। मारू महला तीजा, आद जुगाद दया पद दाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता, तुदनों सेवै से तुझै समावै, तू आपे मेल मिलाएंदा। अगमा गोचर कीमत नहीं पाई, जी जंत तेरी सरनाई, ज्यो तुद पावै तवै चलावै, तू आपे मार्ग पाएंदा। हैपी साचा होसी सोई, आपे साजे अवर ना कोई, सबना सार करे सुखदाता, आपे रिजक पहुंचाएंदा। अगम्या गोचर अलख्या पारा, कोई ना जाने तेरा परवारा, अपना आप पछाने आपे, गुरमती आप बुझाएंदा। पाताल पुरिया लो आकारा, तिस विच वरतै हुक्म करारा, हुक्मे साजे हुक्मे ढाहे, हुक्मे मेल मिलाएंदा।

देखो तिसी ठकराई तिसे न आवै जम नेड़ा। कीमत कागद कही ना जाई कहो नानक बेअंत गोसाई। आद मद अंत प्रभ सोई हाथ तिसे कै ने बेड़ा। तिसे सरीक नाही रे कोई किस ही बुते जवाब ना होई। नानक का प्रभ आपे आपे कर कर वेखे चोज खड़ा। मारू महला पंजवा अचत पार ब्रह्म परमेसर अंतर जामी। मधसूदन दा मुद्र स्वामी रिखी केस गोवर्धन धारी मुरली मनोहर हर रंगा। मोहन माधव कृष्ण मुरारे जगदीशर हर जीव सर संघारे। जग जीवन अवनासी ठाकर घड़कड़ वासी है संगा। धरणी तर ईस नर सिंह नारायण दाड़ा अग्रे प्रथम तरायण। बावन रूप किया तुद करते सब ही सेती है चंगा। श्री राम चंद जिस रूप ना रेखिया बनवाली चक्कर पार दंस अनुपया। बनवाली चक्कर पाण दरस्या नूपया सहस नेत्र मूर्त है सहसा एकदाता सब है मंगा। भगत वछल अनाथ है नाथे गोपी नाथ सगल है साथे। बास देव निरंजन दाते बरना सा कौ गुण अंगा। मुकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण। कमला कंत करै कंतूहल आनंद विनोदी ने संगा। अमोग दर्शन अजूनी संपाओ अकाल मूर्त जिस कदे नाही खाओ। अबनासी अवगात्या गोचर सब किश तुझ ही है लगा। श्री रंग बैकुंठ के वासी माशकश कूरम आग्या उतरासी। केसव चलत करै निराले कीता लोड़ै सो होएगा। निरहारी निरवैर समाया तार खेल चतुर्भुज कहाया। सावर सुंदर रूप बनावै बेण सुनत सब मोहैगा। बनमाला विभूखन कमल लैन सुंदर कुंडल मुकट बैन। संख चक्र गदा है तारी महासारथी सतसंगा। पीत पितंबर त्रिपवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुख पणी। सारंग तर भगवान बीठला मैं गणत न आवै सरबंगा। नेह कंटक नेह केवल कहिया धनंजय जलथल है महिया। मृत लोक पयाल समीपत अस्थिर थान जिस है अपगा। पतत पावन दुख पै भंजन अहंकार निवारण है पव खंडन। भगती तोखत दीन कृपाला गुणे न कित ही है पिगा। निरंकारिया शालिया डोलो ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो। सो मिलै जिस आप मिलाए आपो कोय न पावेगा। आपे गोपी आपे काना आपे गऊ चरावे बाना। आप यो पावे आप को पावे तुद लेप नहीं एक तिलरंगा। एक जी ही गुण कमन वखाने सहस फनी सेख अंत न जाने। नव तन नाम जपै दिन राती एक गुण नाही प्रभ कै संगा। ओट गही जगत पित सरनाया पै भयानक जमदूत दुत्र है माया। हो कृपाल इच्छा कर रखो साध संपन कै संग संगा। दृष्ट मान है सगल मथेना एक मांगो दान गोबिंद संतरेना। मस्तक लाए परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा। जिन कहो कृपा करी सुखदाते तिन साधु चरण लहर दे पराते। सगल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द मन वा जंगा। कीर्तम नाम कथे तेरे जिहबा सत नाम तेरा परा पूर्बला।
कहो नानक भगत भए सरनाई देहो दर्श मन रंग लगा। तेरी गतमित तू है जाने तू आपे कथै तै आप वखाण। नानक दास दासन को करियो हर पावे दासा राग संगा। मारू महला पंजवा अल्लै अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे। होए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा। सच निवाज यकीन मुसल्ला मनसा मारने वारो वासा। देह मसीत मन मौलाना कलम खुदाई पाक खरा। सरा सरयत ले कमावो तरीक तर्क खोज टोलावो। मारफत मन मारो अब्दाला मिलो हकीकत जित फिर ना मरा। कुरान कतेब दिल माए कमाही दस औरात रखो बदराही। पंच मर्द सिदक ले बांधो खैर सबूरी कबूल परा। मक्का मेहर रोजा पै खाका पिस्त पीर लफज कमाए अंदाजा। हूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अल्लाह आला हुजरा। सच कमावै सोई काजी जो दिल सोदै सोई हाजी। सो मुल्ला मलियून निवारै सो दरवेश जिस अवतरा। सबे वक्त सबे करवेला खालक याद दिलै मैं मौला। तस्बी याद करो दस मर्दन सुनत सील बंधान बरा। दिल में जानो सब फिलहाला खिलखाना बिरादर हमू जंजाला। मीर मलक उमरे फान आया एक मुकाम खुदाए दरा। अवल सिफत दूजी साबूरी तीजे हलेमी चौथे खैरी। पंजवे पंजे एकत मुकाम मैं ए पंज वक्त तेरे अपर परा। सगली जान करो मौदीफा बद अमल छोड़ करो हथ कूजा। खुदाए एक बुझ देवो बांगा बुरगू बरखुरदार खरा। हक हलाल बखोरो खाना दिल दरियाओ तो मैलाना। पीर पछाने पिस्ती सोई अजराइल ना दो ठरा। काया किरदार औरत यकीना रंग तमाशे मान हकीना। नापाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा। मुसलमान

गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प धरी सब आगै, जग मै नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड दे साज सवारे, सास ग्रह संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पैर हर रख मन माही, साध संग भज अचुत स्वामी, दरगह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन मैं चाहै, मिल साधु स्वामी रावणा, शास्त्र सिमरत वेद वखाणी, जन्म पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिऐ, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुल नहीं जाती, पूर्ण पूर रहा दिन राती, जो जो जपै सोई वडभागी, बहुना जो नी पावना, जिसनो बिसरै पुरख विधाता, जलता फिरै रह नित ताता, अकिरत घणे कौ रखै ना कोई, नरक कोर मैं पावना, जियो प्राण तन तन जिन साजिया, मात गर्भ मैं राख निवाजिया, तिस स्यो प्रीत शाड अनराता, काहू सिरै ना लावना, तार अनुग्रह स्वामी मेरे, घट घट वसै सबन कै नेरे, हाथ मारे कछुऐ नाही, जिस जणाए तिसै जणावना, जा कै मस्तक तुर लिख पाया, तिसी पुरख ना व्यापै माया, नानक दास सदा सरनाई, दूसर लवै ना लावना, आग्या दुख सुख सब कीने, अमृत नाम बिरलैही कीने, ताकि कीमत कहण न जाई, जत का तो ही समावना, सोई भगत सोई वरदाता, सोई पूर्ण पुरख विधाता, बाल सहाई सोई तेरा, जो तेरे मन पावना, मृत दुख सुख लिख पाए, तिल नहीं बधै कटै ना कटाए, सोई होए जे करते पावै, कह कह आप मजावना, अंध कूपते से ही काढे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कृपा तार रखे कर अपने, मिल साधु गोविंद त्यावना, तेरी कीमत कहण न जाई, अचरज रूप वड्डी वड्याई, भगत दान मंगै जन तेरा, नानक बल बल जावना, मारू वार महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक

पाईए जे बहुत लोचाही आवे जाए जम्मे मरे गुर शब्द छुटाही आप करे किस आखिए दूजा को नाही। श्लोक महला तीजा इस जग में संती तन खटिया जिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आए सतगुर सच दृढ़ाया इस धन की कीमत कही ना जाए। इतन पाया भुख लथी सुख वस्या मन आए जिन्ना कहो तुर लिखिया तिन्नी पाया आए मनमुख जगत निरतन है माया नू बिल लाए अंदन फिरदा सदा रह भुख न कदे जाए सांत न कदे आवई न सुख वसे मन आए सदा चिंत चित वदा रह सहसा कदे न जाए। नानक विण सतगुर मत पवी सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए सदा सदा सुख में रह सच्चे महे समाए। महला तीजा जिन उपाई मेदनी सोई सार करे एको सिमरो पाए रहो जिस बिन अवर ना कोए खाना शब्द चंगियाईया जित खाद है सदा तृप्त होए पहनन सिफत सनाए है सदा सदा ओ उजला मैला कदे ना होए। सहजे सच तन खटिया थोड़ा कदे ना होए देही नो शब्द सिंगार है जित सदा सदा सुख होए। नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप विखाले सोए पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै हर हर नाम ते आई है हमें अज्ञान गवापै अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापै जिन चाखिया से निरपौ पए से हर अस्त्रापै हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै। श्लोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण ना विहाजै कोए गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। गुर प्रसादी गुण पाईयान जिसनो नजर करे महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्ने सुख पाई है गुर शब्दी विचार पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याओ गुर शब्दी दर जानी है अंदर महल असराओ खरे परख खजाने पाईयान खोटिया नाही थाओ सब सचो सच वर्तदा सदा सच ने आओ अमृत का रस आया मन वसिया नाओ। श्लोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू होवे हो नाहे बुझो ज्ञानी बुझना एह अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत ना पाई है अलख वसै सब माहे सतगुर मिले ता जानी है जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पहो गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाई है उतो मत तराहे नानक सो हंग हंसा जप जापो त्रिपवन तसै समाहे। महला तीजा मन मानक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन विरले जानी है कल युग विच संसार आपै नो आप मिल रहा हमें दुबधा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे पौजल विखम संसार पौड़ी मनमुखे अंदर ना भलनी मुठे अमते चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत शास्त्र ना सोधनी मनमुख विगुते बिन गुर किने ना पायो हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते।

सर्व सुख पावे तिल नहीं पन्ने कहलिया। हर गुणित गाए सहज सुभाए प्रेम महारस माता, नानक दास तेरी शरणाई तू पूर्ण पुरख विदाता। हर प्रेम भगत जन बेदया से आन कत जाही, मीन बिशोहा ना सह जल बिन मर पाही। हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है, चात्रक बूंद प्यासिया। कबरैन बिहावै चकवी सुख पावै सूरज करण प्रगासिया। हर दर्स मन लागा दिन सुभागा, अंदन हर गुण गाही। नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टिकाही। सास बिना ज्योंदे हुरी कत सोभा पावै, दर्स बिहुना साध जानो खिण टिकण न आवै। हर बिन जो रहना नरक सो सहना, चरण कमल मन बेदया। हरसक बैरागी नाम लिवलागी कतो ना जाए नखेदया। हर स्यों जाए मिलना साध संग रहना, सो सुख अंक नाम आवै। हो कृपाल नानके स्वामी हर चरण संग समावै। खोजत खोजत प्रभ मिले हर करना तारे, निर्गुण नीचा नाथ मैं नहीं दुख बिचारे। नहीं दुख बिचारे पूर्ण सुख सारे, पावन बिरद बखानिया। भगत वछल सुन अंचलो गहया, घट घट पुर समानिया। सुख सागरो पाया सह सुभाया, जन्म मरण दुख हारे। कर गह लीने नानक दास अपने, राम नाम उर हारे। राग के दारा बाणी कबीर जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उस्तत निंदा दो बिबरजत तजो मान अब माना, लोहा कंचन सम कर जाना ते मूर्त भगवाना। तेरा जानू एक याद कोई, काम क्रोध लोमो बिबरजत हर पद चीने सोई रहाओ। राज गुण तम गुण सतगुण कहिया, एह तेरी समाया। चौथे पद कहो जो नर चीने, तिन ही परम पद पाया। तीर्थ बरत नेम सो संजम सदा रह निकामा, तृष्णा अरमाया परम चूका चितवत आत्म रामा। जेह मंदिर दीपक परगासिया अंधकार तह नासा, निरपव पूर रहे परम पागा कह कबीर जनदासा। किन्ही बनजिया कांसी तांबा किन्ही लौंग सुपारी, संतो बनजिया नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी रहाओ। साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी, साची वस्त के भार चलाए पहुंचे जाए पंडारी। आपै रतन जवाहर मानक आपै है पासारी, आपै दह दस्य आप चलावै निचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गुण पर डारी, कहत कबीर सुनो रे संतहो निभि खेप हमारी। री कलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फेरावो, मन मत वार मेर सर पाठी अमृत तार चुआवो। बोलो पहिया राम की दुहाई, पीवो संतो सदा मत दुर्लभ सहजे प्यास बुझाई रहाओ। पै बिच पाओ पाए को बूझै हर रस पावै पाई, जेते कट अमृत सब ही मैं पावै सह पियाई। नगरी एकै नौ दरवाजे तावत बरज रहाई, त्रिकुटी छूटै दसवां दर खूलै तमन खीवा पाई। अपै पद पूर ताप तह नासे कह कबीर बिचारी, उबट चलनते एह मद पाया जैसे खोंद खुमारी। काम क्रोध

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदा नाम वसाए, पहरो महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब को लो धारण हार। बिन नावे मनमुख

संत संग ले चढ़ियो शिकार, मृग पकड़े बिन कोर हथियार। रहाओ अखेर बिरत बाहरे आयो ताए, अहेरा पायो करके गाए। मृग पकड़े कर आने हाट, चुख चुख ले गए बांडे बाट। एहो अहेरा कीनो दान, नानक कह कर केवल नाम। पैरो महला पंजवां, जे सौ लोच लोच खावाया, सागत हर हर चीत ना आया। संत जना की लेहो मते, साध संग पावो परम गते। रहाओ पाथर को बहु नीर पवाया, नह पीगे अधिक सुकाया। खट शास्त्र मूर्ख है सुनाया, जैसे दैदस पवन चुलाया। बिन कण खलहान जैसे गहना पाया, त्यों साकत ते को ना बरासाया। तित ही लागा जित को लाया, कहो नानक प्रबणत बनाया। पैरो महला पंजवां, जियो प्राण जिन रचियो शरीर, जिनै उपाय तिसको पीर। गुरु गोबिंद जी कै काम, हलत पलत जाकी सद शाम। रहाओ प्रभ आराधन निर्मल रीत, साध संग बिनसी विपरीत। मीत हीत तन नह पारना, तन तन मेरे नारायणा। नानक बोले अमृत बाणी, एक बिना दूजा नहीं जानी। पैरो महला पंजवां, आगे दय पाछे नारायण। मध पाग हर प्रेम रसायण, प्रभु हमारे शास्त्र साउण। सू सहजानंद ग्रह पाउण, रहाओ रसना नाम करन सुन जीवे। प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे, जन्म जन्म के दुख निवारे। अनहद शब्द बजे दरबारे, कर कृपा प्रभ लिए मिलाए। नानक प्रभ शरणागत आए। पैरो महला पंजवां, कोट मनोरथ आवै हाथ। जम मार कै संगी पांथ, गंगा जल गुरु गोबिंद नाम। जो सिमरै तिसकी गत होवै, पीवत बहुण ना जोन प्रमाम। रहाओ पूजा जाप ताप इशनान, सिमरत नाम पै नेह काम। राजमहल साधन दरबार, सिमरत नाम पूर्ण आचार। नानक दास एहो किया विचार, बिन हर नाम मिथ्या सब शार। पैरो महला पंजवां, लेप न लागो तिल का मूल। दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल, हरजन राखे पार ब्रह्म आप। पापी मुआ गुर प्रताप, रहाओ अपना खसम जन आप ते आया। याना पापी ओ आप चाया, प्रभ मात पिता अपने दास का रखवाला। निंद का माथा यहां हुआ काला, जन नानकी परमेसर सुनी अरदास। मलेश पापी पचया पया निराश,

नाम बिना सब दुनिया शार। अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाहा, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह। नी तरिया तरपन खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए। नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरै दिल जी प्राण। पहराओ महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाणा सतकर सहो। जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवो। हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग में एक नाम उदार। नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा। सदगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए। पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ। रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार। सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा। नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान। पहरो महला पंजवा, अपने दास को कंठ लगावे, निंदक को अगन में पावे। पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथू नाही। पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत। निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया। दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई। नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा। चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता। ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता। अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे। जो चितविय तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़। दासी को सिमरै मनमुख अंध ज्ञाना। हर की भगत करै तिन निंदै, निगुरे पशु समाना। जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, सागत कहते मेरा। अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा। होम जग जप तप सब संयम, तड़ तीर्थ नहीं पाया। मिटाया पे सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया। पहरो महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, ग्रह पेख्यो उदासाए। दंड तार जड़ तार पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए। संत संग पेख्यो मन माए, ऊप पयाल सर मैं पूर्ण। रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यास पेख्यो। जत जंगम कपड़ाए, तपी तपी सरमन मैं पेख्यो। नट नाटक निरताए,

कर्तार, जैसी ऊपर नजर करे करतार, ते जन के सब का सवार, तिसका रखा को सोए, जन नानक पढ़ना साके कोए, पैरो महला पंजवा।

तौ कड़िया जे दूजा करता तौ कड़िया जे अन्याय को मरता तौ कड़िया जे कह जाने नाही क्या कड़िया जा भरपूर समाही तौ कड़िया जे किश होए तिंगाने तौ कड़िया जे भूल रजाने गुर कहया जो होए सब प्रभ ते तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते प्रभ तू है ठाकर सबको तेरा जो पावे त्यों करे निबेरा दुतिया नास्त एक रया समाए राखो पै नानक सरनाए पैरो महला पंजवा बिन बाजे कैसो निर्तकारी बिन कंठ कैसे गवनहारी जील बिना कैसे बजर बाब नाम बिना बिरथे सब काज नाम बिना कहो को तरिया बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ बिन जेहवा कहाँ को बगता बिन श्रवना कहाँ को सुनता बिन नेत्रा कहाँ को पेख है नाम बिना नर कहीं ना लिख है बिन विद्या कहाँ कोई पंडित बिन अमरा कैसे राज मंडित बिन बुझे कहाँ मन ठहराना नाम बिना सब जग बौराना बिन बैराग कहाँ बैरागी बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी बिन बस पंच कहाँ मन चूरे नाम बिना ससद ही चूरे बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे कहो कैसो ध्यान बिन पै कथनी सर्व बेकार कहो नानक दर का विचार पैरो महला पंजवा हों मैं रोग मानख कौ दीना काम रोग मैंगल बस लीना दृष्ट रोग पचमोए पतंगा नाद रोग खप गए कोरंगा जो जो दिसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रहाओ जेहवा रोग मीन ग्रस आनो बासन रोग पवर बिनसानो हेतरो का सगल संसारा त्रिबद रोग में बदे बिकारा रोगे मरता रोगे जन्मे रोगे फिर जोनी परमे रोग बंद रहन रति ना पावे बिन सतगुर रोग कत ना जावे पार ब्रह्म जसकीनी दया बहा पकड़ रोगों कढ लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नान गुर रोग मिटाया पैरो महला पंजवा चीत आवै ता महा आनंद चीत आवै ता सब दुख पंज चीत आवै ता सरदा पूरी चीत आवै ता कबै ना चूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपुरै दियो रंग लाए रहाओ चीत आवै ता सर्ब को राजा चीत आवै ता पूरे काजा चीत आवै ता रंग गुलाल चीत आवै ता सदा निहाल चीत आवै ता सद धनवंता चीत आवै ता सद निपरंता चीत आवै ता सब रंग माणे चीत आवै ता चुकी काणे चीत आवै ता सहज कर पाया चीत आवै ता सुन समाया चीत आवै सद कीर्तन करता मन मान्या नानक भगवंता पैरो महला पंजवा बाप हमारा सद चिरंगजीवी पाई हमारे सद ही जीवी मीत हमारे सदा बनासी कुटुंब हमारा नी करवासी हम सुख पाया ता सवै सुहेले गुरपुरे पिता संग मेले रहाओ मंदिर मेरे सब ते उच्चे देश मेरे बेअंता पूछे राज हमारा सदी निचल माल हमारा खूटा बेचल सोभा मेरी सब जुग अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीर्त हमरी कर कर होई भगत हमारी सबनी लोई पिता हमारे प्रगटे मांझ पिता पुत्रल किन्नी सांझ कहो नानक जो पिता पतीने पिता पूते कै रंग लीने पैरो महला पंजवा निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते हम अपराधी तुम बख्साते जिस पापी को मिले ना टोई शरण आवै ता निर्मल होई सुख पाया सतगुरु मनाए सफल पाए गुरु ते आए रहाओ
पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश। चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना केराया। तिस पाणा सूके काष्ट हरिया, तिस पाणा ता थल सिर सरिया। तिस पाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए। हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन शीतल मन अमृत बूठा। पार ब्रह्म गुर पए दयाला, नानक दास देख पए निहाला। पैरव महला पंजवां, सतगुर मेरा बेमोहताज। सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सब सका दाता, सतगुर मेरा पुरख विधाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाओ। सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है। सतगुर मेरे की वड़ियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीबाण। सतगुर कहो सदबल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेव्या तिस पौ ना ब्यापै, जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै। नानक सो दे सिमरत बेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पैरव महला पंजवां, नाम लैत मन प्रगट पया। नाम लैत पाप तंते गया, नाम लैत सगल पुरबाया। नाम लैत अठ सठ मजनाया, तीर्थ हमरा हर को नाम। गुरु उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अतमूड सुगयाना। नाम लैत प्रगट उजियारा, नाम लैत छुट्टे जंजारा। नाम लैत जम नेड़ ना आवै, नाम लैत दरगह सुख पावै। नाम लैत प्रभ कह सबास, नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश कयो एहो सार, हर कीर्त मन नाम आधार। नानक उधरे नाम पुनै चार, अवर कर्म लोकै पतियार। पैरव महला पंजवां, नमस्कार ता कौ लख बार। एहो मन दीजै ता कौ वार, सिमरन ता कै मिटै संताप। होए आनंद ना व्यापै ताप, ऐसो हीरा निर्मल नाम। जास जपत पूर्ण सब काम रहाओ। जां की दृष्ट दुखडेरा टहै, अमृत नाम शीतल मन गहै। अनक भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण हारी। खिन मैं ऊणे सुबर भरिया, खिन मैं सूके कीने हरिया। खिन मैं निथावे कौ दीनो थान, खिन मैं निमाणे कौ दीनो मान। सब मैं एक रहा पर पूरा, सो जापै जे सतगुर पूरा। हर कीर्तन ताको आधार, कहो नानक जिस आप दयार। पैरव महला पंजवां, मोहे दुहागन आप सिंगारी। रूप रंग दे नाम सवारी, मिट्यो दुखर सगल संताप। गुर होए मेरे माई बाप, सखी सहेरी मेरे ग्रस्त आनंद। कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ। तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटिया देर भय प्रगासा। अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुरपूरा पूरा प्रसाद। जां कौ प्रगट भय गोपाल, तां कै दर्शन उसदा निहाल। सर्ब गुणा ता कै बहुत निदान, जा को सतगुर दियो नाम। जा कौ भेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना। कहो नानक जो जन प्रभ पाए, ता की रेन बिरला को पाए। पैरो महला पंजवां, चितवत पाप ना आल के आवै। बेसवा भजत किशने शरमावै। सारो दिन समझूरी करै, हर सिमरन की वेला बज्जर सिर परै। माया लग पुलो संसार, वा पुलाया पुलावन हारै। राच रहया बिरथा ब्योहार रहाओ।
पेखत माया रंग बिहाए, गड़बड़ करे कौडी रंग लाए, अंध व्यवहार बंद मंत आवे, करने हारना जी मैं आवे, करत करत इव ही दुख पाया।

राम नाम जी को आधार, गुर प्रसाद जपो नित पाई, तार लय सागर संसार रहाओ। जिन को लिखिया हर एहो निदान, से जंतर गै पावे मान, सुख सहज आनंद गुण गाओ, अगे मिले निथावे थाओ। जुगै जुगंतर एहो तत सार, हर सिमरन साचा विचार, जिस लड़ लाए लय सो लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, तेरे भगत भगतन का आप, अपनी मैं माया पे जाप। जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभ सदी साथ, पैरो महला पंजवा। नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रव्या हर नाम, सदगुर पूरे कीनो दान। नाम रतन मेरे पंडार, अगमय मोला अप्रयापार, रहाओ नाम हमारे निचल तनी, नाम की महिमा सब में बनी। नाम हमारे पूरा साहो, नाम हमारे बेपरवाहो, नाम हमारे भोजन पाओ, नाम हमारे मन का सुहाओ। नाम ना विसरे संत प्रसाद, नाम ले तो अनहद पूरे नाद। प्रभ कृपा ते नाम नौ निध पाई, गुर कृपा ते नाम स्यों

तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरे जी प्राण सुखदाता, तू मेरा ठाकर हूं दास तेरा, तुझ बिन अवर नहीं को मेरा। कर कृपा करो प्रभदात, तुमरी उस्तत करो दिन रात रहाओ। हम तेरे जंत तू बजावन हारा, हम तेरे पिखारी दान दे दातारा। तव प्रसाद रंग रस माने, कट कट अंतर तुम्हें समाने। तुमरी कृपा ते जपिए नाओ, साध संग तुमरे गुण गाओ। तुमरी दया ते हुए दर्द विनाश, तुमरी माया ते कमल विगास। हम बलिहार जाऊं गुरुदेव, सफल दर्शन जाकी निर्मल सेव। दया करो ठाकुर प्रभ मेरे, गुण गावे नानक नित तेरे। पैरो महला पंजवां, सब ते ऊच जाका दरबार, सदा सदा ताको जोहार। ऊचे ते ऊचा जाका थान, कोट अग्गा मिटे हर नाम। ते सरनाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ। जाके करतब लखे ना जाहे, जाका प्रवासा सब कट माहे। प्रगट भया साधु कै संग, भगता राधे अंदन रंग। दें दे तोट नहीं पंडार, खिन मैं थापो थापनहार। जा का हुक्म ना मेटे कोए, सिर पातशाह साचा सोए। जिसकी ओट तिसे की आसा, दुख सुख हमरा तिसी पासा। राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा। पैरो महला पंजवां, रोवन हारी रोज बनाया। बलन बर्तन कौ संबंध चेते आया। बूझ बैराग करे जे कोए, जन मरण फिर सोग ना होए। बिखिया का सब तंद पसार, विरले की नौना में आधार रहाओ। त्रिबद माया रही ब्याप, जो लपटानो ते दू संताप। सुख नाही बिन नाम ते आए, नाम निदान वट पागी पाए। स्वांगी स्यों जो मन री जावै, स्वांग उतारे फिर पछतावै। मेघ की छाया जैसे बर्तन हार, तैसो परपंच मोह बेकार। एक वस्तु जे पावै कोए, पूर्ण काज ताही का होए। गुर प्रसाद जिन पाया नाम, नानक आया सो।

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मै लए दीन दयाल सदा कृपाल बिरस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यो लागो हेत खिर मैं बिरस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रख नहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक कौसदा प्रतपार है पगजना के सास निहार है मानस की कहो केतक बात जमते राखे देकर हाथ निर्मल शोभा निर्मल रीत पार ब्रह्म आया मन चीत कर कृपा गुरदीनो दान नानक पाया नाम निदान पैरव महला पंजवा करण कारण समर्थ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै पंजन अबनासी राय दर्शन देखे सब दुख जाए जत कत पेखो तेरी सरना बल बल जाई सतगुर चरना रहाओ पूर्ण काम मिले गुरदेव सफल दाता निर्मल सेव कर गहलीने अपने दास राम नाम रिद्धियो निवास सदा आनंद नाही के सोग दुख दर्द न व्यापै रोग सब किश तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुर अगम अपार निर्मल सोभा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रविया सोए नानक सब किश प्रभते होए पैरव महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरने सर्ब मनोरथ पूर्ण करने आठ पहर गावत भगवंत सतगुर दीनो पूरा मंत सो वड भागी जिस नाम प्यार तिसके संग तरह संसार रहाओ सोई ज्ञानी जे सिमरै एक सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी सो पतवंता जे आप पिछानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रहन ते आया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण रिदमाहे निवासा कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा सो जनाया प्रभ की सरना आप पवित पावन सब कीने राम रसायन रसना चीने पैरो महला पंजवा नाम लै तो किश बिघ ना लागे नाम सुन तो जम दूरों भागे नाम लै तो सब दुख है नास नाम जप तो हर चरण निवास निर्विघ्न भगत भज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ हर सिमर तो किस चाख ना जो है हर सिमर तो दैत देव ना पुहै हर सिमर तो मोह मान ना बदै हर सिमरत गर्भ जोन ना रुदय हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बहु माया केला जात अजात जपै जन कोए जो जपै तिसकी गत होए हर का नाम जपिए साध संग हर के नाम का पूर्ण रंग नानक कहो प्रभ कृपा तार सा सा सर देहो चितार पैरो महला पंजवा आपे सास्ते आपे भेद आपे कटकट जाने भेद ज्योत स्वरूप जाकी सब वत करण कारण पूर्ण समरथ प्रभ की ओट गहो मन मेरे चरण कमल गुरमुखिया राधाओ दुश्मन दुख न आवे नेरे रहाओ आपे वन त्रिण त्रि पवन सार जाकै सूत प्रोया संसार आपे शिव शक्ति संजोगी आप निर्बाणी आपे भोगी जत कत पेखो तत तत सोए
ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਵਸ ਜਾ ਕੈ, ਊਣਾ ਨਾਹੀ ਕਿਸ ਜਨਤਾ ਕੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਹੋਏ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਹੀ ਜਨ ਧਨ, ਪਹਿਰਾਓ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਗੋਬਿੰਦ, ਅਸਥਿਤ ਭਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਚਿੰਦ, ਭੈ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨਸ ਗਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੰਤ ਸਦਾ ਸਹਾਏ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ, ਰਹਾਓ ਧਨ ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਜੁਗਤ ਗੋਪਾਲ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਥ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਛੋੜੈ ਸਦ ਹੀ ਸਾਥ, ਹਰ ਸਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਸਰ ਸਮਾਲੇ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਬੰਧ ਨਰਾਇਣ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਇਣ, ਤਿਸ ਕੀ ਧਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਮਨ ਜੋਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹੋ ਪ੍ਰਖਾਰਥ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਥ, ਪਹਿਰਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਭੈ ਕਉ ਭਉ ਪੜਿਆ, ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਗਲ ਬਿਆਦ, ਮਿੱਟੀ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਕੀ, ਦਾਸ ਕੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਕਾਮ, ਰਹਾਓ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਤਿਨਕੋ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਨ ਧਾਮ, ਜਨ ਕਾ ਦਰਸ ਬਾਂਛੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਾਮ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਨਿੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟਿਆ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸੇ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ,

सो सुरतान जो दोए सर तन बाहर जाता पीतर यान गगन मंडल में लश्कर करे सो सुरतान शत्र सर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उचरे मुसलमान का एक खुदा एक कबीर का स्वामी रया सुमाए महल्ला पंजवा जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसेव जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए ठाकर हमरा सदबो लंता सर्ब जिया को प्रावधान देता रहा अंतर देव न जाने अंध भ्रम का मोहया पावे फंद ना पाथर बोले ना किश दे फोकट कर्म ने फल है सेव जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई कहत कबीर हाँ कहो पुकार समय देख साथ गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भक्त है सदा सुखाले जल में मीन माया के बेदे दीपक

आई। रहाओ पंखी मृग माया मैराते, साकर माखी अधिक संतापे, तुरे उष्ट माया मैं पेला, सिद्ध चौरासी माया मैं खेला, छे जति माया के बंदा, नवे नाथ सूरजर चंदा, तपे रखीसर माया मैं सूता, माया मैं काल यार पंच दूता, स्वान स्याल माया मैं राता, बंतर जीते अर सिंघाता, मांजार गाडर अर लुबरा, बिरख मूल माया मैं परा, माया अंतर पीने देव, सागर इंद्रा यार तार तेव, कह कबीर जैसे उधर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया, जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए, तब प्रभु काज सवार आए, ऐसा ज्ञान विचार मना, हर कीना सिमरो दुख भंजना रहाओ, जब लग सिंह रह बन माहे, तब लग बन फूले ही नाहे, जब ही स्यार सिंह को खाए, फूल रही सगली बन राए, जीतो बूढ़े हार उतरे, गुर प्रसादी पार उतरे, दास कबीर कह समझाए, केवल राम रहो लिवलाए, सत्तर सह सला रह जाके, सवा लाख पै काम ब्रता के, सेख जो कही है कोट अठासी, छपन कोट जाके खेल खासी, मो गरीब की को गुजरावे, मजरस दूर मैल को पावे, रहाओ तेतीस करोड़ी है खेल खाना, चौरासी लख फिर दीवाना, बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई, उन पी पिस्त कनेरी पाई, दिल खल हल जाके जर्द रूबानी, छोड़क तेब करे सैतानी, दुनिया दोस रोस है लोई, अपना किया पावे सोई, तुम दाते हम सदा पिखारी, देव जवाब होए बजगारी, दास कबीर तेरी पने समाना, पेस्तन जीक राख रह माना, सब कोई चलन कहत है उहां, ना जानो बैकुंठ है कहां, रहाओ आप आपका मर्म ना जाना, बात नहीं बैकुंठ बखाना, जब लग मान बैकुंठ की आस, तब लग नाही चरण निवास, खाई कोट ना परलप गारा, ना जानो बैकुंठ द्वारा, कह कमीर अब कहिए काहे, साध संगत बैकुंठ आहे, क्यों लीजे गढ़ बंका पाई, दोवर कोटियार तेवर खाई, रहाओ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी प्रबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे, कहां करो रगराया, काम केवारी दुख सुख दरवानी, पापन दरवाजा, क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर, तै मनमावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद कमान चढ़ाई, तसना तीर रहे गढ़ पीतर, इं गढ़ लियो न जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे परजाली, एक चुट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दो दरवाजा, साध संगत गुर की कृपा ते, पकड़ो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फांसी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ी उपर, राज लियो अबनासी, गंग गुसायन गहर गंभीर, जंजीर बांध कर करे कबीर, मन ना डिगे तन काहे कौ डराए, चरण कमल चित्र ओ समाए, रहाओ गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पर बैठे कबीर, कह कबीर को संग ना साथ, जल थल रखन है रघुनाथ, पैरव कबीर जी अष्टपति कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आगम दुर्गम गढ़ रचियो बास, जामै जोत करे प्रगास, बिजली चमकै होय आनंद, जे पौड़े प्रभ बाल गोबिंद, एहो जियो राम नाम लिव लागै, जरा मरण छूटै परम भागै, रहाओ अबरन बरन स्यो मन ही प्रीत, हमें गावन गावै गीत, अनहद शब्द होत चुनकार, जे पौड़े प्रभ श्री गोपाल, खंडल मंडल मंडल मंडा, त्रया शांति त्रे खंडा, आगम्या गोचर रहया अभ्यंत, पार ना पावे को तरनी तरमंत,
कदली पोहप तू प्रगास, राज्य पंकज मैं लियो निवास। द्वादश दाल अभ अंतर मंत, जय पौड़े श्री कमलाकंत। अर्ध उर्ध मुख लागो कास, सुन मंडल मैं कर प्रगास। उहा सूरज नाही चंद, आद निरंजन करे आनंद। सो ब्रह्मांड पिंड सो जान, मान सरोवर कर स्नान। सो हंसो जा को है जाप, जा को लिप्त न होए पुण्य अर पाप। अबर्ण बर्ण काम नहीं शाम, अवरना पाइये गुर की साम। टारी न टरे आवे न जाए, सुन सहज मै रे समाए। मन मध्ये जाने जे कोए, जो बोले सो आपे होए। जोत मंत्र मन असर करे, कह कबीर सो प्राणी तरे। कोट सूर जा कै प्रगास, कोट महादेव अर कबलास। दुर्गा कोट जा कै मर्दन करे, ब्रह्मा कोट वेद उचरे। जो जाचो तो केवल राम, आन देव स्यो नाही काम। राहो कोट चंद्र में करे चिराक, सुरत तीसो जे वै पाक। नाम ग्रह कोट ठांडे दरबार, धर्म कोट जा कै प्रतहार। कवन पवन कोट चौ बारे फिरे, बास कोट सेज बिस्थर। समुंद कोट जाके पानी हार, रुमावल कोट अठारे पार। कोट कमेर पर पंडार, कोट क लक्ष्मी करे सिंगार। कोट क पापन बहरे, इंद्र कोट जाके सेवा करे। छप्पन कोट जाके प्रतहार, नगरी नगरी ख्यात्या पार। लट छुट्टी वरते बिकराल।

रहाओ मिथ्या जिहबा अवरे काम, निर्वाण पादो एक हर को नाम। असंख कोट अन पूजा करी, एक ना पूजस ना मैं हरी। प्रणवै नाम देओ एहो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरी, ताकै निकट बसै नर हरी। जो ना पजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनकै पीतर है अंतरा, जैसे पस तैसे होए नरा। प्रणवत नाम देओ नाकै बिना, ना सोहै बत्ती सलखना। दूध कटोरै गड़वै पानी, कपल गाए नामै दुहयानी। दूध पियो गोबिंदे राय, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हर आग्या तरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रचता कहो करो सिंगार। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहू स्यो ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू पूर्ण चने बनावै, ज्यो राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ। कबहू तुरे तरंग नचावै, कबहू पाए पनियो ना पावै। कबहू खाट सुपेदी सुवावै, कबहू पूम पै आर ना पावै। भणत नाम देव एक नाम निस्तारै, जे गुर मिलै ते पार उतारै। हस्त खेलत तेरे

रहे अपहगे। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ, जहां बैसहो भोजन खाओ रहाओ। जेहबा जूठी बोलत जूठा, कर्ण नेत्र सब जूठे। इंद्री की जूठ उतर सनाही, ब्रह्म अग्न के लूठे। अग्न पी जूठी पानी जूठा, जूठी बैस पकाया। जूठी करसी प्रोसन लगा, जूठे ही बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा, जूठी दीनी कारा। कह कबीर ते नर सूचे, साची परी बिचारा। रामानंद जी कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। कत जाइए रे कर लागो रंग, मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ। एक दिवस मन पहियो मांग, कह चंदन चोवा बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे। जहां जाइए तह जल पखान, तू पूर रहे हो सब समान। वेद पुराण सब देखे जोए, उहां तव जाइए जो इहां ना होए। सतगुर मैं बलिहारी तोर, जिन सगल बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोट कर्म। बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। साहेब संकट वै सेवक पजै, चिरंकाल ना जीवै दो को लज्जै। तेरी भगतना छोड़ो पावै, लोग हसै। चरण कमल मेरा ही रह बसै रहाओ। जैसे अपने तरह प्राणी मरन मांडै, तैसे संत जना।